0: pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorized by the UK Financial Conduct Authority.
1: फेस्टिवल 2026 मेला 15 एंड 16 अगस्त को
2: एक बार फिर मोर पार्क किलिंग हार्ट रोड ब्रेडफोर्ड में
1: जहां पहली बार किंग ऑफ भंगड़ा इब्रार उल हक अपने गानों से आपके दिलों को धड़काएंगे
2: फैशन फूड स्टॉल्स किड्स एंटरटेनमेंट और बहुत कुछ
1: एक खूबसूरत डे आउट आप सबके लिए सैटरडे एंड संडे 15 एंड 16 अगस्त 2026
2: लीड्स रोड फेस्टिवल
1: ब्रेडफोर्ड रीजन रेडियो द ऑफिशियल मीडिया पार्टनर
2: आप भी
1: जरूर आइएगा उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे क्या ही चॉइस है आपका
2: ये चॉइस हमारा नहीं ये तो कमाल है फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का
1: जो कि पायदार मजबूत खूबसूरत डबल एंटीपर ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
2: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं
1: फर्स्ट चॉइस
2: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL
1: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
2: 01274317644
3: फॉर क्वालिटी वैल्यू स्टाइल एंड सिक्योरिटी योर नंबर वन चॉइस फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर
2: दुल्हन वो जो पिया मन भाई
4: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए
2: नित नए डिजाइन के सेट चूड़ियां कंगन कांटे
4: बालियां अंगूठियां और हार
2: जो दुल्हन करे सिंगार
4: आज ही मामू काके की दुकान
2: खालिस सोने की पहचान
4: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
2: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए
4: आपकी शान
2: हमारी आन
4: क्वालिटी की पहचान
2: पाकिस्तान ज्वेलर्स 1 डुकफर्ट लेन ब्रेडफोर्ड BD95ER 01274491442
4: पाकिस्तान ज्वेलर्स
5: टू बिकम अ रेडियो प्रेजेंटर Please call the studio 01274 306677. Bradford Asian Radio.
6: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274 201679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
7: सुनिए जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे
2: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स
7: खूबसूरत कारपेट्स लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ बॉबीज कारपेट्स लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स BD3ADN बॉबी आइए भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए नंबर मिलाइए 07414260078

0: Master Jewelers, 93 Hawthorne Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274-306-567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
3: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274-306-77.
4: You're listening to
5: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: फेस्टिवल 2026 मेला 15 एंड 16 अगस्त को
6: एक बार फिर मोर पार्क किलिंग हार्ड रोड ब्रेडफोर्ड में
5: जहां पहली बार माया नाज लोक फनकार नईम हजारवी अपने फन का मुजाहिरा करेंगे
6: फैशन फूड स्टॉल्स किड्स एंटरटेनमेंट और बहुत कुछ
5: एक खूबसूरत डे आउट आप सबके लिए सैटरडे एंड संडे 15 एंड 16 अगस्त 2026
6: लीड्स रोड फेस्टिवल
5: बेफोर्ड एजेंट रेडियो द ऑफिशियल मीडिया पार्टनर
6: आप भी
5: जरूर आइएगा उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे क्या ही चॉइस है आपका
6: ये चॉइस हमारा नहीं ये तो कमाल है फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का
5: जो कि पायदार मजबूत खूबसूरत डबल एंटरप्रेस ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
6: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं
5: फर्स्ट चॉइस
6: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL
5: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
6: 01274317644
7: फॉर क्वालिटी वैल्यू स्टाइल एंड सिक्योरिटी योर नंबर वन चॉइस फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर
6: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले
8: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं
6: अरे पगली अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई जी हाँ दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है
8: झिलमिल करते कांटे बालियां कंगन गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार
6: टॉप क्वालिटी बेहतरीन सर्विस ओपन 7 डेज
8: 30 वेटले हिल ब्रेडफोर्ड BD8 8NG फोन 01274477257
6: दुबई ज्वेलर्स व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक आटा चावल दालें मसाला जात रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट हलाल गोश्त और चूजे फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले बचिए इधर उधर की खुआरी से शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD8 8JL बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी
9: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है
8: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा मिलान की शेरवानी शलवार कमीज वेस्ट कोट प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे
6: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रेडफोर्ड BD8 8DR टेलीफोन 07885428349 अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड्स रोड ब्रेडफोर्ड
8: सुनिए जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे
6: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स
8: खूबसूरत कारपेट्स लैमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ बॉबीज कारपेट्स लिस्टेड डाइक ट्रैफिक लाइट्स ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स BD3 ADN बॉबी आइए भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए नंबर मिलाइए 07414260078
10: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
6: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है
10: जी हाँ पल्स जहाँ फिश एंड चिप्स बर्गर्स फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स
6: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए आज ही तशरीफ लाइए ओपन 7 डेज पल्स सी रूम 46 रूली एवेन्यू ब्रेडफोर्ड BD6 1DA फोन 01274306567 बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन
0: Sheffield Mela CIC presents DeciFest Sheffield Mela 2026. Join us at Firth Park, Sheffield on Sunday, 2nd of August from 12 till 8 p.m. A family fun day for the whole family with fun fair, food stalls and Mela shopping. Featuring live performances from Lamba Hussainpuri, H. Dami, Ramit Sandhu, Summer Blake and much, much more. Sunday, 2nd of August at Firth Park, Sheffield. We'll see you there.
3: हिसाबे उम्र का इतना सा गोशवारा है तुम्हें निकाल के देखा तो सब खसारा है महमूद रिजवी अकाउंटेंट्स जी हाँ छोटे से छोटे टैक्सी अकाउंट से लेकर बड़ी से बड़ी कंपनी के अकाउंट्स बनवाने के लिए काबिले एतमाद नाम महमूद रिजवी अकाउंटेंट्स ऑडिट एंड अकाउंटेंसी टैक्सेशन VAT बुककीपिंग पेरोल फंडरेजिंग कंपनी फॉर्मेशन मॉर्गेजेस अकाउंट्स के किसी भी मसले के लिए ना हो परेशान क्योंकि आपकी मुश्किल करेंगे आसान महमूद रिजवी चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स महमूद रिजवी ग्रेट हॉटन रोड ऑन ब्रैडफोर्ड 424453 महमूद रिजवी
11: Bradford Asian Radio. Call the studio now 01274 306677. To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.
12: You're listening to
13: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: जहां पहली बार किंग ऑफ भंगड़ा इब्रार उल हक अपने गानों से आपके दिलों को धड़काएंगे।
1: फैशन, फूड स्टॉल्स, किड्स एंटरटेनमेंट और बहुत कुछ।
0: एक खूबसूरत डे आउट आप सबके लिए सैटरडे एंड संडे 15 and 16 August 2026
1: लीड रोड फेस्टिवल।
0: रेफोरेशन रेडियो द ऑफिशियल मीडिया पार्टनर।
1: आप भी
0: जरूर आइएगा। उफ, कितनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
1: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
0: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रेपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
1: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
0: फर्स्ट चॉइस
1: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL।
0: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
1: 01274317644।
2: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
1: दुल्हन वो जो पिया मन थाए,
3: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
1: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
3: बालियां, अंगूठियां और हार,
1: जो दुल्हन करे सिंगार,
3: आज ही मामू काकी की दुकान,
1: खालिस सोने की पहचान,
3: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
1: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
3: आपकी शान
1: हमारी आन,
3: क्वालिटी की पहचान,
1: पाकिस्तान ज्वेलर्स 1 Duckworth Lane Bradford BD95ER 01274914942।
3: पाकिस्तान ज्वेलर्स।
4: To become a radio presenter, please call the studio 01274 306677. Bradford Asian Radio.
5: ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
6: अरे सेफ राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे।
5: बस, ट्रक, फोकलिफ्ट, टैक्सी लाइसेंस, हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
6: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ राइडर।
5: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत, आज ही विजिट कीजिए
6: 33 Wetley Lane Bradford 01274201679।
5: saferaider.co.uk। सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
6: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली £299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली £99।
5: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grange Road, Bradford 7, 414-760.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
3: अरे ये पूरे ब्रेडफोर्ड में क्या है शोर?
4: आपको नहीं पता, ऑफर्स इन मेनी गो स्टोर, रोजाना ताज़ा सब्जियाँ, फल, फ्रूट, सलाद, मीट, चिकन, आटा, दाल, चावल और मसाला, क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला।
3: हर समत मचा है जिसका शोर, वो है मैनिंगम सुपर स्टोर। मैनिंगम सुपर स्टोर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8AX, फोन ब्रेडफोर्ड 4955555। हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश मैनिंगम सुपर स्टोर।
4: मैनिंगम सुपर स्टोर,
5: Bradford Asian Radio. Our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.
6: You're listening to
7: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد.

0: Number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: लीज रोड फेस्टिवल 2026 मेला 15 एंड 16 अगस्त को
7: एक बार फिर मोर पार्क किलिंग हार्ट रोड ब्रेडफोर्ड में
6: जहां पहली बार किंग ऑफ भंगड़ा इब्रार उल हक अपने गानों से आपके दिलों को धड़काएंगे
7: फैशन फूड स्टॉल्स किड्स एंटरटेनमेंट और बहुत कुछ
6: एक खूबसूरत डे आउट आप सबके लिए सैटरडे एंड संडे 15 एंड 16 अगस्त 2026
7: लीज रोड फेस्टिवल
6: ब्रेडफोर्ड एजन रेडियो द ऑफिशियल मीडिया पार्टनर
7: आप भी
6: जरूर आइएगा उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे क्या ही चॉइस है आपका
7: ये चॉइस हमारा नहीं ये तो कमाल है फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का
6: जो कि पायदार मजबूत खूबसूरत डबल एंटरप्राइज ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए

0: to 7431744.
1: For quality, value, style and security, your number one choice, first choice, Windows Yorkshire.
0: दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
2: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
0: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
2: बालियां, अंगूठियां और हार,
0: जो दुल्हन करे सिंगार,
2: आज ही मामू काके की दुकान,
0: खालिस सोने की पहचान,
2: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
0: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए,
2: आपकी शान
0: हमारी आन,
2: क्वालिटी की पहचान,
0: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane, ब्रेडफोर्ड, PD95ER01274491442,
2: पाकिस्तान ज्वेलर्स।
3: टू बिकम अ रेडियो प्रेजेंटर, please call the studio 01274 306677. Bradford Asian Radio.
4: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274 201679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
2: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
0: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स,
2: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।

0: Master Jewelers, 93 Hawthorne Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
3: ब्रेडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर।
4: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं, मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर, जहाँ पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 pounds से, जर्मन वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कॉफी टेबल, रग्स, कारपेट, मैट्रेसेस की वसी वैरायटी।
5: ओपन 7 डेज, 10 to 6, फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर। लव फर्नीचर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, अपोजिट बार्कलेज बैंक, पॉन्ड ब्रेडफोर्ड, 9627229622।
4: लव फर्नीचर, फर्नीचर यू लव।
6: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.
7: You're listening to
8: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: 6 number 1 Asian Community Radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: फेस्टिवल 2026 मेला 15 एंड 16 अगस्त को
6: एक बार फिर मोर पार्क किलिंग हार्ट रोड ब्रेडफोर्ड में
5: जहां पहली बार माया नाज लोक फनकार नईम हजारवी अपने फन का मुजाहिरा करेंगे
6: फैशन फूड स्टॉल्स किड्स एंटरटेनमेंट और बहुत कुछ
5: एक खूबसूरत डे आउट आप सबके लिए सैटरडे एंड संडे 15 एंड 16 अगस्त 2026
6: लीड रोड फेस्टिवल
5: ब्रेडफोर्ड एजेंट रेडियो द ऑफिशियल मीडिया पार्टनर
6: आप भी
5: जरूर आइएगा उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे क्या ही चॉइस है आपका
6: ये चॉइस हमारा नहीं ये तो कमाल है फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का
5: जो कि पायदार मजबूत खूबसूरत डबल एंट्रीपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
6: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं
5: फर्स्ट चॉइस
6: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL
5: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
6: 01274317644
7: फॉर क्वालिटी वैल्यू स्टाइल एंड सिक्योरिटी योर नंबर वन चॉइस फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर
6: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले
8: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं
6: अरे पगली अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई जी हाँ दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है
8: झिलमिल करते कांटे बालियां कंगन गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार
6: टॉप क्वालिटी बेहतरीन सर्विस ओपन 7 डेज
8: 30 वेटले हिल ब्रेडफोर्ड BD8 8NG फोन 01274477257
6: दुबई ज्वेलर्स व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक आटा चावल दालें मसाला जात रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट हलाल गोश्त और चूजे फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले बचिए इधर उधर की ख्वारी से शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD8 8JL बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी
9: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है
8: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा मिलान की शेरवानी शलवार कमीज वेस्ट कोट प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे
6: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रेडफोर्ड BD8 8DR टेलीफोन 07885428349 अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड्स रोड ब्रेडफोर्ड
8: सुनिए जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे
6: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स
8: खूबसूरत कारपेट्स लैमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ बॉबीज कारपेट्स लिस्टेड एट ट्रैफिक लाइट्स ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग BD3 ADN बॉबी आइए भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए नंबर मिलाइए 07414260078
10: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
6: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है
10: जी हाँ बेल्स जहाँ फिश एंड चिप्स बर्गर्स फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स
6: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए आज ही तशरीफ लाइए ओपन 7 डेज बेल्स सी रूम 46 रूली एवेन्यू ब्रेडफोर्ड BD6 1DA फोन 01274306567 बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन
0: Sheffield Mela CIC presents DeciFest Sheffield Mela 2026. Join us at Firth Park, Sheffield on Sunday, 2nd of August from 12 till 8 p.m. A family fun day for the whole family with fun fair, food stalls and Mela shopping. Featuring live performances from Lamba Hussainpuri, H. Dami, Ramit Sandhu, Summer Blake and much, much more. Sunday, 2nd of August at Firth Park, Sheffield. We'll see you there.
3: क्या आपकी आवाज़ खूबसूरत है? क्या आप में बोलने की जरूरत है? अगर ऐसी ही सूरत है तो ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो को आपकी जरूरत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए और अपनी आवाज सुनने वालों के दिलों तक पहुंचाइए और खुद को रेडियो स्टार बनाइए। याद रखिए, अगर आपको बड़ी बड़ी छोड़ने की आदत है तो ये आपके कल के बड़ा ब्रॉडकास्टर बनने की जमानत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए। Bradford Asian Radio.
11: Call the studio now. 01274 306677. To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.
12: You're listening to
13: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
3: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
4: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
5: लीज रोड फेस्टिवल 2026 मेला 15 एंड 16 अगस्त को
6: एक बार फिर मोर पार्क किलिंग हार्ट रोड ब्रेडफोर्ड में
5: जहां पहली बार किंग ऑफ भंगड़ा इब्रार उल हक अपने गानों से आपके दिलों को धड़काएंगे
6: फैशन फूड स्टॉल्स किड्स एंटरटेनमेंट और बहुत कुछ
5: एक खूबसूरत डे आउट आप सबके लिए सैटरडे एंड संडे 15 एंड 16 अगस्त 2026
6: लीज रोड फेस्टिवल
5: ब्रेडफोर्ड एजन रेडियो द ऑफिशियल मीडिया पार्टनर
6: आप भी
5: जरूर आइएगा उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे क्या ही चॉइस है आपका
6: ये चॉइस हमारा नहीं ये तो कमाल है फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का
5: जो कि पायदार मजबूत खूबसूरत डबल एंट्रेपल ग्लेस विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
6: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं
5: फर्स्ट चॉइस
6: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL
5: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
6: 01274317644
7: क्वालिटी वैल्यू स्टाइल एंड सिक्योरिटी योर नंबर वन चॉइस फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर
6: दुल्हन वो जो पिया मन भाई
8: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए
6: नित नए डिजाइन के साथ चूड़ियां कंगन कांटे
8: बालियां अंगूठियां और हार
6: जो दुल्हन करे सिंगार
8: आज ही मामू काके की दुकान
6: खालिस सोने की पहचान
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
6: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए
8: आपकी शान
6: हमारी आन
8: क्वालिटी की पहचान
6: पाकिस्तान ज्वेलर्स 1 Duckworth Lane ब्रेडफोर्ड BD95ER 01274491442
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स
0: टू बिकम अ रेडियो प्रेजेंटर Please call the studio.

0: 01274 306677 Bradford Asian Radio.
1: ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
2: अरे सेफ राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे।
1: बस, ट्रक, फोकलिफ्ट, टैक्सी लाइसेंस, हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
2: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ राइडर।
1: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत, आज ही विजिट कीजिए।
2: 33 वेटले लेन ब्रेडफोर्ड, 01274201679
1: saferaider.co.uk UK. सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
2: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
1: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grange Road, Bradford 7, 414-760.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
3: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.
4: You're listening to
5: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: हमारा पता B5 सैंड हेवन अपार्टमेंट्स, नज़्द तीन तलवार, बिलमुकाबिल बॉम्बे लाइट, फैसल बैंक ब्रांच। इंतहाई मुनासिब कीमत पर आरामदेह सफर के लिए राबता कीजिए। फोन 565-441516 or 17। सैलानी ट्रेवल्स एंड टूर्स प्राइवेट लिमिटेड, आपका एतमाद हमारी कामयाबी।
1: You're listening to
2: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: Bradford's number one Asian community radio. Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: फेस्टिवल 2026 मेला 15 एंड 16 अगस्त को
6: एक बार फिर मोर पार्क किलिंग हार्ट रोड ब्रेडफोर्ड में
5: जहां पहली बार माया नाज लोक फनकार नईम हजारवी अपने फन का मुजाहिरा करेंगे
6: फैशन फूड स्टॉल्स किड्स एंटरटेनमेंट और बहुत कुछ
5: एक खूबसूरत डे आउट आप सबके लिए सैटरडे एंड संडे 15 एंड 16 अगस्त 2026
6: लीड्स रोड फेस्टिवल
5: ब्रेडफोर्ड एजेंट रेडियो द ऑफिशियल मीडिया पार्टनर
6: आप भी
5: जरूर आइएगा उफ, कितनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे क्या ही चॉइस है आपका
6: ये चॉइस हमारा नहीं ये तो कमाल है फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का
5: जो कि पायदार मजबूत खूबसूरत डबल एंटरप्रेस ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
6: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं
5: फर्स्ट चॉइस
6: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL
5: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
6: 01274317644
7: क्वालिटी वैल्यू स्टाइल एंड सिक्योरिटी योर नंबर वन चॉइस फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर
6: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले
8: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं
6: अरे पगली अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई जी हाँ दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है
8: झिलमिल करते कांटे बालियां कंगन गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार
6: टॉप क्वालिटी बेहतरीन सर्विस ओपन 7 डेज
8: 30 वेटले हिल ब्रैडफोर्ड BD8 8NG फोन 01274477257 दुबई ज्वेलर्स
6: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक आटा चावल दालें मसाला जात रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट हलाल गोश्त और चूजे फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले बचिए इधर उधर की ख्वारी से शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD8 8JL बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी
9: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है
8: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा मिलान की शेरवानी शलवार कमीज वेस्ट कोट प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे
6: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रेडफोर्ड BD8 8DR टेलीफोन 07885428349 अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड्स रोड ब्रेडफोर्ड
8: सुनिए जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे
6: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स
8: खूबसूरत कारपेट्स लैमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ बॉबीज कारपेट्स लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग BD3 ADN बॉबी आइए भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए नंबर मिलाइए 07414260078
10: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
6: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है
10: जी हाँ पल्स जहाँ फिश एंड चिप्स बर्गर्स फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स
6: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए आज ही तशरीफ लाइए ओपन 7 डेज पल्स सी रूम 46 रूली एवेन्यू ब्रेडफोर्ड BD6 1DA फोन 01274306567 बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन
0: Sheffield Mela CIC presents DeciFest Sheffield Mela 2026. Join us at Firth Park, Sheffield on Sunday, 2nd of August from 12 till 8 p.m. A family fun day for the whole family with fun fair, food stalls and Mela shopping. Featuring live performances from Lamba Hussainpuri, H. Dami, Ramit Sandhu, Summer Blake and much, much more. Sunday, 2nd of August at Firth Park, Sheffield. We'll see you there.
3: Do you know there are 170,000 new cases of cancer each year in Pakistan? Do you know that Imran Khan Cancer Appeal provides free cancer treatment to 75% of its patients? Do you know that the third specialist Shaukat Hanum Cancer Hospital is being built in Karachi? We need your support more than ever now. Please donate today by calling 01274 424444 or donate online at ikca.org.uk.
11: Bradford Asian Radio. Call the studio now, 01274 306677. To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio. Your sales multiplier. Bradford Asian Radio. The world's local radio.
12: You're listening to
13: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: Bradford's number one Asian community radio. Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: Your business being heard on the radio.
3: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
4: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
5: लीज रोड फेस्टिवल 2026 मेला 15 एंड 16 अगस्त को
6: एक बार फिर मोर पार्क किलिंग हार रोड ब्रेडफोर्ड में
5: जहां पहली बार किंग ऑफ भंगड़ा इब्रार उल हक अपने गानों से आपके दिलों को धड़काएंगे
6: फैशन फूड स्टॉल्स किड्स एंटरटेनमेंट और बहुत कुछ
5: एक खूबसूरत डे आउट आप सबके लिए सैटरडे एंड संडे 15 एंड 16 अगस्त 2026
6: लीज रोड फेस्टिवल
5: ब्रेडफोर्ड एजन रेडियो द ऑफिशियल मीडिया पार्टनर
6: आप भी
5: जरूर आइएगा उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे क्या ही चॉइस है आपका
6: ये चॉइस हमारा नहीं ये तो कमाल है फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का
5: जो कि पायदार मजबूत खूबसूरत डबल एंटीपर ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
6: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं
5: फर्स्ट चॉइस
6: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL
5: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
6: 01274317644
7: क्वालिटी वैल्यू स्टाइल एंड सिक्योरिटी योर नंबर वन चॉइस फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर
6: दुल्हन वो जो पिया मन थाए
8: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए
6: नित नए डिजाइन के साथ चूड़ियां कंगन कांटे
8: बालियां अंगूठियां और हार
6: जो दुल्हन करे सिंगार
8: आज ही मामू काके की दुकान
6: खालिस सोने की पहचान
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
6: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए
8: आपकी शान
6: हमारी आन
8: क्वालिटी की पहचान
6: पाकिस्तान ज्वेलर्स 1 Dufferin Lane ब्रेडफोर्ड BD95ER 01274491442
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स
0: टू बिकम अ रेडियो प्रेजेंटर Please call the studio 01274 306677. Bradford Asian Radio.
9: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274 201 679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway

0: राइडर हेल्पिंग यू सिक्योर योर फ्यूचर।
1: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
2: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
1: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो, और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414 2600 78।

0: Master Jewelers, 93 Horsham Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 days, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274-306-567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन। अरे, ये पूरे ब्रेडफोर्ड में क्या है शोर?
3: आपको नहीं पता, ऑफर्स इन मेनिंगो स्टोर, रोजाना ताज़ा सब्जियाँ, फल, फ्रूट, सलाद, मीट, चिकन, आटा, दाल, चावल और मसाला, क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला।
2: हर सम्त मचा है जिसका शोर, वो है मेनिंगम सुपर स्टोर। मेनिंगम सुपर स्टोर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8AX, फोन ब्रेडफोर्ड 4955555। हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश, मेनिंगम सुपर स्टोर।
3: मेनिंगम सुपर स्टोर,
4: Bradford Asian Radio. Our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274-306-77.
5: You're listening to
6: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: फेस्टिवल 2026 मेला 15 एंड 16 अगस्त को
6: एक बार फिर भोर पार्क किलिंग हार्ट रोड ब्रेडफोर्ड में
5: जहां पहली बार माया नाज लोक फनकार नईम हजारवी अपने फन का मुजाहिरा करेंगे
6: फैशन फूड स्टॉल्स किड्स एंटरटेनमेंट और बहुत कुछ
5: एक खूबसूरत डे आउट आप सबके लिए सैटरडे एंड संडे 15 एंड 16 अगस्त 2026
6: लीड्स रोड फेस्टिवल
5: ब्रेडफोर्ड एजेंट रेडियो द ऑफिशियल मीडिया पार्टनर
6: आप भी
5: जरूर आइएगा उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे क्या ही चॉइस है आपका
6: ये चॉइस हमारा नहीं ये तो कमाल है फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का
5: जो कि पायदार मजबूत खूबसूरत डबल एंटीपर ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
6: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं
5: फर्स्ट चॉइस
6: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL
5: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
6: 01274317644
7: फॉर क्वालिटी वैल्यू स्टाइल एंड सिक्योरिटी योर नंबर वन चॉइस फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर
6: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले
8: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं
6: अरे पगली अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई जी हाँ दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है
8: झिलमिल करते कांटे बालियां कंगन गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार
6: टॉप क्वालिटी बेहतरीन सर्विस ओपन 7 डेज
8: 30 वेटले हिल ब्रैडफोर्ड BD8 8NG फोन 01274477257
6: दुबई ज्वेलर्स व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक आटा चावल दालें मसाला जात रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट हलाल गोश्त और चूजे फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले बचिए इधर उधर की ख्वारी से शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD8 8JL बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी
9: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है
8: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा मिलान की शेरवानी शलवार कमीज वेस्ट कोट प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे
6: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रेडफोर्ड BD8 8DR टेलीफोन 07885428349 अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड्स रोड ब्रेडफोर्ड
8: सुनिए जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे
6: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स
8: खूबसूरत कारपेट्स लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ बॉबीज कारपेट्स लिस्टेड डाइट ट्रैफिक लाइट्स ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स BD3 ADN बॉबी आइए भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए नंबर मिलाइए 07414260078
10: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
6: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है
10: जी हाँ पल्स जहाँ फिश एंड चिप्स बर्गर्स फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स
6: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए आज ही तशरीफ लाइए ओपन 7 डेज पल्स सी रूम 46 रूली एवेन्यू ब्रेडफोर्ड BD6 1DA फोन 01274306567 बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन
0: Sheffield Mela CIC presents DeciFest Sheffield Mela 2026. Join us at Firth Park, Sheffield on Sunday, 2nd of August from 12 till 8 p.m. A family fun day for the whole family with fun fair, food stalls and Mela shopping. Featuring live performances from Lamba Hussainpuri, H. Dami, Ramit Sandhu, Summer Blake and much, much more. Sunday, 2nd of August at Firth Park, Sheffield. We'll see you there.
8: शादी आ गई है सर पर और कोई फोटोग्राफर नहीं है घर पर।
6: लगता है आपने एशियन वेडिंग्स UK.com का नाम नहीं सुना, जो आपकी शादी के चलते फिरते हसीन लम्हात हमेशा के लिए फोटोज और वीडियोस के जरिए महफूज करते हैं और फिल्म ऐसी बनाते हैं दूल्हा दुल्हन जैसी चाहते हैं।
8: डिजिटल क्वालिटी, तेज और दोस्ताना सर्विस, मेल और फीमेल फोटोग्राफर्स,
6: जिंदगी के यादगार दिन को यादगार तरीन बनवाइए।
8: आज ही मुबीन का नंबर मिलाइए
6: 07548419678।
8: एशियन वेडिंग्स UK.com, जिनकी आम सी फिल्म भी बॉलीवुड से नहीं है कम।
3: Bradford Asian Radio. Call the studio now 01274 306677. To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.
11: You're listening to
12: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: लीज रोड फेस्टिवल 2026 मेला 15 एंड 16 अगस्त को
7: एक बार फिर मोर पार्क किलिंग हार्ट रोड ब्रेडफोर्ड में
6: जहां पहली बार किंग ऑफ भंगड़ा इब्रार उल हक अपने गानों से आपके दिलों को धड़काएंगे
7: फैशन फूड स्टॉल्स किड्स एंटरटेनमेंट और बहुत कुछ
6: एक खूबसूरत डे आउट आप सबके लिए सैटरडे एंड संडे 15 एंड 16 अगस्त 2026
7: लीज रोड फेस्टिवल
6: ब्रेडफोर्ड रीजन रेडियो द ऑफिशियल मीडिया पार्टनर
7: आप भी
6: जरूर आइएगा उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे क्या ही चॉइस है आपका
7: ये चॉइस हमारा नहीं ये तो कमाल है फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का
6: जो कि पायदार मजबूत खूबसूरत डबल एंटरप्राइज ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644
8: क्वालिटी वैल्यू स्टाइल एंड सिक्योरिटी योर नंबर वन चॉइस फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर
7: दुल्हन वो जो पिया मन थाए
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए
7: नित नए डिजाइन के साथ चूड़ियां कंगन कांटे
9: बालियां अंगूठियां और हार
7: जो दुल्हन करे सिंगार
9: आज ही मामू काके की दुकान
7: खालिस सोने की पहचान
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए
9: आपकी शान
7: हमारी आन
9: क्वालिटी की पहचान
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स 1 डुफर्ट लेन ब्रेडफोर्ड BD95ER 01274491442
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स
0: टू बिकम अ रेडियो प्रेजेंटर Please call the studio 01274 306677. Bradford Asian Radio.
10: ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल ना हमारा कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा
7: अरे सेफ राइडर जाएंगे ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे
10: बस ट्रक फोकलिफ्ट टैक्सी लाइसेंस हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार
7: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ राइडर
10: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत आज ही विजिट कीजिए
7: 33 वेटले लेन ब्रेडफोर्ड
10: 01274201679 UK. सुनिए जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे
7: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी इस कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स
10: खूबसूरत कारपेट्स लैमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ बॉबीज कारपेट्स लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग BD3ADN बॉबी आइए भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए नंबर मिलाइए 07414260078

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grange Road, Bradford 7, 414-760.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
3: ब्रेडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर।
1: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं, मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर, जहाँ पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 pounds से, जर्मन वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कॉफी टेबल, रग्स, कारपेट, मैट्रेसेस की वसी वैरायटी।
4: ओपन 7 डेज, 10 till 6, फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर। लव फर्नीचर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, अपोजिट बार्कलेज बैंक, फोन ब्रेडफोर्ड 9627229622।
1: लव फर्नीचर, फर्नीचर यू लव।
5: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.
6: You're listening to
7: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

من خشي الرحمن بالغيب

0: number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: फेस्टिवल 2026 मेला 15 एंड 16 अगस्त को
6: एक बार फिर मोर पार्क किलिंग हार्ट रोड ब्रेडफोर्ड में
5: जहां पहली बार माया नाज लोक फनकार नईम हजारवी अपने फन का मुजाहिरा करेंगे
6: फैशन फूड स्टॉल्स किड्स एंटरटेनमेंट और बहुत कुछ
5: एक खूबसूरत डे आउट आप सबके लिए सैटरडे एंड संडे 15 एंड 16 अगस्त 2026
6: लीड्स रोड फेस्टिवल
5: ब्रेडफोर्ड एजेंट रेडियो द ऑफिशियल मीडिया पार्टनर
6: आप भी
5: जरूर आइएगा उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे क्या ही चॉइस है आपका
6: ये चॉइस हमारा नहीं ये तो कमाल है फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का
5: जो कि पायदार मजबूत खूबसूरत डबल एंटर ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
6: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं
5: फर्स्ट चॉइस
6: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL
5: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
6: 01274317644
7: क्वालिटी वैल्यू स्टाइल एंड सिक्योरिटी योर नंबर वन चॉइस फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर
6: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले
8: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं
6: अरे पगली अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई जी हाँ दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है
8: झिलमिल करते कांटे बालियां कंगन गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार
6: टॉप क्वालिटी बेहतरीन सर्विस ओपन 7 डेज
8: 30 वेटली हिल ब्रेडफोर्ड BD8 8NG फोन 01274477257
6: दुबई ज्वेलर्स व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक आटा चावल दालें मसाला जात रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट हलाल गोश्त और चूजे फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले बचिए इधर उधर की ख्वारी से शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD8 8JL बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी
9: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है
8: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा मिलान की शेरवानी शलवार कमीज वेस्ट कोट प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे
6: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रेडफोर्ड BD8 8DR टेलीफोन 07885428349 अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड्स रोड ब्रेडफोर्ड
8: सुनिए जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे
6: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स
8: खूबसूरत कारपेट्स लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ बॉबीज कारपेट्स लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स BD3 ADN बॉबी आइए भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए नंबर मिलाइए 07414260078
10: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: लीज रोड फेस्टिवल 2026 मेला 15 एंड 16 अगस्त को
7: एक बार फिर मोर पार्क किलिंग हार रोड ब्रेडफोर्ड में
6: जहां पहली बार किंग ऑफ भंगड़ा इब्रार उल हक अपने गानों से आपके दिलों को धड़काएंगे
7: फैशन फूड स्टॉल्स किड्स एंटरटेनमेंट और बहुत कुछ
6: एक खूबसूरत डे आउट आप सबके लिए सैटरडे एंड संडे 15 एंड 16 अगस्त 2026
7: लीज रोड फेस्टिवल
6: ब्रेडफोर्ड रीजन रेडियो द ऑफिशियल मीडिया पार्टनर
7: आप भी
6: जरूर आइएगा उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे क्या ही चॉइस है आपका
7: ये चॉइस हमारा नहीं ये तो कमाल है फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का
6: जो कि पायदार मजबूत खूबसूरत डबल एंट्रीपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644
8: क्वालिटी वैल्यू स्टाइल एंड सिक्योरिटी योर नंबर वन चॉइस फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर
7: दुल्हन वो जो पिया मन भाई
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए
7: नित नए डिजाइन के साथ चूड़ियां कंगन कांटे
9: बालियां अंगूठियां और हार
7: जो दुल्हन करे सिंगार
9: आज ही मामू काके की दुकान
7: खालिस सोने की पहचान
9: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए
9: आपकी शान
7: हमारी आन
9: क्वालिटी की पहचान
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स 1 Dufferin Lane ब्रेडफोर्ड BD95ER 01274491442
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स
0: टू बिकम अ रेडियो प्रेजेंटर Please call the studio 01274 306677. Bradford Asian Radio.
10: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274 201679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
11: सुनिए जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे
7: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स
11: खूबसूरत कारपेट्स लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ बॉबीज कारपेट्स लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स BD3ADN बॉबी आइए भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए नंबर मिलाइए 07414260078

0: जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
1: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पहल सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, आवर वॉइस योर चॉइस। Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.
0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
3: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
3: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो,
0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
3: ब्रेडफोर्ड नंबर वन एशियन कम्युनिटी रेडियो, Bradford Asian Radio on 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
4: And the winner is.
5: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
7: फेस्टिवल 2026 मेला 15 एंड 16 अगस्त को
8: एक बार फिर मोर पार्क किलिंग हार्ट रोड ब्रेडफोर्ड में,
7: जहां पहली बार माया नाज लोक फनकार नईम हजारवी अपने फन का मुजाहिरा करेंगे।
8: फैशन, फूड स्टॉल्स, किड्स एंटरटेनमेंट और बहुत कुछ।
7: एक खूबसूरत डे आउट आप सबके लिए सैटरडे एंड संडे 15 एंड 16 अगस्त 2026
8: लीड्स रोड फेस्टिवल।
7: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो द ऑफिशियल मीडिया पार्टनर।
8: आप भी
7: जरूर आइएगा। उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
8: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
7: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रेपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
8: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
7: फर्स्ट चॉइस
8: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL।
7: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
8: 01274317644।
9: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
8: आओ, असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
10: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
8: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
10: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
8: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
10: 30 वेटले हिल ब्रेडफोर्ड BD8 8NG, फोन 01274477257।
8: दुबई ज्वेलर्स, व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका। पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक। आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
11: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
10: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
8: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8DR, टेलीफोन 07885428349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड्स रोड, ब्रेडफोर्ड।
10: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
8: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
10: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
12: रिवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
8: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज

बातें भूल जाती हैं, यादें याद आती। ये यादें किसी दिलो जानम के चले जाने के बाद आती। ये यादें

0: to the winner is...
1: And the winner is...
2: And the winner is...
0: Your business being heard on the radio.
3: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
4: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
5: लीज रोड फेस्टिवल 2026 मेला 15 एंड 16 अगस्त को
6: एक बार फिर मोर पार्क किलिंग हार्ट रोड ब्रेडफोर्ड में
5: जहां पहली बार किंग ऑफ भंगड़ा इब्रार उल हक अपने गानों से आपके दिलों को धड़काएंगे
6: फैशन फूड स्टॉल्स किड्स एंटरटेनमेंट और बहुत कुछ
5: एक खूबसूरत डे आउट आप सबके लिए सैटरडे एंड संडे 15 एंड 16 अगस्त 2026
6: लीज रोड फेस्टिवल
5: ब्रेडफोर्ड एजन रेडियो द ऑफिशियल मीडिया पार्टनर
6: आप भी
5: जरूर आइएगा उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे क्या ही चॉइस है आपका
6: ये चॉइस हमारा नहीं ये तो कमाल है फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का
5: जो कि पायदार मजबूत खूबसूरत डबल एंटरप्राइज ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
6: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं
5: फर्स्ट चॉइस
6: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL
5: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
6: 01274317644
7: फॉर क्वालिटी वैल्यू स्टाइल एंड सिक्योरिटी योर नंबर वन चॉइस फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर
6: दुल्हन वो जो पिया मन भाई
8: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए
6: नित नए डिजाइन के सेट चूड़ियां कंगन कांटे
8: बालियां अंगूठियां और हार
6: जो दुल्हन करे सिंगार
8: आज ही मामू काके की दुकान
6: खालिस सोने की पहचान
8: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
6: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए
8: आपकी शान
6: हमारी आन
8: क्वालिटी की पहचान
6: पाकिस्तान ज्वेलर्स 1 डुकफट लेन ब्रेडफोर्ड BD95ER 01274491442
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स
9: टू बिकम अ रेडियो प्रेजेंटर Please call the studio 01274 306677. Bradford Asian Radio.
10: ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल ना हमारा कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा
11: अरे सेफ राइडर जाएंगे ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे
10: बस ट्रक फोकलिफ्ट
12: टैक्सी लाइसेंस
10: हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार
11: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ राइडर
10: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत आज ही विजिट कीजिए
11: 33 वेटले लैंड ब्रेडफोर्ड
10: 01274201679 UK. सुनिए जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे
11: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स
10: खूबसूरत कारपेट्स लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ बॉबीज कारपेट्स लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स BD3ADN बॉबी आइए भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए नंबर मिलाइए 07414260

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grange Road, Bradford 7, 414-760.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन। अरे, ये पूरे ब्रेडफोर्ड में क्या है शोर?
3: आपको नहीं पता ऑफर्स इन मेनी होम स्टोर? रोजाना ताजा सब्जियां, फल, फ्रूट, सलाद, मीट, चिकन, आटा, दाल, चावल और मसाला, क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला।
2: हर शाम तो मचा है जिसका शोर, वो है मेनिंगम सुपर स्टोर।

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: फेस्टिवल 2026 मेला 15 एंड 16 अगस्त को
6: एक बार फिर मोर पार्क किलिंग हार्ट रोड ब्रेडफोर्ड में
5: जहां पहली बार माया नाज लोक फनकार नईम हजारवी अपने फन का मुजाहिरा करेंगे
6: फैशन फूड स्टॉल्स किड्स एंटरटेनमेंट और बहुत कुछ
5: एक खूबसूरत डे आउट आप सबके लिए सैटरडे एंड संडे 15 एंड 16 अगस्त 2026
6: लीड रोड फेस्टिवल
5: ब्रेडफोर्ड एजेंट रेडियो द ऑफिशियल मीडिया पार्टनर
6: आप भी
5: जरूर आइएगा उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे क्या ही चॉइस है आपका
6: ये चॉइस हमारा नहीं ये तो कमाल है फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का
5: जो कि पायदार मजबूत खूबसूरत डबल एंटर पर ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
6: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं
5: फर्स्ट चॉइस
6: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL
5: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
6: 01274317644
7: फॉर क्वालिटी वैल्यू स्टाइल एंड सिक्योरिटी योर नंबर वन चॉइस फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर
6: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले
8: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं
6: अरे पगली अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई जी हाँ दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है
8: झिलमिल करते कांटे बालियां कंगन गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार
6: टॉप क्वालिटी बेहतरीन सर्विस ओपन 7 डेज
8: 30 वेटले हिल ब्रैडफोर्ड BD8 8NG फोन 01274477257
6: दुबई ज्वेलर्स व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ शोर होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक आटा चावल दालें मसाला जात रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट हलाल गोश्त और चूजे फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले बचिए इधर उधर की ख्वारी से शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD8 8JL बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी
9: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है
8: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा मिलान की शेरवानी शलवार कमीज वेस्ट कोट प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे
6: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रेडफोर्ड BD8 8DR टेलीफोन 07885428349 अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड रोड ब्रेडफोर्ड
8: सुनिए जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे
6: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स
8: खूबसूरत कारपेट्स लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ बॉबीज कारपेट्स लिस्टेड डाइट ट्रैफिक लाइट्स ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स BD3 ADN बॉबी आइए भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए नंबर मिलाइए 07414260078
10: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
6: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है
10: जी हाँ पल्स जहाँ फिश एंड चिप्स बर्गर्स फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स
6: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए आज ही तशरीफ लाइए ओपन 7 डेज पल्स सी रूम 46 रूली एवेन्यू ब्रेडफोर्ड BD6 1DA फोन 01274306567 बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन
0: Sheffield Mela CIC presents DeciFest Sheffield Mela 2026. Join us at Firth Park, Sheffield on Sunday, 2nd of August from 12 till 8 p.m. A family fun day for the whole family with fun fair, food stalls and Mela shopping. Featuring live performances from Lamba Hussainpuri, H. Dami, Ramit Sandhu, Summer Blake and much, much more. Sunday, 2nd of August at Firth Park, Sheffield. We'll see you there.
3: हिसाबे उम्र का इतना सा गोशवारा है तुम्हें निकाल के देखा तो सब खसारा है। मैं महमूद रिज़वी अकाउंटेंट्स, जी हाँ, छोटे से छोटे टैक्सी अकाउंट से लेकर बड़ी से बड़ी कंपनी के अकाउंट्स बनवाने के लिए अब लिए एतमाद नाम महमूद रिज़वी अकाउंटेंट्स, ऑडिट एंड अकाउंटेंसी, टैक्सेशन, VAT, बुककीपिंग, पेरोल, फंडरेजिंग, कंपनी फॉर्मेशन, मॉर्गेजेस। अकाउंट्स के किसी भी मसले के लिए ना हो परेशान, क्योंकि आपकी मुश्किल करेंगे आसान महमूद रिज़वी चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स, महमूद रिज़वी, ग्रेट हॉटन रोड, ऑन ब्रैडफोर्ड, 424453, महमूद रिज़वी।
11: Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677. To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.

0: इनसे क्या लड़ रहे हो? ये तो मर्द हैं, पहले इनसे तो निपटो।
1: अरे हलीमा, ए मीना, ए सलमा, अरे चिकने छोरो की महफिल लगी है रे, जल्दी आ जल्दी हामा।
2: हाय हाय, हमसे निपटो री, हमसे निपटो।
1: हाय हाय, निपटो नहीं रे, लिपटो लिपटो
3: लिपटो रे, लिपटो।
4: अगर किसी ने भी एक कदम आगे बढ़ा
1: तो हाय हाय, क्या कर लेगा हमारा?
4: तो फोड़ दूंगा।
1: क्या फोड़ेगा
4: सर?

0: इंजन लगा दो,
1: हाँ जेल भी लगा दो,
0: हाँ जी मोटर भी लगा दो,

0: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets, or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange, and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorized by the UK Financial Conduct Authority.
1: फेस्टिवल 2026 मेला 15 एंड 16 अगस्त को
2: एक बार फिर मोर पार्क किलिंगहार्ट रोड ब्रेडफोर्ड में
1: जहां पहली बार किंग ऑफ भंगड़ा इब्रार उल हक अपने गानों से आपके दिलों को धड़काएंगे
2: फैशन फूड स्टॉल्स किड्स एंटरटेनमेंट और बहुत कुछ
1: एक खूबसूरत डे आउट आप सबके लिए सैटरडे एंड संडे 15 एंड 16 अगस्त 2026
2: लीड्स रोड फेस्टिवल
1: बेफोर्ड एजेंट रेडियो द ऑफिशियल मीडिया पार्टनर
2: आप भी
1: जरूर आइएगा उफ़ इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे क्या ही चॉइस है आपका
2: ये चॉइस हमारा नहीं ये तो कमाल है फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का
1: जो कि पायदार मजबूत खूबसूरत डबल एंटीपर ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
2: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं
1: फर्स्ट चॉइस
2: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL
1: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
2: 01274317644
3: क्वालिटी वैल्यू स्टाइल एंड सिक्योरिटी योर नंबर वन चॉइस फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर
2: दुल्हन वो जो पिया मन भाई
4: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए
2: नित नए डिजाइन के सेट चूड़ियां कंगन कांटे
4: बालियां अंगूठियां और हार
2: जो दुल्हन करे सिंगार
4: आज ही मामू काके की दुकान
2: खालिस सोने की पहचान
4: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
2: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए
4: आपकी शान
2: हमारी आन
4: क्वालिटी की पहचान
2: पाकिस्तान ज्वेलर्स 1 डुकवट लेन ब्रेडफोर्ड BD95ER 01274491442
4: पाकिस्तान ज्वेलर्स
5: टू बिकम अ रेडियो प्रेजेंटर Please call the studio 01274 306677. Bradford Asian Radio.
6: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
7: सुनिए जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे
2: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स
7: खूबसूरत कारपेट्स लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ बॉबीज कारपेट्स लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग BD3ADN बॉबी आइए भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए नंबर मिलाइए 07414260078

0: Master Jewelers, 93 Horton Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, टी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274-306-567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
3: ब्रेडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर।
4: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं, मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर, जहाँ पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 पाउंड से, जर्मन वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कॉफी टेबल, रग, कारपेट, मैट्रेसेस की वसी वैरायटी।
5: ओपन 7 डेज, 10 till 6, फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर। लव फर्नीचर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, अपोजिट बार्कलेज बैंक, फोन ब्रेडफोर्ड 9627229622।
4: लव फर्नीचर, फर्नीचर यू लव।
6: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: फेस्टिवल 2026 मेला 15 एंड 16 अगस्त को
6: एक बार फिर मोर पार्क किलिंग हार्ट रोड ब्रेडफोर्ड में
5: जहां पहली बार माया नाज लोक फनकार नईम हजारवी अपने फन का मुजाहिरा करेंगे
6: फैशन फूड स्टॉल्स किड्स एंटरटेनमेंट और बहुत कुछ
5: एक खूबसूरत डे आउट आप सबके लिए सैटरडे एंड संडे 15 एंड 16 अगस्त 2026
6: लीड्स रोड फेस्टिवल
5: ब्रेडफोर्ड एजेंट रेडियो द ऑफिशियल मीडिया पार्टनर
6: आप भी
5: जरूर आइएगा उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे क्या ही चॉइस है आपका
6: ये चॉइस हमारा नहीं ये तो कमाल है फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का
5: जो कि पायदार मजबूत खूबसूरत डबल एंटीपर ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
6: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं
5: फर्स्ट चॉइस
6: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL
5: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
6: 01274317644
7: फॉर क्वालिटी वैल्यू स्टाइल एंड सिक्योरिटी योर नंबर वन चॉइस फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर
6: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले
8: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं
6: अरे पगली अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई जी हाँ दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है
8: झिलमिल करते कांटे बालियां कंगन गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार
6: टॉप क्वालिटी बेहतरीन सर्विस ओपन 7 डेज
8: 30 वेटले हिल ब्रैडफोर्ड BD8 8NG फोन 01274477257
6: दुबई ज्वेलर्स व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक आटा चावल दालें मसाला जात रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट हलाल गोश्त और चूजे फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले बचिए इधर उधर की ख्वारी से शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD8 8JL बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी
9: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है
8: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा मिलान की शेरवानी शलवार कमीज वेस्ट कोट प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे
6: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रेडफोर्ड BD8 8DR टेलीफोन 07885428349 अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड्स रोड ब्रेडफोर्ड
8: सुनिए जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे
6: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स
8: खूबसूरत कारपेट्स लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ बॉबीज कारपेट्स लिस्टेड एट ट्रैफिक लाइट्स ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स BD3 ADN बॉबी आइए भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए नंबर मिलाइए 07414260078
10: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
6: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है
10: जी हाँ पल्स जहाँ फिश एंड चिप्स बर्गर्स फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स
6: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए आज ही तशरीफ लाइए ओपन 7 डेज पल्स सी रूम 46 रूली एवेन्यू ब्रेडफोर्ड BD6 1DA फोन 01274306567 बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन
0: Sheffield Mela CIC presents DeciFest Sheffield Mela 2026. Join us at Firth Park, Sheffield on Sunday, 2nd of August from 12 till 8 p.m. A family fun day for the whole family with fun fair, food stalls and Mela shopping. Featuring live performances from Lamba Hussainpuri, H. Dami, Ramit Sandhu, Summer Blake and much, much more. Sunday, 2nd of August at Firth Park, Sheffield. We'll see you there.
11: Q
3: क्या आपकी आवाज खूबसूरत है क्या आप में बोलने की जरूरत है अगर ऐसी ही सूरत है तो ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो को आपकी जरूरत है आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए और अपनी आवाज सुनने वालों के दिलों तक पहुंचाइए और खुद को रेडियो स्टार बनाइए याद रखिए अगर आपको बड़ी-बड़ी छोड़ने की आदत है तो यह आपके कल के बड़ा ब्रॉडकास्टर बनने की जमानत है आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो
11: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो कॉल द स्टूडियो नाउ 01274306677 To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.
12: नजर आता नहीं, लेकिन हर एक धड़कन में रहता है. नजर आता नहीं लेकिन हर एक धड़कन में रहता है मेरा अल्लाह मेरी हर सांस के बंधन में रहता है मेरी शहरक से भी नजदीक है महसूस होता है मुसलसल वो मेरे एहसास के आंगन में रहता है मेरे खून की हरारत उसकी ही मरहून मन्नत है मेरे खून की हरारत उसकी ही मरहून मन्नत है कि हर एक तारे नफस में वो मेरे तन मन में रहता है दुआएं सबकी सुनता है बकदरे ज़र्फ देता है दुआएं सबकी सुनता है बकदरे ज़र्फ देता है बशर लेकिन तमन्नाओं के दर्पण ही में रहता है बड़ाई उसको जेबा है वही यक्ता वही कादिर बड़ाई उसको जेबा है वही यक्ता वही कादिर वो सारे आलिमों का रब है हर बंधन में रहता है नजर आता नहीं लेकिन हर एक धड़कन में रहता है मेरा अल्लाह मेरी हर सांस के बंधन में रहता है मौजूद सामीन कराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू इस वक्त आप समाअत फरमा रहे हैं ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो की नशियात 1413 AM पे ऑनलाइन भी और साथ ही साथ ये नशियात जो है वो पहुंचती हैं डैब के जरिए भी चंद इलाकों में इसके अलावा आप अपने मोबाइल फोन पर हमारे फ्री ऑफ कॉस्ट स्मार्ट ऐप के जरिए हमारी नशियात से लुत्फानंदोज हो सकते हैं हमारा वेबसाइट का पता है www.bradfordasianradio.co.uk और समीन कराम हस्ब मामूल आपसे मुखातिब है आपकी मेजबान उस्मा अशफाक प्रोग्राम इंतखाब के हमरा यहां पर मौजूद हैं हम हमारा आपका साथ रहेगा तकरीबन एक बजे तक और हमेशा की तरह पुरुमीद और दुआ गो कि आप जहां कहीं भी मौजूद हैं बखैरियत हैं शादो आबाद हैं और ये भी उम्मीद रखते हैं कि आप हमारे साथ साथ हैं जी हां आप हमारे साथ साथ किस तरह से हैं कि आप प्रोग्राम सुन रहे हैं जहां कहीं पे भी आप प्रोग्राम सुन रहे हैं आप हमें बता सकते हैं कि किस शहर में किस इलाके में बैठ के आप हमारे प्रोग्राम से लुत्फानंदोज हो रहे हैं प्रोग्राम की तरतीब और तफसील से भी आगाह करते चलें आपको कि इंतखाब क्या करते हैं हम जी हां गीत तो होते ही हैं शामिल आपकी डेडिकेशंस के साथ आपके कुछ फरमाइशी गीत प्रोग्राम में शामिल रखते हैं हम उनका इंतखाब करते हैं इसके अलावा सामीन कराम आपके ज़ौक की तस्कीन के लिए कुछ शेर व शायरी कुछ मुतफर्रक शोरा का मुंतखब कलाम जो है वो हम अपने प्रोग्राम में शामिल रखते हैं जिससे आप भी महसूस होते हैं और हमें भी वो बहुत अच्छा लगता है इसके अलावा क्या होता है जी हाँ तारीख के औराक को उलटते पलटते रहते हैं हम अक्सर औकात और तारीख के औराक से कोई ना कोई तारीखी वाकया जिससे आप महसूस भी हों मुस्तफीज भी हों और जाहिर है सबक आमोज वो होता ही है हम उससे बहुत सबक सीखते हैं जो सीखने वाले हैं तो उसे भी हम अपने प्रोग्राम में शामिल रखते हैं तो आज के प्रोग्राम में भी एक बड़ा ज़बरदस्त तारीखी वाकया हमने शामिल किया है आप उसको सुनते रहिएगा साथ ही साथ सामीन कराम छोटी सी खास बात के उनवान से कोई ना कोई कहावत कोई ना कोई कॉल किसी बुजुर्ग का किसी शायर का किसी दानिश्वर का किसी साइंटिस्ट का किसी नबी का किसी वलीउल्लाह का कॉल हम शामिल रखते हैं अपने प्रोग्राम में जिससे क्या है कि जहन की खिड़कियां खुलती हैं और इंसान को वो अच्छी बातें जो हैं उनको बार बार जाहिर है तस्कीर होती रहती है दोहराना पड़ता है इंसानी जहन भूल जाता है बड़ा भुलक्कड़ इंसान पैदा हुआ है तो उसकी याद दहानी के लिए हम उन चीज़ों को भी अपने प्रोग्राम में उन बातों को शामिल करते हैं ताकि हमें भी याद रहे हम भी सुनते रहें आप भी सुने और आपके जहन में भी वो बातें तरोताज़ा रहें इसके अलावा सामीन कराम क्या होगा, जी हाँ आप जानते ही हैं, आज के प्रोग्राम में अशफाक अहमद साहब का जाविया हम अपने प्रोग्राम में शामिल रखते हैं। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में उनका जाविया नजर जो है, अशफाक अहमद साहब का बहुत बड़ा उर्दू अदब का नाम, जिन्होंने कॉलम्स भी लिखे, ड्रामे लिखे, जिन्होंने अफसाने लिखे, नॉवेल्स लिखे, बहुत बड़े दानिश्वर थे, तो उनका जो जाविया नजर है आप तक पहुंचाते हैं हम अपने हर मंडे के प्रोग्राम में। आज का जो जाविया नजर है समीना करम सबसे मुतालिक है, हम सबको सुनना चाहिए और हम सबको उस पर अमल भी करना चाहिए। उनवान उसका बड़ा दिलचस्प है, जात की तेल तब्दीली, तेल बदली, तब्दीली नहीं, बदली और तब्दीली एक ही बात है, लेकिन जो उन्होंने जो लफ्ज यूज इस्तेमाल किया हम उसी को इस्तेमाल कर रहे हैं कि जात की तेल बदली। अब ये जात की तेल बदली क्या है, किस तरह से है, क्यों होगी, इसकी जरूरत क्या है और किस तरीके से आप कर सकते हैं या हम कर सकते हैं, तो इसको हम जब सुनेंगे तो हमारे इल्म में यकीनन इजाफा होगा और बड़ी पते की, बड़ी काम की ये चीज है। तो ये सब चीजें सामीने कराम आज के इंतखाब में शामिल हैं। आपसे गुजारिश इतनी सी है कि आप साथ साथ रहिएगा और अपनी मौजूदगी का एहसास आप दिला सकते हैं, किस तरह से, कि आप हमारे स्टूडियोज के नंबर पर टेलीफोन कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं कि आप प्रोग्राम सुन रहे हैं, कोई फरमाइश है आपकी, कोई डेडिकेशन है आपकी, इसके अलावा कोई प्रोग्राम के हवाले से आ रहा है, तजावीज़ हैं, आप वो भी हमें बता सकते हैं और हम जरूर बिल जरूर कोशिश करेंगे कि आपकी फरमाइश, आपकी डेडिकेशन सर आंखों पर, आपके लिए जरूर हम उसे पेश करेंगे। और उसके लिए नंबर क्या है, जाहिर है नंबर आपको पता होना चाहिए, बहुत से लोगों को पता भी है, हमारे माशाल्लाह से जो रेगुलर कॉलर्स हैं, जो प्रोग्राम में शामिल होते रहते हैं, अपनी खूबसूरत आवाज से हमें भी नवाजते हैं, सुनने को मिलती है, फिर अपनी फरमाइश या डेडिकेशन हम तक पहुंचाते हैं, किस नंबर के जरिए, 01274 306 77। बहुत आसान सा, बड़ा सीधा साधा नंबर है, 01274 ब्रेडफुट का कोड एंड देन यू विल डायल व्हाट 306 77 306 77। एक और नंबर भी है वैसे, व्हाट्सएप का नंबर है, आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ज्यादातर याद नहीं रहता, लोग उसको इस्तेमाल नहीं करते, यही आसान नंबर है, अच्छा है, स्टूडियोज में डायरेक्ट रब्ता भी हमारा आपसे हो जाता है, आपसे बातचीत हो जाती है, तो वो बहुत अच्छा नंबर है, बड़ा आसान सा। बहरहाल दूसरा नंबर भी आपको बताते हैं, 07800 599 563। जी हाँ, 07800 599 563 ये हमारा दूसरा नंबर है व्हाट्सएप का, इसके जरिए भी आप जो है हम तक पहुंच सकते हैं, यानी ये जराए हैं। और जैसा कि हमने पहले बताया कि ऑनलाइन bradfordasianradio.co.uk के जरिए आप ईमेल कर सकते हैं, अपना पैगाम पहुंचा सकते हैं। तो समझ लेकर हम, ये आज के प्रोग्राम की तरतीब व तफसील है, हम आपकी कॉल्स का इंतजार करेंगे और आप हमारी बातों का इंतजार कीजिएगा, जो सिलसिले हमने प्रोग्राम में शामिल अभी आपको बताए कि हम करने जा रहे हैं, सुनिएगा, बताइएगा कि आपको कैसा लगा। तो लीजिए फिलहाल हम चलते हैं प्रोग्राम के सबसे पहले गीत की जानिब। इस गीत को, ये हमारी मर्जी का गीत होता है क्योंकि उसके बाद आपकी फरमाइशें शुरू हो जाएंगी, आपकी डेडिकेशन शुरू हो जाएंगी, तो फिर जरा आप थोड़ा सा जो गीतों का अंदाज है वो बदल जाता है, क्योंकि हमारे जितने लिसनर्स हैं और जितने कॉलर्स हैं खसूसन, उनको पुराने गीत बहुत पसंद हैं, और जब भी फरमाइश की जाती है किसी बहुत पुराने गीत की, मोहम्मद रफ़ी के, लता मंगेशकर के, मोहतरमा नूर जहाँ के, उनके गीतों की फरमाइश आती है, तो ज़्यादातर हम फिर पुराने गीत ही लगाते हैं। लीजिए फिलहाल इस खूबसूरत से गीत को सुनिए और नंबर मिलाइएगा 01274 306 77।

0: लीज रोड फेस्टिवल 2026 मेला 15 एंड 16 अगस्त को
1: एक बार फिर मोर पार्क किलिंग हार रोड ब्रेडफोर्ड में,
0: जहां पहली बार किंग ऑफ भंगड़ा इब्रार उल हक अपने गानों से आपके दिलों को धड़काएंगे।
1: फैशन, फूड स्टॉल्स, किड्स एंटरटेनमेंट और बहुत कुछ।
0: एक खूबसूरत डे आउट आप सबके लिए सैटरडे एंड संडे 15 एंड 16 अगस्त 2026
1: लीज रोड फेस्टिवल।
0: बेडफोर्ड रीजन रेडियो द ऑफिशियल मीडिया पार्टनर।
1: आप भी
0: जरूर आइएगा। उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
1: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
0: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्री ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
1: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
0: फर्स्ट चॉइस 106
1: लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL।
0: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
1: 01274317644।
2: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
1: दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
3: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
1: नित नए डिजाइन के साथ चूड़ियां, कंगन, कांटे,
3: बालियां, अंगूठियां और हार,
1: जो दुल्हन करे सिंगार,
3: आज ही मामू काके की दुकान,
1: खालिस सोने की पहचान,
3: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
1: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
3: आपकी शान
1: हमारी आन,
3: क्वालिटी की पहचान।
1: पाकिस्तान ज्वेलर्स 1 Dufferin Lane, Bradford BD95ER 01274914942।
3: पाकिस्तान ज्वेलर्स।
4: टू बिकम अ रेडियो प्रेजेंटर, please call the studio 01274306677. Bradford Asian Radio.
5: ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
6: अरे सेफ राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे।
5: बस, ट्रक, फोकलिफ्ट, टैक्सी लाइसेंस, हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
6: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ राइडर।
5: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत, आज ही विजिट कीजिए
6: 33 Wetland Lane, Bradford 01274201679।
5: UK। सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
6: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
5: खूबसूरत कारपेट्स, लैमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।

ये नाम अब हम लिखना शुरू हो गए हैं, आपकी लिस्ट बनना शुरू हो गई है ताकि हमें याद रहे। तो फोन किया हमारी बहुत प्यारी सी हमारी जो लिसनर्स हैं समीरा साहिबा, बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश। हमेशा हम कहते हैं आप आए, बाहर आई तो आपने प्रोग्राम में शिरकत की, बहुत शुक्रिया। आपने दो तीन बार कोशिश की, लाइन आपने कहा मसरूफ थी, बस ये इत्तफाक अब हो जाता है और अल्लाह का एहसान कि अब ये इत्तफाक ज्यादा होने लगा है। अल्लाह करे कि ऐसे ही रहे। आप लोगों की जो सपोर्ट है वो ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो के साथ साथ रहे, तो यकीनन ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो भी आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम पेश करता रहेगा। तो समीरा साहिबा, आपके लिए एक और खूबसूरत सा गीत हम पेश करेंगे। आपने कहा कि उदित नारायण या कुमार सानू की आवाज में गीत लगाइएगा, तो इस गीत के बाद जो अगला गीत होगा समीरा साहिबा, खसूसी तौर पर आपके लिए बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। जरका साहिबा, आप शामिल हुई, हमेशा आप भी प्रोग्राम में शामिल होती हैं, बहुत इज्जत अफजाई फरमाती हैं, तहे दिल से आपके भी मशकूर ममनून। और जरका साहिबा, आपने बताया कि आज थोड़ी सी आप उदास हैं। उदास क्यों हैं कि आज आपकी वालिदा साहिबा की बरसी है। पहली बात तो ये कि अल्लाह ताला से दिली दुआ है हमारी पूरी ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो की टीम की, खसूसन हमारी तरफ से, कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, आमीन सुमामीन। आपको सब्र जमील अता फरमाए। माँ बाप ऐसी चीज होते हैं सामीने कराम, वो कभी भी उनकी कमी पूरी नहीं होती। बाज़ोकात एक स्टेज आती है जिंदगी की कि इंसान को ऐसा लगता है कि हाँ अब हमें इतनी जरूरत शायद माँ बाप की नहीं रही। क्यों? क्योंकि इंसान अपनी जो नई फैमिली बनाता है, अपने बच्चे, बीवी या शौहर जो भी हैं, खानदान है, उनके कामकाज में, उनकी देखभाल में, अपनी नौकरी के चक्कर में, अपने कारोबार के चक्कर में, वही रोजी रोटी का जिसे कहते हैं सिलसिला, उसमें इतना मसरूफ हो जाता है कि वो ये समझता है कि वो काफी बड़ा हो गया है। वो खुद उस पर इतनी जिम्मेदारियां हैं कि अब माँ बाप ठीक है, उनकी जरूरत होती है जब बच्चा छोटा होता है, उसको पालना है, पोसना है, उसकी तालीम का एहतमाम करना है, उसकी तरबियत करनी है, लेकिन उसके बाद इतना वो ताल्लुक दिली शायद रहता है अंदर ही अंदर, लेकिन उसका इजहार नहीं हो पाता। लेकिन यही अमूमन यहां पर हम गलत होते हैं। माँ बाप की कमी कभी पूरी नहीं होती, नंबर एक, और हमेशा उनकी जरूरत रहती है मरते दम तक, चाहे इंसान खुद बूढ़ा हो जाए, वालिदैन के लिए वो बच्चा ही रहता है, वही मासूम सा प्यारा सा बच्चा जो उनकी कायनात होता है, जो उनकी दुनिया होता है। तो इस हवाले से, माँ की ममता ही के हवाले से एक बड़ा छोटा सा खूबसूरत सा किस्सा है, वाकया, वो हम आपको सुनाते हैं जरका साहिबा। कि इब्ने हशाम है, वो कहते हैं कि एक खातून थी हिफ्सा, उनका बेटा था, उसका नाम था हुज़ैल, तो वो बहुत उससे मोहब्बत करती थी, इकलौता एक ही बेटा था उनका, और उस पर बड़ा रहम और तरस खाया करती थी कि वो इतनी गर्मी में जाकर बांस छील कर लाता था, खुश करता था ताकि धुआं ना उठे, सर्दी का मौसम होता था तो वो कहती है कि मैं नमाज पढ़ रही होती थी तो वो जो है ना मेरे पीछे बैठकर हल्की सी आग जलाता कि मुझे हरारत मिलती रहे और मैं आराम सुकून से सो सकूं। और वो कहती हैं कि बाज़ औक़ात तो उसकी ये खिदमत सुबह तक जारी रहती, तो इत्तफाक हुआ कि उसके बेटे का, हुज़ैल का इंतकाल हो गया। अब जाहिर है इकलौता बेटा हो, इतना फरमाबरदार, इतनी मोहब्बत और इतनी केयर करने वाला, जब उसका इंतकाल हुआ तो वो इंतहाई सदमे में चली गई। और वो खातून बताती है हिफ्सा, मतलब उनके ये अल्फाज हैं कि वो अपने सीने में ऐसी हरारत सी महसूस करती कि जिसका खत्म होना मुश्किल था, यानी बहुत ही सदमे, गहरे सदमे में चली गई, हर वक्त रोना धोना, हर वक्त याद करना अपने बच्चे को। वो खातून कहती हैं कि एक रात नमाज के लिए उठी, नमाज में सूरह नहल शुरू की और जब आयत नंबर 94 पे पहुंची, 94 पे, उसका तर्जुमा यह है कि जो कुछ तुम्हारे पास है वो खत्म हो जाने वाला है और जो कुछ अल्लाह के पास है वो बाकी रहने वाला है, और हम सब्र करने वालों को उनके अच्छे अमल का बदला जरूर देंगे। क्या सूरह नहल की आयत नंबर 94 थी कि जो कुछ तुम्हारे पास है वो खत्म हो जाने वाला है और जो कुछ अल्लाह के पास है वो बाकी रहने वाला है और हम सब्र करने वालों को उनके अच्छे अमल का बदला जरूर देंगे। तो वो खातून कहती हैं हिफ्जा कि उसी वक्त मेरा दर्द, मेरा गमो अलम, मेरा रंज मुझसे दूर हो गया। तो समझ ने कहा मकसद क्या है, एक तो ये कि जाहिर है मां की अपने बच्चे से मोहब्बत, और दूसरी बात ये कि जब भी आपको तकलीफ हो, परेशानी हो,
कोई मसला हो, कोई कुछ भी प्रॉब्लम किसी किस्म की है, रुपए पैसे की है, काम काज की है, घरेलू परेशानियां हैं, किसी उलझन का आप शिकार हैं, कोई बीमारी खुदा ना खास्ता आ गई है, कोई और आफत या मुसीबत आन पड़ी है, तो आप मदद किससे लें? खुद अल्लाह पाक कुरान में कहते हैं किससे मदद दो, नमाज से और सबर से। तो ये कुरान है ना, जिसे हमने सवाब कमाने की किताब बना के रख लिया, इसको जब तक आप समझ के पढ़ेंगे नहीं, ये आपको हिदायत नहीं मिलती। ये आपकी जिंदगी में आसानियां लेके आता है, ये आपकी जिंदगी में सुकून देता है, जिसको आप हर बंदा सुकून की तलाश में है ना, वो कहां से मिलेगा? जब आप अल्लाह से जुड़ जाएंगे। अल्लाह से कैसे जुड़ेंगे? उसके कलाम के जरिए, जिंदा कलाम के जरिए। नमाज बिल्कुल है, उसकी अहमियत, वो तो फर्ज है, आप उसको तो छोड़ नहीं सकते। नमाज, रोजा है, जकात है, हज है, ये फराइज है। लेकिन उससे बढ़ के आगे जब आप अल्लाह से अपना दिली ताल्लुक कायम करना चाहते हैं ना, तो आप अल्लाह की किताब को पकड़ लीजिए। उससे आपको क्या होगा? हिदायत भी मिलेगी, उससे आपको सुकून भी मिलेगा, उससे आपको दवा मिलेगी, आपको शिफा मिलेगी। क्यों? क्योंकि आप अल्लाह के करीब हो जाएंगे। तो जब इंसान को सहारा चाहिए होता है ना, जब भी परेशान हो, मुसीबत में हो, तकलीफ में हो, वो कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा। तो वो तो डूबते को अगर तिनके का सहारा महसूस हो सकता है, तो एक इंसान को जब अल्लाह उसको महसूस रहेगा, उसको याद रहेगा, तो फिर सोचिए कि उसकी जिंदगी कितनी खूबसूरत होगी। और हकीकतन जरा सोचिए, ये माल दौलत, ये औलाद, ये इज्जत, ये शोहरत, ये सब कुछ फानी है, फना हो जाने वाला है। जात किसकी रहेगी? अल्लाह ताला की। जो अल्लाह के पास है, सिर्फ वो बाकी रहने वाला है। और फिर आगे खुद अल्लाह ने फरमा दिया कि जो सब्र करता है तो उसके इस अच्छे अमल का बदला हम जरूर देंगे। तो लीजिए जरका साहिबा, ये जरा उदास सा गाना है, हमें भी बहुत पसंद है। वैसे तो ये बाप और बेटी का है, माँ के हवाले से नहीं है, लेकिन वालिदैन, बाप हो माँ हो, बात एक ही होती है। ये आपको हम आपके लिए जरका साहिबा पेश कर रहे हैं, और समीरा साहिबा इस गीत के बाद खसूसी तौर पर आपका गीत है, तो सुनती रहिएगा आप ब्रेडफिट एशियन रेडियो को।

जी जरका साहिबा, बहुत खूबसूरत सा गीत था। हकीकतन बहुत क्या कहिए, वेरी सेंसिटिव, बस हम क्या कह सकते हैं। हमें तो बहुत बहुत बहुत पसंद है। वैसे तो ये वालिद और बेटी का गीत था, लेकिन बहरहाल एक वालदा के लिए भी आप यही जो है ना कैफियत इंसान महसूस करता है, और इंसान हमेशा हमेशा अपने वालिदैन को याद रखता है। अब एक क्या कहिए कि खूबसूरत सी आपको नज़्म हम सुनाते हैं, बहुत ही खूबसूरत सी नज़्म है, हमें बहुत पसंद आई। और क्या है कि इस नज़्म को हम आप हम सुनने वालों के नाम करते हैं ख़ासूसी तौर पर, जितने हमारे अब तक कॉलर्स प्रोग्राम में शामिल हुए। तो फैल साहब आप शामिल हुए, अज़रका साहिबा आप शामिल हुई, जनाब तारिक भट्ट साहब आप शामिल हुए, समीरा साहिबा आप तशरीफ लेके आई। तो ये आप तमाम जो हमारे कॉलर्स हैं उन सब के नाम हम इसे करते हैं। अब मुझे जल्दी है, जी हाँ, अब मुझे जल्दी है, इस शिद्दत के साथ जीने की जल्दी है जो सिर्फ इदराक ही के बाद आती है। मैं बाकी अंगूरों में से एक दाना भी जाया नहीं करूंगा। मुझे इल्म है बाकी अंगूरों का जायका इनसे बहुत ज्यादा मीठा होगा जो मैं खा चुका, जिन्हें मैं चाहता हूं और वो जो मेरे अंदर का वजूद है। अब मैं उनके साथ पुरसकून इख्तिताम की तरफ बढ़ना चाहता हूं। जैसे कन्फ्यूशियस ने कहा था कि वो हमारी दो जिंदगियां हैं, दूसरी तब शुरू होती है जब पता लगता है कि असल में आपके पास सिर्फ एक है। खुदा करे आपका अगला दिन भी इसी जल्दी के साथ हो। सामिने कराम, ये खूबसूरत सी छोटी सी नज्म जो है ये मारियो डी आंद्रे ने लिखी थी, ब्राजील का ये शायर है, और इसका ये जो तर्जुमा किया है उर्दू में हसनैन जमाल साहब ने किया। बहुत ही खूबसूरत सी ये नज्म थी सामीन, और इसमें देख लीजिए बहुत फलसफा छुपा है। दो जिंदगियों का ये जो हमारी ये वाली जिंदगी है और जो हमारी अखरवी जिंदगी है, ये जो फना बका का मसला है, इस पे हम अभी तफसीली बात करेंगे। फिलहाल चूंकि हमें समीरा साहिबा की फरमाइश पूरी करनी है, तो लीजिए समीरा साहिबा ये खूबसूरत सा गीत सुनिएगा, इसके बाद कमर्शियल ब्रेक, और उसके बाद बाकी आपसे बातचीत होती है और थोड़ी बहुत फना और बका के हवाले से भी आज हम बातचीत करेंगे। और याद रखिए प्रोग्राम के अगले हिस्से में जनाब अशफाक अहमद साहब का जाविया आपका मुंतजिर होगा, जिसका उन्वान है जात की तेल बदली। बहुत मजे की बात है, बहुत अच्छी बातें हैं, तो प्रोग्राम को सुनते रहिएगा, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो के साथ साथ रहिएगा। समीरा साहिबा आपके लिए ये खूबसूरत सा गीत।

जी समय ने कलाम खूबसूरत सा आपने गीत सुना और ये समीना साहिबा आपके लिए इस खूबसूरत से गीत को पेश किया था। आपने कहा था कि जी उदित नारायण की आवाज में कोई अच्छा सा गीत लगाइए, तो हमने ये गीत आपके लिए पेश किया, यकीनन आपने पसंद किया होगा। समीना कलाम, बात हो रही थी फना की, कि जिंदगी जो है वो चली जाती है, इंसान आता है दुनिया में, इंसान मर जाता है, जिंदगी और मौत एक हकीकत है। और आज की छोटी सी खास बात के उनवान से भी इसको साथ जोड़ते हैं। मौलाना रूमी का नाम आपने यकीनन सुना होगा, बहुत बड़े मौलाना गुजरे हैं, खूबसूरत शायरी की उन्होंने, फारसी के ये शायर थे। उन्होंने उनका कॉल है, लिखते हैं, मैं फना हुआ तो हक के साथ हुआ, फिर उसी के साथ बाकी रहा। ये मौलाना रूमी का कॉल है कि मैं फना हुआ तो हक के साथ हुआ, फिर उसी के साथ बाकी रहा। अब ये

0: ना क्या चीज होती है। फना जो है वो इससे मुराद होती है कि जो आपकी आपकी अना है, जो आपकी ख्वाहिशात हैं, जो आपका नफ्स आपके अंदर, ये जो खुदपसंदी होती है, ये जो ख्वाहिशात होती हैं, जो कुछ, यानी आपका अपना नफ्स की बात अमूमन कह लीजिए, कि उसका जब इंसान उसको मार लेता है, जिसे कहते हैं ना मन मार लेना, उसका खात्मा कर लेता है और इसे कहते हैं फना हो जाना। अब आप किसी के लिए भी हो सकते हैं, कुछ लोग किसी शख्स की मोहब्बत में मुब्तला होकर फना अपने आप को कर लेते हैं, कुछ लोग दौलत के पीछे फना हो जाते हैं कि जी अपना सब, अपना आप तन मन धन से वो लगा देते हैं जोर में कि जी हमें दौलत कमानी है, या हमें शोहरत हासिल करनी है, या हमें फला ओहदा चाहिए, उसके लिए वो बहुत तगोदो करते हैं, तो इसे कहते हैं फना हो जाना। और जब आप अल्लाह की राह में अपनी इस ख्वाहिश नफ्स को, अपने इस तकब्बुर को, अपनी इस अना को, इस खुदपसंदी को जब आप ख़त्म कर देते हैं, असल चीज़ तब होती है, इसे कहते हैं फना होना, फलसफे की रूह से, और कह लीजिए कि आप दीन की रूह से। और बका क्या होती है? बका से मुराद होती है कि अल्लाह की मोहब्बत, उसकी अतात, उसकी आप कह लीजिए उसके रस्ते पे चलना, उसकी मारिफत, उसकी रजा के साथ चलना, वो एक नई जिंदगी होती है जो हमेशा हमेशा रहने वाली होती है, उसे कहते हैं बका। ये फना और बका, इसका ये सिलसिला होता है। और फना में वही बात कि आप जब अल्लाह की खातिर करते हैं ना ये सब कुछ, ये दुनियादारी, ये खुदपरस्ती, वही जो सब अभी बातें हुई, और फिर आप मजीद ये कि अपनी हर कामयाबी को अल्लाह की अता समझते हैं, अपनी हर खूबी को, जाहिर है ये हकीकत भी है, अल्लाह ही की दी हुई ये नेमतें हैं, अल्लाह ही का ये फजल होता है इंसान के ऊपर, किसी की शक्ल बहुत अच्छी है, कोई किसी की आवाज अच्छी है, किसी को कोई शायर या शायरा बहुत अच्छे हैं, कुछ लोग एक्टिंग बहुत अच्छी कर लेते हैं, कोई भी सलाहियत है, कोई भी काबिलियत है, वो किसकी जानिब से है? अल्लाह की दी हुई। तो शुक्र किसका अदा करना चाहिए? उसका, ना कि हम तकब्बुर में पड़ जाए। इसलिए जब अल्लाहु अकबर कहा जाता है ना, तो इसका क्या मतलब है कि सबसे, तमाम चीजों से बड़ी जात किसकी है? अल्लाह की। फिर यह कि अपनी हर सांस को अल्लाह की अमानत जानना, जाहिर है जब आपको अल्लाह याद रहेगा हर वक्त, तो फिर आप उसका याद रखेंगे, उसके जिक्र से अपने आप को खाली नहीं छोड़ेंगे। ये नहीं होता कि हर वक्त आप नमाज में पड़े रहें, सजदे में, आप हर वक्त रोजे से रहें। अभी आप जो भी काम कर रहे हैं, अगर आप नेक नियती के साथ अल्लाह की रजा की खातिर कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, तो वो इबादत बन जाता है, उसकी रजा उसमें हो जाती है। फिर ये कि अपनी हर ख्वाहिश को अल्लाह के हुक्म के ताबे कर देना, यानी अल्लाह के लिए अपनी मैं को मिटाकर अल्लाह की खातिर जिंदा रहना, ये होती है फना, फना फिल्ला इसे कहते हैं। और बका भी क्या है? उसके बाद की जो जिंदगी इंसान को मिलती है ना, वो फिर हमेशा हमेशा की जिंदगी होती है, वो फिर अल्लाह की रजा, उसकी मोहब्बत, उसकी अतात, उसकी मारिफत में एक नई रूहानी जिंदगी जो है उसे हासिल करना बका कहलाता है। ये है ज़मीन फना और बका का फलसफा। फिलहाल एक ब्रेक लेनी है हमें, ब्रेक के बाद हम आपसे फिर मुखातिब होंगे। सुनते रहिए ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो,
1: कम्युनिटी रेडियो, ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो ऑन 14:13 AM, DAB+, मोबाइल ऐप एंड ऑनलाइन एट bradfordasianradio.co.uk। दिस इज ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।
2: And the winner is
3: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: फेस्टिवल 26 मेला 15 एंड 16 अगस्त को
6: एक बार फिर मोर पार्क किलिंग हार्ड रोड ब्रेडफोर्ड में,
5: जहां पहली बार माया नाज लोक फनकार नईम हजारवी अपने फन का मुजाहिरा करेंगे।
6: फैशन, फूड स्टॉल्स, किड्स एंटरटेनमेंट और बहुत कुछ।
5: एक खूबसूरत डे आउट आप सबके लिए सैटरडे एंड संडे 15 एंड 16 अगस्त 2026
6: लीड्स रोड फेस्टिवल।
5: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो द ऑफिशियल मीडिया पार्टनर।
6: आप भी
5: जरूर आइएगा। उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
6: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
5: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंटरप्राइज ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
6: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
5: फर्स्ट चॉइस
6: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
5: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
6: 01274317644।
7: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
6: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
0: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
6: अरे पगली, अब दुबई ब्रैडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
0: जी मिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
6: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
0: 30 वेटली हिल ब्रैडफोर्ड BD8 8NG, 4012744772 57। दुबई ज्वेलर्स,
6: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका। पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक। आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे। फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की खुआरी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी। बुखारी
8: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
0: अरे दूल्हा जब शेरवानी मिलान दूल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दूल्हे को शहजादा बना दे।
6: मिलान दूल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8DR। टेलीफोन 07885428349। अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रैडफोर्ड।
0: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
6: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली £299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली £99।
0: खूबसूरत कारपेट्स, लैमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
6: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
9: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
6: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए, ओपन 7 डेज। पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रैडफोर्ड, BD6 1DA। फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
10: Sheffield Mela CIC presents DesiFest Sheffield Mela 2026. Join us at Firth Park, Sheffield on Sunday, 2nd of August from 12 to 8pm. A family fun day for the whole family with fun fair, food stalls and Mela shopping. Featuring live performances from Lemba Husseinpuri, H. Dami, Ramit Sandhu, Summer Blake and much, much more. Sunday, 2nd of August at Firth Park, Sheffield. We'll see you there.
11: Do you know there are 170,000 new cases of cancer each year in Pakistan? Do you know that Imran Khan Cancer Appeal provides free cancer treatment to 75% of its patients? Do you know that the third specialist Shaukat Hanum Cancer Hospital is being built in Karachi? We need your support more than ever now. Please donate today by calling 01274 424 444 or donate online at ikca.org.uk.
1: Bradford Asian Radio. Call the studio now, 01274 306677. To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.
0: کیا رفت کی لذت سے نہ دل کو آشنا تو نے، گزاری عمر پستی میں مثال نقش پا تو نے، رہا دل بستائے محفل مگر اپنی نگاہوں کو، کیا بیرون محفل سے نہ حیرت آشنا تو نے، فدا کرتا رہا دل کو حسینوں کی اداؤں پر مگر دیکھی نہ اس آئینے میں اپنی ادا تو نے، تعصب چھوڑ نادا دہر کے آئینہ خانے میں یہ تصویریں ہیں تیری جن کو سمجھا ہے برا تو نے سراپا نہ لائے بیداد سوزے زندگی ہو جا سپند آسا گرا میں باندھ رکھی ہے صدا تو نے صفائے دل کو کیا آرائش رنگے تعلق سے کفے آئینہ پر باندھی ہے او نادا ہینا تو نے زمین کیا آسمان بھی تیری کچ بینی پہ روتا ہے غضب ہے سترے قرآن کو چلیپا کر دیا تو نے زبان سے گر کیا توحید کا دعویٰ تو کیا حاصل زبان سے گر کیا توحید کا دعویٰ تو کیا حاصل بنایا ہے بتے پندار کو اپنا خدا تو نے کنویں میں تو نے یوسف کو جو دیکھا بھی تو کیا دیکھا ارے غافل جو مطلق تھا مقید کر دیا تو نے حوث بالائے ممبر ہے تجھے رنگی بیانی کی نصیحت بھی تیری صورت ہے ایک افسانہ خانی کی. موزے سامعین کرام اس وقت آپ سماعت فرما رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کی نشیات 1413 AM پہ. یہی نشیات پہنچتی ہیں ڈیب کے ذریعے چند علاقوں میں اور ساتھ ہی ساتھ آن لائن آپ ہماری نشیات سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں www.bradfordasianradio.co.uk کے ذریعے. اس کے علاوہ ہمارے اسمارٹ ایپ کے ذریعے آپ اپنے فون پر ہماری نشیات سن پاتے ہیں. اب وقت ہے سمینے کرام کس چیز کا,

0: परेशानी पे नहीं। जी समीन कराम, बात हो रही थी किस चीज़ का वक्त हुआ है। जी हाँ, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका बात की जाए और फिर वो हो जाती हैं। बहरहाल वक्त हुआ चाहता है इस वक्त जनाब अशफाक अहमद साहब के जाविये का, और उसका उनवान है ज़ात की तेल तब बदरी। तो ज़रा सुनिएगा और इस पर फिर गौर भी कीजिएगा, यकीनन आप भी इस बारे में फिर सोचेंगे और हो सकता है इस पर आप अमल भी करें और करना चाहिए भी। वो लिखते हैं, परसों मेरे साथ वही हुआ जो एक बरस और तीन माह पहले हुआ था। यानी मैं अपनी गाड़ी का फिलिंग स्टेशन पर तेल बदली करवाने गया तो वहां लड़कों ने चीख मार कर कहा कि सर आप वक्त पर तेल नहीं बदलवाते, गाड़ी तो इस तरह चलती रहती है लेकिन इसका नुकसान बहुत होता है और आप इसकी तरफ तवज्जो नहीं देते। उन्होंने कहा कि गाड़ी का सारा तेल इतना खराब हो चुका है कि इसे बाहर निकालना मुश्किल हो गया है। मैंने कहा यार चलती तो रहती है। उन्होंने कहा कि आप तो सर पढ़े लिखे आदमी हैं और गाड़ी का वक्त पर तेल बदलवाना बहुत जरूरी है। तो मैं सोचने लगा कि बाकी तो सारे काम मैं वक्त पर करता हूँ, बैंक बैलेंस चेक करता हूँ, यूटिलिटी बिल्स वक्त पर देता हूँ और ये सारी चीजें मेरी जिंदगी और वजूद के साथ लगी हैं, लेकिन मैंने कभी अपने अंदर का तेल बदली नहीं किया। मेरी रूह को भी इस बात की जरूरत है कि इसमें भी तब्दीली पैदा की जाए, लेकिन इस बाबत मैंने कभी नहीं सोचा। मैं ये बात सोचकर परेशान होता रहा कि मुझ पर ऐसा वक्त आ सकता है कि मैं दुनियादारी की और सारे काम करता हुआ खुश असलूबी से इनको निभाता हुआ अपनी रूह की तरफ भी मुतवज्जे होकर इसकी सफाई और पाकीजगी का बंदोबस्त करूं। मैंने इनके गुज़िश्ता सारे सालों का हिसाब लगाया लेकिन मैं ऐसा न कर सका। मेरी नीयत तो शायद नेक थी और मैं अच्छा आदमी भी था, लेकिन ये कोताही मेरी जिंदगी के साथ चलती आ रही थी और मेरा कोई बस नहीं चलता था। मेरे साथ ऐसी बेइख्तियारी वाबस्ता थी कि मैं इसको अपनी गिरफ्त में नहीं ला सकता था। मेरे ख्याल में अपने रूह के तेल को तब्दील करने की अपने बदन की सफाई से भी ज्यादा जरूरी है। जिसकी तरफ आदमी किसी वजह से तवज्जो नहीं दे सकता, वहां भी हमारा मिजाज अपनी गाड़ियों से सलूक की तरह से ही है। जैसा कि हम अपनी गाड़ियों में पेट्रोल डलवा लेते हैं, चलते रहते हैं, लेकिन पेट्रोल से मुफीद तर तेल बदली का काम हम नहीं करते ताकि गाड़ी का इंजन मजबूत रहे। हम ऐसा नहीं कर सकते। वहां सोचते सोचते और बैठे बैठे मुझे ख्याल आया कि कुछ लोग बड़े खुशनसीब होते हैं जिनकी तवज्जो अपनी तेल बदली की तरफ ज्यादा होती है और वो इंसानियत के गिरोह में ज्यादा खूबसूरत बनकर उभरते हैं और लोगों की मिजाज के लिए कुछ कहे बोले बगैर बहुत सारे काम कर देते हैं। अल्लाह ने पता नहीं उनको किस तरह से ऐसा मलका दिया होता है। बड़े सालों की बात है, 1952-53 में जब बहुत बड़ा फ्लड आया था तो उस वक्त अभी लाहौर को सैलाब से बचाने वाली फसील नहीं बनी थी जिसे आप बंद कहते हैं। उस वक्त लोग अपने घर बार छोड़कर ऐसी ऐसी जगहों पर जा बैठे थे जहां जिंदगी बसर करना बड़ा मुश्किल होता है। हम अपने तौर पर यह सोचकर वहां गए कि शायद हमारा वहां जाना मुफीद हो, या फिर तजस्सुस में बतौर सहाफी हम कुछ दोस्त वहां गए तो वहां एक बूढ़ी माई 2-3 टीन के डब्बे रखकर बैठी हुई थी। उसके पास एक देगची थी और यूं लगता था कि उसने कल शाम वहां चूल्हा भी जलाया है और उससे कुछ पकाया भी है। उसका कोई आगे पीछे नहीं था। वहां इन खेमों में लोग दूर दूर तक फैले हुए थे। हमारे साथ आए हुए मुमताज मुफ्ती ने उसे देखकर कहा कि यार इसकी हालत तो बहुत नागुफ्ता और खराब है। मैंने कहा कि जाहिर है और भी बहुत से लोग इसके साथ हैं, लेकिन इस खराब हालत में भी उसके चेहरे पर एक अजीब तरह का इत्मीनान और सुकून था। वो बड़ी तशफी के साथ बैठी हुई थी और उसके चेहरे पर कोई शिकायत नहीं थी। मुमताज मुफ्ती ने उससे कहा कि बीबी अगर तुमको 200 रुपए मिल जाएं तो फिर तुम उनका क्या करोगी। जाहिर है सामीने कराम 1952-53 की बात कर रहे हैं तो उस वक्त 200 रुपए बहुत बड़ी रकम थी। तो उस बुढ़िया ने क्या कहा, कहने लगी भाजी लोग बड़े गरीब ने, मैं उन्हें विच वंड देंगी। सुभान अल्लाह, अब इतने बरस के बाद मुझे उस माई का चेहरा भी याद आ गया और मैंने सोचा कि उसने अपनी रूह की तेल बदली बड़े वक्त पर कर ली थी। उसकी शख्सियत और फर्दियत और बर्तरी वहां गए हुए हम सारे दानिश्वरों, राइटरों और सहाफियों से ज्यादा और बड़े दर्जे पर थी। میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے سال اور اس سال کے درمیان مجھ میں ایک صلاحیت البتہ پیدا ہو گئی ہے, اور وہ بھی کچھ اچھی صلاحیت نہیں ہے, اس میں تھوڑی سی کمینگی کا عنصر شامل ہے. وہ صلاحیت یہ ہے کہ میں اپنے مد مقابل جب کسی نئے آدمی کو دیکھتا ہوں تو مجھے اتنا ضرور پتہ چل جاتا ہے کہ باوصف اس کے کہ یہ شخص بڑی مضبوطی اور تیز رفتاری کے ساتھ اپنی زندگی کا سفر طے کر رہا ہے, لیکن اس کا تیل اندر سے بہت گندا ہے. جب میں روم میں تھا تو وہاں کے ایک بڑے اخبار کے مالک, جس کے وہ مینیجنگ ایڈیٹر بھی تھے, انہوں نے اپنے جرنلسٹس کو دعوت دی. مجھے بھی مدعو کیا, گو میں کوئی بڑا کام کا رائٹر نہیں تھا. بہرحال وہ بڑی عظیم الشان دعوت تھی, بڑا پرتکلف اہتمام کیا گیا تھا. جب ہم کھانا وانا کھا چکے تو کچھ صحافیوں نے اس اخبار کے مالک سے فرمائش کی کہ آپ ہمیں اپنا گھر دکھائیں, کیونکہ ہم نے سنا ہے کہ آپ کا گھر بہت خوبصورت ہے, ہم اسے اندر سے دیکھنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ضرور دیکھیے, آئیے. ہم نے ٹکڑیوں کی شکل میں ان کے گھر کا اندر سے نظارہ کیا. بہت خوبصورت گھر تھا, بہت بڑا. اس گھر کے جو بڑے بڑے ڈیکوریشن والے اور مجسموں سے بھرے کمرے تھے, اور ان میں خوبصورت پینٹنگز بھی لگی ہوئی تھیں. ایک بڑے خوبصورت کمرے کے بارے ہم نے ان سے پوچھا کہ یہ کس کا کمرہ ہے. سمے نے کرام, اب یہاں یہ بات غور سے سننے والی ہے. ہم نے ان سے پوچھا کہ یہ کس کا کمرہ ہے اتنا خوبصورت اتنا بڑا, تو وہ کہنے لگے یہ میرے ڈرائیور کا کمرہ ہے. ہم بڑے حیران ہوئے. ہم نے دوسرے کمرے کے بارے پوچھا تو پہلے سے بھی جو اور اچھا تھا, تو انہوں نے جواب دیا یہ میرے باورچی کا کمرہ ہے. اس طرح ایک سے ایک اعلی اور بڑھ کر کمرے دیکھے جو سارے گھر کے ملازموں کے تھے. پھر ہم نے وہاں ایک چھوٹا سا کمرہ دیکھا جس میں ٹیلی فون, ایک میز تھا جو کوئی 5-8 فٹ کا ہوگا, اس میں ایک بیڈ لگا تھا جو فولڈ بھی ہو جاتا ہے. تو ہمارے پوچھنے پر انہوں نے بتایا یہ میرا کمرہ ہے. ہم بڑے حیران. ہم نے کہا سر آپ نے نوکروں کے لیے تو اعلیٰ درجے کے کمرے بنائے ہیں, اور اپنے لیے یہ کیا ماجرا ہے؟ وہ کہنے لگے کہ آپ کو شاید علم نہیں کہ میری ماں روم کے ایک بہت بڑے لارڈ کے گھر میں باورچن تھی, اور انہیں جو کمرہ ملا ہوا تھا وہ بڑا تنگ تھا. اس کمرے میں ہم اپنی ماں کے ساتھ 3 بہن بھائی بھی رہتے تھے. جب میں نے گھر بنایا تو میں نے کہا کہ ملازموں کے کمرے بڑے خوبصورت اور ویل ڈیکوریٹڈ ہونے چاہیے, اور میں تو ہوں ہی ایک بڑا آدمی, اس لیے مجھے کسی بڑے کمرے کی کیا ضرورت ہے. ہم اس کو دیکھ کر اور اس کی بات سن کر ششتر رہ گئے کہ دنیا میں ایسے بھی لوگ موجود ہوتے ہیں. اس کے ملازم بڑے نخریلے اور مزے کرنے والے تھے. میں اس اخبار کے مالک کی خوبی اب محسوس کرتا ہوں کہ اس نے بھی اپنی ساری زندگی, اپنی توجہ زندگی کو چلانے کے لیے اپنے پیٹرول پر نہیں دی تھی, بلکہ اس تیل پر دی تھی جو تبدیل کر کے انسان زندگی کو سہولت کے ساتھ آگے لے جاتا ہے. ہم سے یہ کوتاہی عموماً ہوتی رہتی ہے. ہم ابھی اپنی زندگیوں کو کم از کم ایک دفعہ تو اس انداز سے چلائیں جس طرح سے سائنس کہتی ہے, یا میکنیکل کو سمجھنے والے کہتے ہیں کہ آپ کے انجن اور مشین کو اتنے گھنٹوں یا دنوں کے بعد تیل بدلی کی ضرورت ہے, اور وہ پیٹرول سے بھی زیادہ اہم ہے. جیسا کہ گاڑی کے اندر فریش آئل نہ ڈالا جائے تو وہ گھٹن کے ساتھ چلتی ہے, اور ایک ماہر ڈرائیور بیٹھتے ہی بتا دیتا ہے کہ اس کے تیل کی بدلی نہیں ہوئی. حالانکہ وہ دوڑ ہی ہوتی ہے, لیکن جو ہی اس کے تیل کی بدلی ہوتی ہے تو وہی ماہر ڈرائیور کہتا ہے کہ سر اب یہ زیادہ رواں چل رہی ہے, لگتا ہے پرسوں ہی تیل تبدیل کیا ہے. زندگی کا معاملہ بھی بالکل اسی طرح سے ہے. میں اپنے بچوں اور پوتوں پر یہ توجہ دے رہا ہوں کہ میں ان کو ایم کام کروا دوں, یا فلاں ڈگری دلوا دوں, لائق بنا دوں, کہیں فٹ کرا دوں. یہ زندگی کی کامیابی نہیں ہے. زندگی میں کامیاب ہونے کا سارا تعلق ہم نے اکنامکس سے وابستہ کر لیا ہے. ہمارے ایک دوست ہیں, اچھے آدمی ہیں, لیکن طبیعت کے ذرا سخت ہیں, اور اب میں اس پروگرام کے بعد ڈائریکٹ انہیں کچھ کہنے کے یہی کہوں گا کہ جناب آپ اپنا تیل بدلی کرا لیں. اس پروگرام کے بعد کئی لوگ آپ سے ملیں گے, گو وہ اچھے ہوں گے. اگر آپ کسی سے تھوڑے بے تکلف ہوں گے تو اپنے کسی دوست سے یہ ضرور کہیں گے کہ یار تیل بدلی کروا لیں, یا تمہارا تیل بدلنے والا ہے. ایک پسماندہ سے گاؤں کے ایک اسکول میں کچی میں جب مجھے داخل کرایا گیا تو وہاں ایک بابا دال چپاتی ہوا کرتے تھے. ان کے پاس سرخ گاڑی تھی, لمبا سا چوگا پہن کے رکھتے تھے, اور یو پی کے کسی علاقے سے آئے تھے. जब भी हम बाहर गली में निकलते और उनकी रेंज में आते तो वो बाबा दाल चपाती आगे बढ़कर हमको पकड़ लेता। हम छोटे होते थे, डर से चीखे मारने लगते थे और रोते थे, लेकिन वो बाबा एक ही बात कहते थे कि जा तू आगे और देख तमाशा, अभी अल्लाह का फजल तुझे पकड़ लेगा और दाल चपाती तेरे पेट में है। हमें लगता था कि अल्लाह का फजल बड़ा खौफनाक होता है, लेकिन वो हमें हमेशा यही कहते। जब मेरी माँ मुझे कायदा देकर स्कूल भेजती तो मैं कहता कि वहां बाहर बाबा दाल चपाती होगा और वो मुझे पकड़कर अल्लाह के फजल के हवाले कर देगा। जब मैं बड़ा हुआ तो ईद का एक दिन था, जब हम नमाज पढ़ के मस्जिद से बाहर निकल रहे थे तो मेरे वालिद साहब जो कि कस्बे में बड़े मुअज्जिज़ थे, उन्होंने बाबा दाल चपाती की जूतियां उठाकर पहनने के लिए सीधी की तो वो कहने लगे कि डॉक्टर साहब ये आप क्या कर रहे हैं, रहने दे मैं ऐसे ही पहन लूंगा। मेरे अब्बा जी कहने लगे कि मुझे ये सआदत हासिल करने दे कि मैं आपकी जूतियां सीधी करूं। वो बाबा कहने लगे कि डॉक्टर साहब आप मुझे शर्मिंदा करते हैं। मैं बड़ा हैरान हुआ कि अब्बा जी एक मामूली से आदमी को इतना बड़ा मान सम्मान दे रहे हैं, आखिर क्यों? मेरे अब्बा जी कहने लगे कि आप हम सब मुसलमानों के लिए फख्र का बाइस हैं। तो वो बाबा दाल चपाती कहने लगे कि मैं एक अच्छा इंसान तो जरूर हो सकता हूं, लेकिन अच्छा मुसलमान होने का फासला अभी बहुत तवील है, अच्छा इंसान होना बहुत मुश्किल है। खवातीनों हजरात, आपको कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे जो इतने ज्यादा सख्त तबीयत के तो नहीं होंगे, लेकिन में कुछ अजीब सा बैलेंस होगा। हमें अपने दिल के अंदर कोई खबासत या गलाजत नहीं पालनी चाहिए। गुज़िश्ता साल बड़ी बारिशें हुईं, शदीद बारिश में हम जुमा पढ़ने गए तो नौजवान से एक मौलवी साहब खुतबा दे रहे थे। खुतबा देते हुए उन्होंने कहा, देखिए अल्लाह क्या अल्लाह की रहमत है और क्या इसकी मेहरबानी है और कैसी खूबसूरत और दिल फरेब मूसलाधार बारिश हो रही है और हम अंदर बैठे हुए अल्लाह के लुत्फ करम से फैज उठा रहे हैं और जो लोग गाड़ियों पर जुमा पढ़ने आए हैं उनकी गाड़ियां मुफ्त में धुल रही हैं। ये बड़ी बारीक सी बात थी और इससे ये अंदाजा बखूबी लगाया जा सकता है कि अभी एक माह के अंदर अंदर मौलवी साहब को अपने तेल बदली की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। हम इनको अभी पूरी की पूरी दाद नहीं दे सकते। मैं आपसे जाते जाते ये दरख्वास्त जरूर करूंगा कि आप अपनी मोटर की तेल बदली भी वक्त पर करवाएं और अपनी रूह और जात की तेल बदली भी वक्त पर करें, वरना वक्त बहुत कम रह जाएगा। अल्लाह आपको आसानियां अता फरमाए और आसानियां तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मौजूद आमीन कराम, ये अशफाक अहमद साहब का जाविया नजर था अंदर की तेल बदली के हवाले से। यकीनन आपने सुना होगा, समझ में भी आ गया होगा, कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है और हकीकत है ये, हर इंसान को अपना अंदर तब्दील करने की जरूरत है। हर शख्स को, हम हैं, आप हैं, कोई भी है। बच्चे तो जाहिर है अभी जरा ना समझ होते हैं, उन्हें इन बातों की, इनका शऊर नहीं होता, इनका इदराक नहीं होता, लेकिन जब आप एक बार शऊर इंसान बन जाते हैं जिसे एडल्ट कहते हैं, तो उस वक्त से। और ये तेल बदली कैसे हो सकती है, क्या समझते हैं आप, इसका क्या तरीका होगा या किस तरह से इसको कर सकते हैं? जो हमारी समझ में बात आती है, जो हमें महसूस होता है, वो ये है कि इंसान जब रोजाना रात को अपने बिस्तर पे जाता है, और पहले भी हम अमूमन ये बात कहते रहते हैं, तो सोने से कोई 5-10 मिनट पहले इंसान को सोचना चाहिए कि उसका आज का दिन कैसा गुजरा, आज कौन से कुछ अच्छे काम उससे हो गए और कहाँ कहाँ पे उससे गलतियां हुई, किसी की हक तलफी हो गई, कुछ और गलत कर दिया। हो जाती है, इंसान खाता का पुतला है, गलतियां जाने अनजाने में भी हो जाती हैं, इंसान जितनी भी कोशिश करे। लेकिन फिर ये सोचिए, यानी कि अपना कैथारसिस कीजिए, अपना तजिया कीजिए, अपने आप को अपने बारे में सोचिए, अपने दिन के बारे में सोचिए और फिर एंड पे आखिर में उसका नतीजा निकालिए, कितने प्लस पॉइंट्स मिलते हैं आपको, कितने आपके पास नेगेटिव पॉइंट्स आते हैं। जो प्लस है उनको मजीद मल्टीप्लाई करने की कोशिश कीजिए, जो नेगेटिव आ गए, जो मनफी में है, उनको आप मस्बत बनाने की कोशिश कीजिए, यानी कि वो जो गलती आपसे आज हुई हमसे, वो उसे हम कल को ना दोहराएं। कोशिश कम से कम जरूर करें, तहिया अपने अंदर जरूर करें और ये सोचें कि आया आज कुछ एक आध ऐसा काम, ऐसी बात, ऐसा कुछ हमने किया जो खालिस्तन हमारे अल्लाह के लिए था, हमारे लिए नहीं था, हमारी अपनी जात के लिए नहीं था। ये जो अभी प्रोग्राम के पहले हिस्से में बात हुई ना फना की और बका की, तो बका ऐसे ही हासिल होती है सामीन कराम। फना इसी का नाम है, अल्लाह के लिए फना हो जाना कि आप अपना एहतसाब खुद कीजिए, अपने बारे में खुद सोचिए कि आप कितने पानी में खड़े हैं। वो कहते हैं ना अपने गिरेबान में हम झांके कि हम कितनी नेकियां कितनी अच्छाइयां रोज की बुनियाद पर करते हैं और कितने हमसे गुनाह सरजद होते हैं, कितनी हमसे गलतियां हो जाती हैं। अब वो और अलहदा बहस है, अलहदा बात है, गुनाह सगीरा गुनाह कबीरा या लग्जिश हो जाती है या खता हो जाती है, कुछ भी कह लीजिए उसको। तो पहली बात तो ये कि इंसान को बड़े बड़े गुनाहों से तो हमेशा बचते रहना चाहिए, बच के बल्कि रहना चाहिए कॉन्शियसली शौरी तौर पर। हाँ, ये जो छोटे मोटे गुनाह हो जाते हैं, गलतियां हो जाती हैं, इनका भी एहतसाब करते रहना चाहिए, जिसे खुद खुद एहतसाब ही कहते हैं, कैथोर्सिस अपना भी करते रहना। इससे आपका कैथोर्सिस होता है, इससे आपकी तेल बदली होगी। आप जब खुद अपने ऊपर एक हदूदों का यूद को कायम करेंगे ना कि ये काम करने वाला है और ये नहीं, ये अल्लाह को पसंद है, ये अल्लाह को नापसंद है, तो आपके फिर मोहब्बत खुद ब खुद अल्लाह के दिल में पैदा हो जाती है। इंसान की अना, इंसान की मैं खुद ब खुद मिटना शुरू हो जाती है, उसका तकब्बुर उसके ऊपर हावी नहीं होता हो पाता। वो हर चीज को अल्लाह का फजल समझता है, अल्लाह का करम समझता है, और फिर अल्लाह का भी शुक्र गुजार बंदा बन के रहता है, और साथ ही साथ जो बंदे होते हैं उससे जुड़े हुए जो भी आस पास के लोग हैं, शौहर है, बच्चे हैं, सास ससुर हैं, वालिदैन हैं, बहन भाई हैं, दोस्त अहबाब हैं, पड़ोसी हैं, अजीज व अकारिब हैं। ये जो हम हमेशा ये कहते हैं सामईन कराम, हम इबादात पे बड़ा जोर देते हैं, हमने दीन का एक हिस्सा पकड़ लिया कि जी आपने नमाज कजा नहीं करनी, आपने रोजा नहीं छोड़ना, आपने जक़ात मुकम्मल अदा करनी है, बेशक करनी है, तौफीक हो तो आपने हज भी अदा करना है, लाजिमन सेहत है, बाशऊर है, अल्लाह ने तौफीक दी है तो जरूर कीजिए। लेकिन ये जो मामलात जिंदगी है ना, इनसे हम सरफे नजर कर जाते हैं। वो एक तहरीर हम पढ़ रहे थे कि जी फलां से मिलते हैं तो जी क्या नाम है आपका, हाजी फलां फलां फलां। भैया हाजी की फलां फलां क्या हुआ, इस तरह तो फिर नमाजी फलां फलां भी होना चाहिए, नमाजी उज़्मा अशफाक, हाजी फलां फलां, ये अच्छी चीजें नहीं है। जब आप अल्लाह के लिए ये काम करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, वो फर्ज है, आप कोई एहसान नहीं कर रहे किसी पे, आप हज करके आते हैं, अल्लाह के हुक्म को की तामील करते हैं, तो हाजी साहब साथ लिखना लकब अलकाब ये नुमाइश बन जाती है, हकीकतन ये नुमाइश बन जाती है। और हमारा मिजाज माशरे में लोगों का ऐसा हो गया कि वो इन चीजों पे ज्यादा जोर देते हैं, इन चीजों पे माशाल्लाह जी फलां तो साहब हाजी हैं, फलां साहिबा हाजन हैं, वो हाजन बीबी हैं, तो फिर नमाजी और नमाजन भी बना दीजिए, जकात देने वाला जकात देने वाली भी बना दीजिए, इससे क्या होगा, अल्लाह को तो कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, आप बंदों के लिए अपना आप दिखा रहे हैं। जब अल्लाह के लिए काम किया तो फिर इसको छोड़ दीजिए, ये फलां फलां फलां ये चीजें अच्छी नहीं है, ये जात में तकब्बुर पैदा करती हैं, फलां मौलाना साहब, फलां मौलवी साहब, फलां आलिम दीन, फलां शेखुल फलां शेखुल इस्लाम, और ये वो ये सब अलकाबात, ये सब चीजें ये दुनियादारी के लिए होते हैं। अल्लाह ताला को देखिए, सबसे बड़ी आप अगर जात बाबरकत जो हस्ती है इंसानों में, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते मुबारका, आप उनकी सीरत तैयबा को मुताला कीजिए। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन सा लकब इख्तियार किया, कौन से अलकाबात अपने इस नाम के साथ लगाए, सहाबा कराम हैं, कब हम कहते हैं कि जी फलां मौलाना और फलां शेखुल इस्लाम और फलां कुतुब साहब और फलां ये फलां वो, नहीं, महज उनके जो अपने ज़ाती नाम थे सिर्फ वो। हाँ, कुनियत से किसी को पुकारना वो अलहदा बात होती है, अबू तुराब जैसे और जिस तरह से वो चीजें और चीज है, लेकिन ये जो अलकाबात और ये जो ओहदे खुद को दे लेना और खुद को मकाम मर्तबा दे लेना, ये कोई अच्छी बात नहीं है, इससे इज्तनाब करना चाहिए। इन नफ्स को अपने मजबूत बनाती है, ये आपके नफ्स को तकब्बुर और बड़ाई और जोम में मुबतला करती है। यकीन कीजिए सामीन, मसला यह है कि इंसान को जब तक ठोकर ना लगे, इंसान को जब तक एहसास ना दिलाया जाए कि ये इतनी बड़ी नेमत अल्लाह ताला ने खुद ब खुद वैसे ही मुफ्त में आपको दे दी है, इंसान नहीं समझता। ये जो बोलने की ताकत है, अगर اللہ نہ کرے خدا نہ کرے اللہ تعالیٰ کسی سے قوت گویائی چھین لے تو کہاں کا بولنا اور کہاں کی خوبصورتی آواز کی اور کیا سب کچھ، سب اس کا دیا ہوا ہے، سب اس کی طرف سے آتا ہے۔ شکر کرنا چاہیے، دوسروں سے اپنے آپ کو بہتر نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ یہی سوچنا چاہیے کہ پتہ نہیں اللہ کے ہاں دوسرا شخص ہم سے کتنا اوپر ہو، وہ تو اللہ ہی جانتا ہے نا، انسان کو بھی پتہ نہیں ہوتا۔ تو پھر ہم کن چیزوں میں مبتلا ہیں؟ اپنے ذات کی تیل بدلی۔ سامعین کرام، مختصراً بات یہ کہ لازمن کرتے رہنا چاہیے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ روز کی بنیاد پہ کرنا چاہیے، روز کی بنیاد پہ کیجیے۔ چلیے آپ کو روز وقت نہیں ملا، آپ ہفتے میں ایک دن جس دن چھٹی کا دن ہوتا ہے اس دن سوچئے کہ اپنے آپ کو، خود اپنی ذات کو آپ نے 5-10 منٹ دینے ہیں۔ پورے ہفتے کی جو آپ کی کارکردگی تھی، روپے پیسے کے حساب سے نہیں، کام کاج کے حوالے سے نہیں، جو آپ نے خالصتاً کام اللہ کی رضا کی خاطر اس کے کہے ہوئے طریقے پر چلتے ہوئے کیے، ان کا احتساب کیجئے، ان کے بارے میں سوچئے، اور جو غلطیاں ہو گئیں ان کو دہرانے کا عہد نہ کرتے ہوئے آپ اپنے ذات کو تبدیل کرنے کی کوشش کیجئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے، ہم سب اپنی تیل بدلی کی طرف توجہ دیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم دوسروں کی طرف تو بہت متوجہ رہتے ہیں، اپنی ذات کی طرف کم ہی توجہ دیتے ہیں۔ بہرحال وقت ہے کمرشل بریک کا، سنتے رہیے آپ بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کی نشریات عثمہ اشفاق کے ہمراہ۔
1: نمبر 1 ایشین کمیونٹی ریڈیو، بریڈفورڈ ایشین ریڈیو، آن 14:13 AM، DAB+، موبائل ایپ، and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
2: And the winner is...
3: And the winner is...
4: And the winner is...
2: Your business being heard on the radio.
5: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
6: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorized by the UK Financial Conduct Authority.
7: लीज रोड फेस्टिवल 2026 मेला 15 एंड 16 अगस्त को
8: एक बार फिर मोर पार्क किलिंग हार्ट रोड ब्रेडफोर्ड में,
7: जहां पहली बार किंग ऑफ भंगड़ा इब्रार उल हक अपने गानों से आपके दिलों को धड़काएंगे।
8: फैशन, फूड स्टॉल्स, किड्स एंटरटेनमेंट और बहुत कुछ।
7: एक खूबसूरत लीज रोड फेस्टिवल 2026 मेला 15 एंड 16 अगस्त को
8: एक बार फिर मोर पार्क किलिंग हार्ट रोड ब्रेडफोर्ड में,
7: जहां पहली बार किंग ऑफ भंगड़ा इब्रार उल हक अपने गानों से आपके दिलों को धड़काएंगे।
8: फैशन, फूड स्टॉल्स, किड्स

0: लगाते हैं
1: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं.
0: फर्स्ट चॉइस
1: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL.
0: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए. आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
1: 01274317644.
2: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस, विंडोज यॉर्कशायर.
1: दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
3: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
1: नित नए डिजाइन के साथ चूड़ियां, कंगन, कांटे,
3: बालियां, अंगूठियां और हार,
1: जो दुल्हन करे सिंगार,
3: आज ही मामू काके की दुकान,
1: खालिस सोने की पहचान,
3: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
1: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए.
3: आपकी शान
1: हमारी आन,
3: क्वालिटी की पहचान.
1: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Dufferin Lane, ब्रेडफोर्ड, BD95ER, 01274491442.
3: पाकिस्तान ज्वेलर्स.
4: To become a radio presenter, please call the studio 01274 306677. Bradford Asian Radio.
5: Looking to start driving or building a strong career with Safeway Rider? You can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
6: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे.
1: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली £299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली £99.
6: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ. बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN. बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए. नंबर मिलाइए 07414260078.

0: पवन करे शोर,
1: पवन करे शोर।
0: अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर।
1: पवन करे शोर।
0: हाँ।

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: Lees Road Festival 2026 Mela 15 and 16 August को
7: एक बार फिर More Park Killing Hard Road Bradford में
6: जहां पहली बार King of Bhangra Ibra Arul Hug अपने गानों से आपके दिलों को धड़काएंगे
7: Fashion, Food Stalls, Kids Entertainment और बहुत कुछ
6: एक खूबसूरत डे आउट आप सबके लिए Saturday and Sunday 15 and 16 August 2026
7: Lees Road Festival
6: Bradford Region Radio The Official Media Partner
7: आप भी
6: जरूर आइएगा उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे क्या ही चॉइस है आपका
7: ये चॉइस हमारा नहीं ये तो कमाल है फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का
6: जो कि पायदार मजबूत खूबसूरत डबल एंट्रेपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644
8: क्वालिटी वैल्यू स्टाइल एंड सिक्योरिटी

0: हमारी आन
1: क्वालिटी की पहचान
0: पाकिस्तान ज्वेलर्स 1 डुकवत लेन ब्रेडफोर्ड PD95ER01274491442
1: पाकिस्तान ज्वेलर्स
2: To become a radio presenter, please call the studio 01274306677 Bradford Asian Radio
1: ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल ना हमारा कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा
0: अरे सेफ राइडर जाएंगे ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे
1: बस ट्रक फोकली टैक्सी लाइसेंस हम है आपको सब कुछ सिखाने को तैयार
0: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ राइडर
1: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत आज ही विजिट कीजिए
0: 33 वेटले लेन ब्रेडफोर्ड
1: 01274201679 UK. सुनिए जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे
0: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स
1: खूबसूरत कारपेट्स लैमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ बॉबीज कारपेट्स लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स BD3ADN बॉबी आइए भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए नंबर मिलाइए 07414260078

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grant Road, Bradford 7, 414-760.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी जा रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
3: ब्रेडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर।
4: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं, मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर, जहाँ पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 pounds से, जर्मन वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कॉफी टेबल, रग्स, कारपेट, मैट्रेसेस की वसी वैरायटी।
5: ओपन 7 डेज, 10 to 6, फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर। लव फर्नीचर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, अपोजिट बार्कलेज बैंक, फोन ब्रेडफोर्ड 9627229627222।
4: लव फर्नीचर, फर्नीचर यू लव।
6: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.

जी हाँ सामीन कराम, एक और बहुत ही खूबसूरत सा सुरीला मीठा सा गीत आपने सुना और उम्मीद करते हैं कि इस गीत को आपने पसंद किया होगा। लीजिए अब एक और बहुत ही खूबसूरत सा गीत आप तमाम सुनने वालों के नाम करते हैं और बल्कि इस गीत को हम नाम करते हैं जरा देर से, क्योंकि वक्त की जानिब देखा तो बस एक ही गीत की इजाजत वक्त दे रहा है कि आपके लिए पेश किया जाए। उम्मीद तो यही है कि आज का जो इंतखाब था वो गीतों की शक्ल में था, शायरी की शक्ल में। हमने आपको आज का को जो तारीखी वाकया एक सुनाया माँ के हवाले से और बेटे की मोहब्बत के हवाले से, और जो बातें भी आपसे आज हुई फना बका के हवाले से यकीनन आपने पसंद की होंगी, आपको अच्छा लगा होगा। और सबसे बड़ी बात, हम तहे दिल से आपके मशकूर ममनून हैं कि जो हमारे कॉलर्स हजरात जितने हमारे सामईन थे जो प्रोग्राम में आज शामिल हुए, प्रोग्राम की जीनत बने, उन्होंने प्रोग्राम को मजीद चार चांद लगा दिए, अपनी शिरकत के साथ खूबसूरत बनाया इसको। तो बहुत बहुत हम उनके तहे दिल से मशकूर ममनून हैं। इसी तरह से आप ब्रेडफोर्ड एशियन के साथ रहिए और इसी तरह से आप खूबसूरत खूबसूरत गीत भी सुनते रहिए, बातें भी छोटी मोटी साथ साथ चलती रहती हैं। जब्बार वासिफ की खूबसूरत सी आपको हम गजल सुनाते हैं, वो लिखते हैं, यही नहीं कि फकत बालों पर नहीं रहते, यही नहीं कि फकत बालों पर नहीं रहते, अब उड़ने वाले परिंदों के सर नहीं रहते, जिनकी सिसकियां फुटपाथ पर हैं बिखरी हुई, ये कौन लोग हैं, क्यों अपने घर नहीं रहते, हमारे दोस्त फरामोश कर चुके हैं हमें, हम अपने शहर में रहते हैं पर नहीं रहते, बताया रोते हुए दर ने मेरी दस्तक को, बताया रोते हुए दर ने मेरी दस्तक को कि इस मकान के मकीन अब इधर नहीं रहते, मुसाफिरत में हुई रात जब तो हम पे खुला कि अब चराग सरे रह गुजर नहीं रहते, जो आज खुद को समझते हैं रौनक हस्ती, समय गुजरता है और बेशतर नहीं रहते, कोई नकाब नहीं और कोई हिजाब नहीं, तुम्हारे शहर में क्या बदनजर नहीं रहते, वो देख गौर से आंखें मलंग बाबा की, जो इनमें झांक लें वो बेखबर नहीं रहते, ये जंगलों के मुहाफिज भी हैं लकड़ हारे, जहां ये रहते हैं उस जा शजर नहीं रहते, रहे न बज़्म जहां में शकेब और सरवत, तो क्या बुरा था कि हम भी अगर नहीं रहते। जी सामीन कराम, इसके साथ ही हम आपसे आज इजाजत चाहेंगे, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी कल यानी कि ट्यूसडे को बरोज मंगल, तब तक के लिए हमारा और आपका अल्लाह हामी व नासिर, अल्लाह हाफिज़।

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: फेस्टिवल 2026 मेला 15 एंड 16 अगस्त को
6: एक बार फिर मोर पार्क किलिंग हार्ट रोड ब्रेडफोर्ड में
5: जहां पहली बार माया नाज लोक फनकार नईम हजारवी अपने फन का मुजाहिरा करेंगे
6: फैशन फूड स्टॉल्स किड्स एंटरटेनमेंट और बहुत कुछ
5: एक खूबसूरत डे आउट आप सबके लिए सैटरडे एंड संडे 15 एंड 16 अगस्त 2026
6: लीड्स रोड फेस्टिवल
5: ब्रेडफोर्ड एजेंट रेडियो द ऑफिशियल मीडिया पार्टनर
6: आप भी
5: जरूर आइएगा उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे क्या ही चॉइस है आपका
6: ये चॉइस हमारा नहीं ये तो कमाल है फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का
5: जो कि पायदार मजबूत खूबसूरत डबल एंटरप्रेस ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
6: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं
5: फर्स्ट चॉइस
6: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL
5: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
6: 01274317644
7: फॉर क्वालिटी वैल्यू स्टाइल एंड सिक्योरिटी योर नंबर वन चॉइस फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर
6: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले
8: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं
6: अरे पगली अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई जी हाँ दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है
8: जी मिल करते कांटे बालियां कंगन गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार
6: टॉप क्वालिटी बेहतरीन सर्विस ओपन 7 डेज
8: 30 वेटली हिल ब्रेडफोर्ड BD8 8NG फोन 01274477257
6: दुबई ज्वेलर्स व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेश खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक आटा चावल दालें मसाला जात रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट हलाल गोश्त और चूजे फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले बचिए इधर उधर की ख्वारी से शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD8 8JL बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी
9: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है
8: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा मिलान की शेरवानी शलवार कमीज वेस्ट कोट प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे
6: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रेडफोर्ड BD8 8DR टेलीफोन 07885428349 अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड्स रोड ब्रेडफोर्ड
8: सुनिए जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे
6: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स
8: खूबसूरत कारपेट्स लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ बॉबीज कारपेट्स लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स BD3 ADN बॉबी आइए भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए नंबर मिलाइए 07414260078
10: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
6: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है
10: जी हाँ बेल्स जहाँ फिश एंड चिप्स बर्गर्स फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स
6: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए आज ही तशरीफ लाइए ओपन 7 डेज बेल्स सी रूम 46 रूली एवेन्यू ब्रेडफोर्ड BD6 1DA फोन 01274306567 बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन
11: Sheffield Mela CIC presents DesiFest Sheffield Mela 2026. Join us at Firth Park, Sheffield on Sunday, 2nd of August from 12 to 8 p.m. A family fun day for the whole family with funfair, food stalls and Mela shopping. Featuring live performances from Lamba Hussainpuri, H. Dami, Ramit Sandhu, Summer Blake and much, much more. Sunday, 2nd of August at Firth Park, Sheffield. We'll see you there.
3: حساب عمر کا اتنا سا گوشوارہ ہے تمہیں نکال کے دیکھا تو سب خسارہ ہے میں محمود رضوی اکاؤنٹنٹ جی ہاں چھوٹے سے چھوٹے ٹیکسی اکاؤنٹ سے لے کر بڑی سے بڑی کمپنی کے اکاؤنٹس بنوانے کے لیے قابل اعتماد نام محمود رضوی اکاؤنٹنٹ آڈیٹ اینڈ اکاؤنٹنسی ٹیکسیشن وی اے ٹی بک کیپنگ پے رول فنڈریزنگ کمپنی فارمیشن مارگیجز اکاؤنٹس کے کسی بھی مسئلے کے لیے نہ ہو پریشان کیونکہ آپ کی مشکل کریں گے آسان محمود رضوی چارٹرڈ سرٹیفائڈ اکاؤنٹنٹ محمود رضوی گریٹ ہاٹن روڈ آن بریڈفورڈ 424453 محمود رضوی
0: Bradford Asian Radio. Call the studio now 01274 306 77. To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306 77 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.

तुम्हारा नाम मेरी धड़कनों में शामिल है, तुम्हारा नाम मेरी सांसों में बसा है, तुम्हारा नाम मेरे तन बदन में जिंदगी बन के रहता है। सुन सको तो सुनो कि इन फिजाओं के होंठों पर भी तुम्हारा ही नाम है। आ सको तो आ जाओ कि मेरे साथ ये फिजाएं भी सदियों से तुम्हारे इंतजार में हैं।

0: अजान का वक्त हुआ चाहता है इस अजान के लिए हमें तावन हासिल है कूपर हॉल सोलिसिटर्स लिस्टर हिल्स साइंस पार्क कैंपस रोड ब्रेडफोर्ड BD71HR
1: अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती नमाज पढ़ गए दुनिया में करबला वाले सामीन ब्रेडफोर्ड और इसके मुजाफात में अजान का वक्त हुआ चाहता है।

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: लीज रोड फेस्टिवल 2026 मेला 15 एंड 16 अगस्त को
7: एक बार फिर मोर पार्क किलिंगहार्ट रोड ब्रेडफोर्ड में
6: जहां पहली बार किंग ऑफ भंगड़ा इब्रार उल हक अपने गानों से आपके दिलों को धड़काएंगे
7: फैशन फूड स्टॉल्स किड्स एंटरटेनमेंट और बहुत कुछ
6: एक खूबसूरत डे आउट आप सबके लिए सैटरडे एंड संडे 15 एंड 16 अगस्त 2026
7: लीज रोड फेस्टिवल
6: ब्रेडफोर्ड रीजन रेडियो द ऑफिशियल मीडिया पार्टनर
7: आप भी
6: जरूर आइएगा उफ, कितनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे क्या ही चॉइस है आपका
7: ये चॉइस हमारा नहीं ये तो कमाल है फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का
6: जो कि पायदार मजबूत खूबसूरत डबल एंटीपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644
8: फॉर क्वालिटी वैल्यू स्टाइल एंड सिक्योरिटी योर नंबर वन चॉइस फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर
7: दुल्हन वो जो पिया मन भाए
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए
7: नित नए डिजाइन के साथ चूड़ियां कंगन कांटे
9: बालियां अंगूठियां और हार
7: जो दुल्हन करे सिंगार
9: आज ही मामू काके की दुकान
7: खालिस सोने की पहचान
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स तशरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए
9: आपकी शान
7: हमारी आन
9: क्वालिटी की पहचान
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स 1 डुफर्ट लेन ब्रेडफोर्ड BD95ER 01274491442
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स
0: टू बिकम अ रेडियो प्रेजेंटर Please call the studio 0127
9: Chan
7: Hamari Aan
9: Quality ki pehchan
7: Pakistan Jewelers 1 Dufat Lane Bradford BD95ER 01274 491 442
9: Pakistan Jewelers

0: Our audit approved trainers will get your truck, bus, or forklift license and grow your future. Safely Rider. Call today at 01274 201 679 or visit safelyrider.co.uk. Safely Rider, helping you secure your future.
1: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
2: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स,
1: खूबसूरत कारपेट्स, लैमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।

0: Master Jewelers, 93 Horton Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274-306-567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
3: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306 77.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: फेस्टिवल 2026 मेला 15 एंड 16 अगस्त को
6: एक बार फिर मोर पार्क किलिंग हार्ट रोड ब्रेडफोर्ड में
5: जहां पहली बार माया नाज लोक फनकार नईम हजारवी अपने फन का मुजाहिरा करेंगे
6: फैशन फूड स्टॉल्स किड्स एंटरटेनमेंट और बहुत कुछ
5: एक खूबसूरत डे आउट आप सबके लिए सैटरडे एंड संडे 15 एंड 16 अगस्त 2026
6: लीड्स रोड फेस्टिवल
5: बेफोर्ड एजेंट रेडियो द ऑफिशियल मीडिया पार्टनर
6: आप भी
5: जरूर आइएगा उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे क्या ही चॉइस है आपका
6: ये चॉइस हमारा नहीं ये तो कमाल है फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का
5: जो कि पायदार मजबूत खूबसूरत डबल एंट्री ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
6: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं
5: फर्स्ट चॉइस
6: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL
5: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
6: 01274317644
7: क्वालिटी वैल्यू स्टाइल एंड सिक्योरिटी योर नंबर वन चॉइस फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर
6: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले
8: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं
6: अरे पगली अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई जी हाँ दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है
8: झिलमिल करते कांटे बालियां कंगन गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार
6: टॉप क्वालिटी बेहतरीन सर्विस ओपन 7 डेज
8: 30 वेटली हिल ब्रैडफोर्ड BD8 8NG फोन 01274477257 दुबई ज्वेलर्स
6: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक आटा चावल दालें मसाला जात रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट हलाल गोश्त और चूजे फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले बचिए इधर उधर की ख्वारी से शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD8 8JL बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी
9: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है
8: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा मिलान की शेरवानी शलवार कमीज वेस्ट कोट प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे
6: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रेडफोर्ड BD8 8DR टेलीफोन 07885428349 अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड्स रोड ब्रेडफोर्ड
8: सुनिए जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे
6: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स
8: खूबसूरत कारपेट्स लैमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ बॉबीज कारपेट्स लिस्टेड एट ट्रैफिक लाइट्स ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग BD3 ADN बॉबी आइए भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए नंबर मिलाइए 07414260078
10: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
6: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है
10: जी हाँ पल्स जहाँ फिश एंड चिप्स बर्गर्स फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स
6: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए आज ही तशरीफ लाइए ओपन 7 डेज पल्स सी रूम 46 रूली एवेन्यू ब्रेडफोर्ड BD6 1DA फोन 01274306567 बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन
0: Sheffield Mela CIC presents DeciFest Sheffield Mela 2026. Join us at Firth Park, Sheffield on Sunday, 2nd of August from 12 to 8 p.m. A family fun day for the whole family with fun fair, food stalls and Mela shopping. Featuring live performances from Lamba Hussainpuri, H. Dami, Ramit Sandhu, Summer Blake and much, much more. Sunday, 2nd of August at Firth Park, Sheffield. We'll see you there.
3: क्या आपकी आवाज खूबसूरत है? क्या आपने बोलने की जरूरत है? अगर ऐसी ही सूरत है तो ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो को आपकी जरूरत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए और अपनी आवाज सुनने वालों के दिलों तक पहुंचाइए और खुद को रेडियो स्टार बनाइए। याद रखिए, अगर आपको बड़ी बड़ी छोड़ने की आदत है तो ये आपके कल के बड़ा ब्रॉडकास्टर बनने की जमानत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए। Bradford Asian Radio.
11: Call the studio now. 01274 306677. To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.
12: Oh, yeah, yeah.

ब्रेकफोर्ड एशियन रेडियो की आवाज है 1413 मीडियम वेव पर। यॉर्कशायर की ससीन वादी में दुनिया के चार कोनों में इस वक्त इसे सुना जा रहा है ऑनलाइन www.bedfordasianradio.co.uk पर। इसके अलावा हमारे वो अहबाब जिनका फेसबुक अकाउंट है, मेरा पेज है RJ रिफत अब्बास, इस पे तशरीफ लाइए, एक मरतबा लाइक कर लें और फिर आप हमारी लाइव नशियात में शामिल हो पाएंगे। साथ ही साथ हमारे वो अहबाब जो हमें आयरलैंड, स्कॉटलैंड या इंग्लैंड के किसी भी शहर में सुन रहे हैं और हमारी आज की इस महफिल गजल उसने छेड़ी की इज्जत और तौकीर बढ़ाना चाहें, हम उन्हें दिल की तमाम तर गहराइयों से खुश आमदीद कहेंगे। हमारे स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 01274 30 66 77।

रही हमारे अहवाल की बात, अल्लाह का जितना शुक्र अदा किया जाए वो कम है। रही मौसम के अहवाल की बात, मौसम शदीद गर्म है, यहाँ बरतानिया के कुछ इलाकों में अम्बर वार्निंग है, टेम्परेचर 34 सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यॉर्कशायर में मजमूई तौर पर मौसम खुश्क रहने का अंदिया दिया गया है। साथ ही साथ टेम्परेचर इस वक्त 22 सेंटीग्रेड है। हमारा जो स्टूडियो है तप रहा है, लेकिन हमने तमाम वो बंदोबस्त कर दिए हैं जिससे इसमें आसानी हो जाएगी प्रोग्राम करने में। दरवाजे खिड़कियां खुल गई हैं, पंखा लग चुका है फुल स्पीड से, तो इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। महकमा मौसमियात का कहना यह है कि टेम्परेचर 26-27 सेंटीग्रेड, आदत है मुझे कहने की, सेल्सियस आजकल लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, 27 सेल्सियस तक जाने का इम्कान है। और कहते हैं कि अहम मुमकिन है कि हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हो जाए, हिट एंड रन यहाँ एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, कुछ इलाकों में होगी और कुछ इलाके साफ बच जाएंगे। अब देखिए हम कौन से इलाकों में शामिल हैं, आप सुनाइए आपके यहाँ मौसम कैसा है, आपके दिलों का मौसम कैसा है। जैसा कि आप जानते हैं मेरी आमद के साथ ही मेरे मेहमानों की आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है, कुछ नाम मैं नोट कर चुका हूँ और कुछ जो अभी तशरीफ लाए हैं पेज पर उन्हें शामिल करूँगा, और फिर हज़्ब रिवायत एक हसीन गीत के तोहफे के बाद, जिसे हम अपने तमाम बुजुर्गों, बहनों, भाइयों, बेटों, बेटियों, बच्चों और तमाम नादीदा लिसनर्स, सोते मुजाहिदों और उन आने वाले मेहमानों को नाम किया करते हैं कि जिनकी आमद हमारे प्रोग्राम को चार चांद लगाती है और इसकी इज्जत और तौकीर में इजाफा करती है। तो आइए आगाज करते हैं आज के इस रोशन दिन का। अभी तक तो धूप वॉल टू वॉल है और गर्मी की तपिश भी इसमें मौजूद है। एक हसीन गीत से आप सबकी मोहब्बतों, चाहतों और प्यार के नाम, और इसके बाद अपने मेहमानों का तारुफ।

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grant Road, Bradford 7, 414-760.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 days, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन। अरे ये पूरे ब्रेडफोर्ड में क्या है शोर?
3: आपको नहीं पता, ऑफर्स इन मेनी मेनी स्टोर, रोजाना ताज़ा सब्जियाँ, फल, फ्रूट, सलाद, मीट, चिकन, आटा, दाल, चावल और मसाला, क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला।
2: हर सम्त मचा है जिसका शोर, वो है मैनिंगम सुपर स्टोर। मैनिंगम सुपर स्टोर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8AX, फोन ब्रेडफोर्ड 4955555। हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश, मैनिंगम सुपर स्टोर।
3: मैनिंगम सुपर स्टोर,
4: Bradford Asian Radio. Our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.

विश्व परदेसी मजीद साहब का गीत हमें लगाना है और हम चाह रहे थे कि वो अगर अभी सुन रहे हैं तो अभी लगा दें, वरना नमाज के बाद अगर वो कहेंगे तो लगा देंगे। मैं खुश आमदीद कहना चाहता हूँ हमारे मोहतरम लिसनर जनाबी शकील साहब को, जो बल्ले से हमारे इस बज़्म की रौनक बढ़ाने के लिए तशरीफ ला चुके हैं और एक बे इंतहा खूबसूरत गजल सुनने की ख्वाहिश का इजहार किया है। लेकिन इससे पहले, क्योंकि मुझे जवाब अभी नहीं दे रहे, पेज पर मौजूद हैं परदेसी मजीद साहब कि गीत अगर अभी सुनना चाहेंगे तो हमने क्यों कर रखा है, अभी लगा देंगे। बशमूलत दीगर जब वो नमाज से फारिग होकर आएंगे तो हम उनका तोहफा उनकी नजर कर देंगे। लेकिन अभी फिर वक्त हम चल रहे हैं ये अपने मजलिस बड़ा, जहां मौजूद है हमारी प्यारी सी बिटिया बेडफोर्ड 3 से सुमेरा की प्यारी प्यारी 14 कजन्स, अल्लाह नज़रबद से बचाए। और सुनना चाहती हूँ एक खूबसूरत गीत जो मुंतखब किया है आपके लिए हमारी बाजी खाने की रानी प्यारी सी बिटिया सुमेरा ने बेडफोर्ड 3 से, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपकी ये मेरे मोहब्बत और प्यार का रिश्ता सदा कायम रखे और इसे नजरे बद से बचाए। हमारी ढेरों दुआएं मिडिलसब्रा में आपकी कजन्स के साथ हैं। अल्लाह आप सबको सलामत रखे और अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। सुमेरा बिटिया, हम अब क्या डिशेस का नाम लें? आपने फिर कुछ डिशेस के नाम बताए हैं और अगर मैंने नाम लिया तो मुँह में आ जाएगा पानी। इस बात को, इस किस्से को यही खत्म करते हैं और चलते हैं मजलसवरा आपकी प्यारी प्यारी कजन्स का तोहफा लेकर। जीती रहो आमद का बहुत शुक्रिया।

0: Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: फेस्टिवल 2026 मेला 15 एंड 16 अगस्त को
6: एक बार फिर मोर पार्क किलिंग हार्ट रोड ब्रेडफोर्ड में
5: जहां पहली बार माया नाज लोक फनकार नईम हजारवी अपने फन का मुजाहिरा करेंगे
6: फैशन फूड स्टॉल्स किड्स एंटरटेनमेंट और बहुत कुछ
5: एक खूबसूरत डे आउट आप सबके लिए सैटरडे एंड संडे 15 एंड 16 अगस्त 2026
6: लीड रोड फेस्टिवल
5: बेफोर्ड एजेंट रेडियो द ऑफिशियल मीडिया पार्टनर
6: आप भी
5: जरूर आइएगा उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे क्या ही चॉइस है आपका
6: ये चॉइस हमारा नहीं ये तो कमाल है फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का
5: जो कि पायदार मजबूत खूबसूरत डबल एंटीपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
6: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं
5: फर्स्ट चॉइस
6: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL
5: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
6: 01274317644
7: क्वालिटी वैल्यू स्टाइल एंड सिक्योरिटी योर नंबर वन चॉइस फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर
6: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले
8: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं
6: अरे पगली अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई जी हाँ दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है
8: जी मिल करते कांटे बालियां कंगन गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार
6: टॉप क्वालिटी बेहतरीन सर्विस ओपन 7 डेज
8: 30 वेटली हिल ब्रैडफोर्ड BD8 8NG फोन 01274477257
6: दुबई ज्वेलर्स व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेश खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक आटा चावल दालें मसाला जात रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट हलाल गोश्त और चूजे फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले बचिए इधर उधर की ख्वारी से शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD8 8JL बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी
9: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है
8: अरे दूल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा मिलान की शेरवानी शलवार कमीज वेस्ट कोट प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज जिनके लिबास आम से दूल्हे को शहजादा बना दे
6: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रेडफोर्ड BD8 8DR टेलीफोन 07885428349 अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड्स रोड ब्रेडफोर्ड
8: सुनिए जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे
6: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स
8: खूबसूरत कारपेट्स लैमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ बॉबीज कारपेट्स लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स BD3 ADN बॉबी आइए भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए नंबर मिलाइए 07414260078
10: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
6: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है
10: जी हाँ पल्स जहाँ फिश एंड चिप्स बर्गर्स फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स
6: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए आज ही तशरीफ लाइए ओपन 7 डेज पल्स सी रूम 46 रूली एवेन्यू ब्रेडफोर्ड BD6 1DA फोन 01274306567 बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन
11: Sheffield Mela CIC presents DeciFest Sheffield Mela 2026. Join us at Firth Park, Sheffield on Sunday, 2nd of August from 12 to 8 p.m. A family fun day for the whole family with funfair, food stalls and Mela shopping. Featuring live performances from Lamba Husseinpuri, H. Dami, Ramit Sandhu, Summer Blake and much, much more. Sunday, 2nd of August at Firth Park, Sheffield. We'll see you there.
12: Do you know there are 170,000 new cases of cancer each year in Pakistan?
3: Do you know that Imran Khan Cancer Appeal provides free cancer treatment to 75% of its patients? Do you know that the third specialist Shaukat Hanum Cancer Hospital is being built in Karachi? We need your support more than ever now. Please donate today by calling 01274 424 444 or donate online at ikca.org.uk.
0: Bradford Asian Radio. Call the studio now, 01274 306677. To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.
12: अब इससे अब वक्त हुआ है आपके पसंदीदा सेगमेंट एक शायर एक गीत दो आवाज़ें का. आज हम आपको माजी के झरोखों की सैर कराएंगे. 1969 की बात है, एक फिल्म आई जिसका नाम था अनजाना, लेकिन रिलीज ना हो सकी, जिसके हीरो जनाबे मोहम्मद अली और हीरोइन जेबा थी. उस फिल्म में गीत था जिसे तहरीर किया था उस वक्त के मारूफ मकबूल हर दिल अजीज और महबूब तरीन शायर मसरूर अनवर ने, और जिसे मौसीकी से संवारा था एम अशरफ ने. इस गीत ने मकबूलियत और शोहरत के तमाम तर रिकॉर्ड तोड़े और दुआइयां गीतों में सरे फहरिस्त रहा. 1969 की फिल्म अनजाना से हमने उसी गीत को मुंतखब किया है और आवाज का जादू जगाया था हमारे बहुत प्यारे से मरहूम दोस्त मुजीब आलम और मलकाए तरन्नुम नूर जहां ने. बहरहाल फिल्म तो रिलीज ना हो सकी, लेकिन उसके गीत ने मकबूलियत और शोहरत के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए. तो आज का जो सेगमेंट है, इसका ये गीत जिसके बोल हैं, खुदा कभी न करे गम से हम किनार तुझे, जिसे तहरीर किया है मसरूर अनवर ने और मौसीकी से संवारा है एम अशरफ ने, और आप तक पहुंचाने के लिए तशरीफ ला रहे हैं मरहूम मुजीब आलम. अल्लाह ताला इनके दर्जात को बुलंद फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और मगफिरत फरमाए.

जिससे ये सहरंगेज आवाज थी मुजीब आलम की। इस गीत ने मकबूलियत की तमाम तर बुलंदियां तय की और इसी गीत को जब मसूर अनवर का लिखा हुआ ये गीत MSF की मौसीकी में सहर भरी मधुर दिल में उतर जाने वाली गुलकारा मलका तरंग ने पेश किया तो फिर एक मरतबा सोने पे सुहागा हो गया और मसूर अनवर का ये गीत MSF की मौसीकी में कामयाबी की तमाम तर मंजिलों को उबूर करता हुआ गो। फिल्म अनजाना रिलीज नहीं हुई थी, अनरिलीज फिल्म का गीत था, लेकिन अच्छे गीत बहुत जल्द लोगों के दिलों में उतर जाते हैं और कानों में रस घोलते हैं और सदाबहार गीतों में शामिल हो जाते हैं। तशरीफ ला रही है मलका तरन्नुम नूरजहां, अल्लाह ताला इनके भी दर्जात को बुलंद फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, मग़फ़िरत फरमाए। मसूर अनवर भी अब हमारे दरमियान मौजूद नहीं है, अल्लाह उनके भी दर्जात को बुलंद फरमाए।

दोस्तों, आप सुन रहे थे एक शायर, एक गीत, दो आवाजें। आज जो हमने गीत मुंतखब किया था, ये 1969 की फिल्म अनजाना से था, जो रिलीज ना हो सकी, जिसके हीरो मोहम्मद अली और हीरोइन जेबा थी। साथ ही साथ इस गीत को तहरीर किया था मारूफ मकबूल शायर मसरूर अनवर ने, और आज के इस गीत को संवारा था एम अशरफ ने। अब आप बताइएगा ये सेगमेंट आपको कैसा लगा। रही बात आगे की, तो आगे यह है कि हम चल रहे हैं आपको लेकर वेकफील्ड की हसीन फजाओं में, जहां मौजूद हैं अपने अहले खाना के हमरा जनाबे वकार साहब, और सुनना चाहते हैं ये खूबसूरत गीत। कहते हैं कि आज मैं अपने अहले खाना के साथ ही दिन गुजार रहा हूँ, बहुत खुशी की बात है। घर वालों को जितना भी वक्त मैसर हो देना चाहिए, और बच्चों के साथ, कहते हैं छुट्टियां हैं बच्चों की, तो ज़रा घर में बड़ी प्यारी सी रौनक लगी है, और मैं उससे लुत्फ़अंदोज़ होना चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को हमेशा अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। हमारी ढेरों दुआएं हैं आपके अहले खाना के हमरा मौजूद। अल्लाह ताला आप पर हमेशा यूँ ही अपना फजल व करम जारी हो सारी रखे। वक़ार जीते रहिए, आपका तोहफा लेकर हाजिर हूँ आमद का बेइंतहा शुक्रिया।

0: Community Radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: लीज रोड फेस्टिवल 2026 मेला 15 एंड 16 अगस्त को
7: एक बार फिर मोर पार्क किलिंग हार रोड ब्रेडफोर्ड में
6: जहां पहली बार किंग ऑफ भंगड़ा इब्रार उल हक अपने गानों से आपके दिलों को धड़काएंगे
7: पैशन फूड स्टॉल्स किड्स एंटरटेनमेंट और बहुत कुछ
6: एक खूबसूरत डे आउट आप सबके लिए सैटरडे एंड संडे 15 एंड 16 अगस्त 2026
7: लीज रोड फेस्टिवल
6: ब्रेडफोर्ड रीजन रेडियो द ऑफिशियल मीडिया पार्टनर
7: आप भी
6: जरूर आइएगा उफ, कितनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे क्या ही चॉइस है आपका
7: ये चॉइस हमारा नहीं ये तो कमाल है फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का
6: जो कि पायदार मजबूत खूबसूरत डबल एंटीपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644
8: फॉर क्वालिटी वैल्यू स्टाइल एंड सिक्योरिटी योर नंबर वन चॉइस फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर
7: दुल्हन वो जो पिया मन भाई
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए
7: नित नए डिजाइन के साथ चूड़ियां कंगन कांटे
9: बालियां अंगूठियां और हार
7: जो दुल्हन करे सिंगार
9: आज ही मामू काके की दुकान
7: खालिस सोने की पहचान
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स तशरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए
9: आपकी शान
7: हमारी आन
9: क्वालिटी की पहचान
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स 1 Duckworth Lane ब्रेडफोर्ड BD95ER 01274491442
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स
0: टू बिकम अ रेडियो प्रेजेंटर Please call the studio 01274 306677. Bradford Asian Radio.
10: Looking to start driving or building a strong career with Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274 201679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
11: सुनिए जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे
7: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स
11: खूबसूरत कारपेट्स लैमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ बॉबीज कारपेट्स लिस्टेड लाइट ट्रैफिक लाइट्स ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स BD3ADN बॉबी आइए भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए नंबर मिलाइए 07414260078
12: सोने दे गजरे ते सोने दिया चूड़ियां
11: आइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए नंबर मिलाइए 07414260078

0: 414-360।
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, टी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
3: ब्रेडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर।
4: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं, मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर, जहाँ पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 pounds से, जर्मन वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कॉफी टेबल, रग्स, कारपेट, मैट्रेसेस की वसी वैरायटी।
5: ओपन 7 डेज, 10 to 6, फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर। लव फर्नीचर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, अपोजिट बार्कलेज बैंक, फोन ब्रेडफोर्ड 9627229627222।
4: लव फर्नीचर, फर्नीचर यू लव।
6: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.

0: क्या है भरोसा है 4000
1: मुझे छोड़ दे मेरे हाल पर, क्या सादगी और रवानी है, वाह वाह वाह वाह।
0: ये तेरी नवाजिश मुख्तसर मेरा दर्द और बुरा ना दे।
1: आहा वाह वाह वाह वाह।
0: मेरा अज़्म इतना बुलंद है
1: आहा
0: कि पराए शोलों का डर नहीं।
1: क्या बात है, क्या इंतखाब है।
0: मेरा अज़्म इतना बुलंद है कि पराए शोलों का डर नहीं।
1: आहा
0: मुझे खौफ आतिशे गुल से है, ये कहीं चमन को जला न दे।
1: बल वाह वाह वाह, आता कीजिए, बहुत खूबसूरत, वाह वाह वाह वाह।
0: मेरा अज़्म इतना बुलंद है कि पराए शोलों का डर नहीं।
1: आहा
0: मुझे खौफ आतिशे गुल से है, ये कहीं चमन को जला न दे।
1: वाह वाह वाह वाह।
0: शेर कहते हैं,
1: अता कीजिए।
0: वो उठे हैं लेके हुमो सुरूर।
1: आहा
0: वो उठे हैं लेके हुमो सुरूर, अरे वो शकील कहाँ है तू।
1: आए है आए है, क्या बात है क्या बात है, क्या मिसरा है, वाह।
0: तेरा जाम लेने को बदल में कोई और हाथ बढ़ा न दे।
1: तेरा जाम लेने को बदल में कोई और हाथ बढ़ा न दे, अता कीजिए मख्ता।
0: वो उठे है लेके हुमो सुरूर, वो शकील कहाँ है तू। तेरा तेरा जाम लेने को बजम में कोई
1: और हाथ बढ़ाने दे। भाई बहुत खूबसूरत इंतखाब शकील भाई, अल्लाह आपको सलामत रखे, वाह वाह वाह वाह।
0: शुक्रिया,
1: आपके हम नाम है भाई।
0: तो एक गजल छोटी सी लाया हूँ, काशिफ रफीक इनका नाम है।
1: जी जी, अच्छा कीजिए।
0: कहते खूब थी वो घड़ी के जब दोनों थे एक इशार में।
1: खूब थी वो घड़ी के जब दोनों थे एक हिसार में।
0: मैं था तेरे खुमार में, तू था मेरे
1: खुमार में। वही वाह वाह वाह वाह।
0: खूब थी वो घड़ी के जब दोनों थे एक हिसार में। मैं था तेरे खुमार में, तू था मेरे
1: खुमार में।
0: नूर से मेरे इश्क के
1: आहा
0: निखरे थे उसके खतो खाल।
1: क्या बात है, क्या मिसरा है भाई, वाह वाह, मिसरा था कीजिए।
0: नूर से मेरे इश्क के निखरे थे उसके खदो खाल, रंग था मेरे ख्वाब का रख से जमाले यार में।
1: वाह वाह वाह वाह, रंग था मेरे ख्वाब का रख से जमाले यार में, वाह वाह वाह वाह।
0: शुक्रिया। गो थी कशिश हमारे बीच, गो थी कशिश हमारे बीच, मगर बहम ना हो सके।
1: आहा
0: मैं था अलग मदार में, वो था अलग मदार
1: मदार में। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह वाह।
0: शुक्रिया। ख्वाहिशे वसले यार तो यूं ना हो सकी मगर।
1: आहा
0: ख्वाहिशे वसले यार पूरी ना हो सकी मगर, दश्ते हयात कट गया वहशते इंतजार में।
1: दश्ते हयात कट गया वहशते इंतजार में, क्या मुरस्सा इंतखाब है भाई, वाह वाह वाह वाह।
0: शुक्रिया। ख्वाहिशे वसल या फसले यार तो पूरी न हो सके, दश्ते हयात कट गया बशते इंतजार में। मर्जी से कब हुआ कोई इश्क बुता में मुबतला।
1: मर्जी से कोई कब हुआ इश्क बुता में मुबतला।
0: कौन ये रोग पालता होता जो इख्तियार में।
1: क्या बात है, क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। कौन ये रोग पालता, अता कीजिए शेर, बहुत जानदार।
0: कब हुआ कोई इश्क बुता में मुबतला।
1: आहा
0: कौन ये रोग पालता होता जो इख्तियार में।
1: आहा
0: फारसी शेर कहते हैं,
1: जी जी।
0: नगमे खुशी के किस तरह गाए वो काशिफ,
1: नगमे खुशी के किस तरह,
0: जिसका चमन का चमन लुट जाए बड़ी बहार।
1: बड़ी बहार में, क्या बात है, अता कीजिए।
0: नगमे खुशी के किस तरह गाए वो काशिफ, जिसका चमन का चमन
1: लुट जाए भरी बहार में। वाह वाह वाह वाह, शकील भाई दिल खुश कर दिया हमेशा की तरह आपने। अल्लाह ताला आपको सेहत से रखे, सलामत रखे और नजरे बद से बचाए। आपके लिए परदेसी मजीद साहब ने खुशूसी सलाम भेजा है, खालिया गुजरात पाकिस्तान से। हमेशा की तरह उन्होंने आपके कलाम को बे इंतहा सराहा और पसंद किया है।
0: शुक्रिया, खुदा
1: हाफिज। और के भाई खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। और दोस्तों आप थे जनाब शकील साहब, बल्ले से हमारे बज़्म की रौनक और इसकी इज्जत और तौकीर बढ़ा रहे थे हस्बे वादा। अब हम आपके लिए चल रहे हैं डनकास्टर सिटी, जहां मौजूद हैं सिराज मुनीर साहब। अहले डनकास्टर सिटी को भी मेरा सलाम पहुंचे। और एक नवीद ये सुनाई सिराज मुनीर साहब ने कि अल्हम्दुलिल्लाह आप के अल्फाज में आपके सामीन और नाजरीन की बेशुमार दुआओं को अल्लाह ताला ने कबूल फरमाया है और अब मैं मुकम्मल तौर पर सेहतियाब हो चुका हूँ। ये बात तो मैं इसलिए मानता हूँ कि मेरे कहने पर जब बेलौस हाथ उठते हैं तो उनमें हजारों हाथ ऐसे होते हैं जो मुस्तजाबुल दावात होते हैं, जिनकी दुआओं को अल्लाह ताला कभी रद्द नहीं करता। बड़ी खुशाइन बात है, अल्लाह आपको हमेशा अपने जमान में रखे। आमद का बहुत शुक्रिया सिराज मुनीर भाई, आपका तोहफा देकर हाजिर हूँ, कबूल कीजिए।

नजर करूंगा, लेकिन हाँ उससे पहले हम एक काम कर सकते हैं। हमारी बहुत ही प्यारी सी बहना जो ढेरों दुआएं लेकर हमारे प्रोग्राम की जीनत और तौकीर बढ़ाने के लिए तशरीफ लाती हैं, शहनाज, उनका भी गीत पूरा नहीं हो पाएगा। हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, बिल्कुल सही है। तो चलते हैं, शहनाज बिटिया जीती रहो, अल्लाह तुम्हारी जोड़ी सलामत रखे और अपने बच्चों की बाहर देखो, टाइम कम मुकाबला सख्त, तोहफा हाजिर है, यादों के झरोखों में घूमो।

0: Asian Radio on 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: Lees Road Festival 2026 Mela 15 and 16 August को
7: एक बार फिर Moore Park Killingham Road Bradford में
6: जहां पहली बार King of Bhangra Ibrahim Ul Haq अपने गानों से आपके दिलों को धड़काएंगे
7: Passion, Food Stalls, Kids Entertainment और बहुत कुछ
6: एक खूबसूरत day out आप सबके लिए Saturday and Sunday 15 and 16 August 2026
7: Lees Road Festival
6: Bradford Region Radio the official media partner
7: आप भी
6: जरूर आइएगा उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे क्या ही चॉइस है आपका
7: ये चॉइस हमारा नहीं ये तो कमाल है फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का
6: जो कि पायदार मजबूत खूबसूरत डबल एंट्रेपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644
8: क्वालिटी वैल्यू स्टाइल एंड सिक्योरिटी योर नंबर वन चॉइस फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर
7: दुल्हन वो जो पिया मन भाई
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए
7: नित नए डिजाइन के साथ चूड़ियां कंगन कांटे
9: बालियां अंगूठियां और हार
7: जो दुल्हन करे सिंगार
9: आज ही मामू काकी की दुकान
7: खालिस सोने की पहचान
9: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए
9: आपकी शान
7: हमारी आन
9: क्वालिटी की पहचान
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स 1 डुफट लेन ब्रेडफोर्ड BD95ER 01274491442
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स
0: टू बिकम अ रेडियो प्रेजेंटर Please call the studio 01274 306677. Bradford Asian Radio.
10: ना ही बच्चों को कोई सेफ मुस्तकबिल ना हमारा कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा
7: अरे सेफ पे राइडर जाएंगे ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे
10: बस ट्रक फोकली टैक्सी लाइसेंस हम है आपको सब कुछ सिखाने को तैयार
7: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ पे राइडर
10: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत आज ही विजिट कीजिए
7: 33 वेटल लेन ब्रेडफोर्ड 01274201679
10: UK. सुनिए जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे
7: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी इस कारपेट की स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स
10: खूबसूरत कारपेट्स लैमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ बॉबीज कारपेट्स लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स BD3ADN बॉबी आइए भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए नंबर मिलाइए 07414

0: 93 Hotham Grange Road, Bradford 7414760.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स बर्गर
0: 4760।
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स

दोस्तों हस्ब वादा अब हम आपको लिए चल रहे हैं। मुझे लगता है कि परदेसी मजीद साहब या तो लाइव चली गई है, अभी तक तशरीफ नहीं लाए। उनका तोहफा प्रोग्राम अख्तिताम की जानिब बढ़ रहा है, पेश करना था। और जब सात समंदर पार से इस मोहब्बत के साथ वो आते हैं तो मेरा फर्ज है कि मैं उनका तोहफा उनकी नजर करूं। तो मैं मुंतजर हूं आपकी आमद का। क्या वजह है कि आप तशरीफ नहीं लाए नमाज के बाद? अब हम चलते हैं अपने उस खूबसूरत लिसनर के तोहफे की जानिब। मैंने आपको बताया था कि हमारे हमराह मौजूद हैं जनाब निगाह हुसैन साहब, और सुनना चाहते हैं वो गीत जो मेरे भी दिल के बहुत करीब है और जिसे खान साहब शराफत अली खान साहब की खूबसूरत आवाज़ ने अमर गीतों में शामिल कर दिया है। रशीद अतरे की मौसीकी में ये खूबसूरत गीत आवाज खान साहब शराफत अली खान साहब की है और फिल्म का नाम था वादा। निगाह हुसैन साहब, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। और इस खूबसूरत शेर के साथ कृष्ण बिहारी नूर का एक शेर याद आ रहा है। आया है कोई यहां ठहरा भी है, आया है कोई यहां ठहरा भी है, ऐ नूर घर की दहलीज पर उजाला है बहुत। आपका तोहफा निगाह हुसैन साहब, आपकी नज़र आमद का दिल की गहराइयों से बहुत शुक्रिया।

और अभी आप सुन रहे थे निगाहे हुसैन साहब की ख्वाहिश पर ये खूबसूरत गीत, जिसे तहरीर किया सैफुद्दीन सैफ ने और मौसीकी से इसे संवारा था उस अजीम मौसीकार ने जिसे दुनिया रशीद दत्तरे के नाम से जानती है। कहा जाता है कि पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री में मौसीकारों की फहरिस्त में इनसे ज्यादा आला तालीम याफ्ता कोई मौसीकार नहीं हुआ। तो आइए अब चल रहे हैं, मैं देख रहा हूँ हमारे नादीदा लिसनर सोते मुजाहिद आगाज प्रोग्राम से काफी कसीर तादाद में हमारे हमराह मौजूद हैं, और मैं नहीं चाहता कि जिस मोहब्बत से वो ऑनलाइन हमारे प्रोग्राम सुनते हैं उन्हें महरूम रखा जाए। जरूरी थोड़ी है कि वो आए और कहें कि हमें ये सुनाइए, हम तो आपको एहतरामन आपकी इस अकीदत कि आप ऑनलाइन सुनकर हमारे प्रोग्राम की इज्जत और तौकीर बढ़ाते हैं, आपके लिए मैंने अपनी पसंदीदा गजल अपने उस प्यारे से सिंगर की आवाज में रखी है जिन्होंने मेरे साथ ही बच्चों के प्रोग्राम से रेडियो पाकिस्तान में आगाज किया था, और वो हैं सलमान अलवी। सलमान अलवी बचपन से ही मौसीकी की तरफ बहुत ज्यादा रागिब थे, आज उन्हें अल्लाह ताला ने मकाम अता किया है, हम अभी तक उन मराहिल में हैं जहां मकाम पैदा किया जाता है। बहरहाल सलमान अलवी की ये खूबसूरत गजल अपने उन तमाम नादीदा लिसनर्स के नाम और सोते मुजाहिदों के नाम जो हमें ऑनलाइन सुन रहे हैं, अल्लाह ताला आप सबको हमेशा अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, नजर बद से बचाए और सेहत से रखे। आपकी आमद हमारे प्रोग्राम को चार चांद लगा देती है। अल्लाह आपको खुश रखे।

0: Asian Community Radio, Bradford Asian Radio, on 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: फेस्टिवल 26 मेला 15 एंड 16 अगस्त को
6: एक बार फिर मोर पार्क किलिंग हार्ड रोड ब्रेडफोर्ड में
5: जहां पहली बार माया नाज लोक फनकार नईम हजारवी अपने फन का मुजाहिरा करेंगे
6: फैशन फूड स्टॉल्स किड्स एंटरटेनमेंट और बहुत कुछ
5: एक खूबसूरत डे आउट आप सबके लिए सैटरडे एंड संडे 15 एंड 16 अगस्त 2026
6: लीड रोड फेस्टिवल
5: बेफोर एजन रेडियो द ऑफिशियल मीडिया पार्टनर
6: आप भी
5: जरूर आइएगा उफ़ कितनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे क्या ही चॉइस है आपका
6: ये चॉइस हमारा नहीं ये तो कमाल है फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का
5: जो कि पायदार मजबूत खूबसूरत डबल एंटरप्राइज ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
6: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं
5: फर्स्ट चॉइस
6: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL
5: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
6: 01274317644
7: क्वालिटी वैल्यू स्टाइल एंड सिक्योरिटी योर नंबर वन चॉइस फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर
6: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले
8: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं
6: अरे पगली अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई जी हाँ दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है
8: जी मिल करते कांटे बालियां कंगन गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार
6: टॉप क्वालिटी बेहतरीन सर्विस ओपन 7 डेज
8: 30 वेटली हिल ब्रैडफोर्ड BD8 8NG फोन 01274477257
6: दुबई ज्वेलर्स व्हाइट एबे रोड पर धमाके पे धमाका पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ शोर होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक आटा चावल दालें मसाला जात रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट हलाल गोश्त और चूजे फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले बचिए इधर उधर की ख्वारी से शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक व्हाइट एबे रोड ब्रेडफोर्ड BD8 8JL बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी
9: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है
8: अरे दूल्हा जब शेरवानी मिलान दूल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा मिलान की शेरवानी शलवार कमीज वेस्ट कोट प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज जिनके लिबास आम से दूल्हे को शहजादा बना दे
6: मिलान दूल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रेडफोर्ड BD8 8DR टेलीफोन 07885428349 अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड्स रोड ब्रेडफोर्ड
8: सुनिए जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे
6: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स
8: खूबसूरत कारपेट्स लैमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ बॉबीज कारपेट्स लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स BD3 ADN बॉबी आइए भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए नंबर मिलाइए 07414260078
10: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
6: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है
10: जी हाँ पल्स जहाँ फिश एंड चिप्स बर्गर्स फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स
6: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए आज ही तशरीफ लाइए ओपन 7 डेज पल्स सी रूम 46 रूली एवेन्यू ब्रेडफोर्ड BD6 1DA फोन 01274306567 बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन
11: Sheffield Mela CIC presents DesiFest Sheffield Mela 2026. Join us at Firth Park, Sheffield on Sunday, 2nd of August from 12 to 8 p.m. A family fun day for the whole family with funfair, food stalls and Mela shopping. Featuring live performances from Lamba Husseinpuri, H. Dami, Ramit Sandhu, Summer Blake and much, much more. Sunday, 2nd of August at Firth Park, Sheffield. We'll see you there.
3: हिसाबे उम्र का इतना सा गोशवारा है, तुम्हें निकाल के देखा तो सब

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio, on 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: अज मेला देखण आईया कुड़ियां लोतियां
7: Leeds Road Festival 2026 Mela 15 and 16 August को
8: एक बार फिर Moore Park Killingham Road Bradford में
7: जहां पहली बार King of Bhangra Ibrahim Roy Huck अपने गानों से आपके दिलों को धड़काएंगे
8: Fashion, food stalls, kids entertainment और बहुत कुछ
7: एक खूबसूरत डे आउट आप सबके लिए Saturday and Sunday 15 and 16 August 2026
8: Leeds Road Festival
7: Bradford Region Radio the official media partner
8: आप भी
7: जरूर आइएगा उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे क्या ही चॉइस है आपका
8: ये चॉइस हमारा नहीं ये तो कमाल है फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का
7: जो कि पायदार मजबूत खूबसूरत डबल एंट्री ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
8: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं
7: फर्स्ट चॉइस 106
8: लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL
7: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
8: 01274317644
9: क्वालिटी वैल्यू स्टाइल एंड सिक्योरिटी योर नंबर वन चॉइस फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर
8: दुल्हन वो जो पिया मन भाई
10: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए
8: नित नए डिजाइन के साथ चूड़ियां कंगन कांटे
10: बालियां अंगूठियां और हार
8: जो दुल्हन करे सिंगार
10: आज ही मामू काके की दुकान
8: खालिस सौदे की पहचान
10: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
8: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए
10: आपकी शान
8: हमारी आन
10: क्वालिटी की पहचान
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स 1 Duckworth Lane ब्रेडफोर्ड BD95ER 01274491442
10: पाकिस्तान ज्वेलर्स
0: टू बिकम अ रेडियो प्रेजेंटर Please call the studio 01274 306677. Bradford Asian Radio.
11: Looking to start driving or building a strong career with Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
12: सुनिए जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे
8: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स
12: खूबसूरत कारपेट्स लैमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ बॉबीज कारपेट्स लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स BD3ADN बॉबी आइए भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए नंबर मिलाइए 07414260078

0: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
1: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
0: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
1: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 अरूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन। अरे ये पूरे ब्रेडफोर्ड में क्या है शोर?
2: आपको नहीं पता, ऑफर्स इन मेनी मेनी स्टोर, रोजाना ताजा सब्जियां, फल, फ्रूट, सलाद, मीट, चिकन, आटा, दाल, चावल और मसाला, क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला।
1: हर सप्त मचा है जिसका शोर, वो है मैनिंगम सुपर स्टोर। मैनिंगम सुपर स्टोर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8AX, फ्रॉम ब्रेडफोर्ड 4955555। हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश
2: पे आला और सर्विस में सबसे बाला।
1: हर सप्त मचा है जिसका शोर, वो है मैनिंगम सुपर स्टोर। मैनिंगम सुपर स्टोर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8AX, फ्रॉम ब्रेडफोर्ड 4955555।

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio, on 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: फेस्टिवल 26 मेला 15 एंड 16 अगस्त को
6: एक बार फिर मोर पार्क किलिंग हार रोड ब्रेडफोर्ड में
5: जहां पहली बार माया नाज लोक फनकार नईम हजारवी अपने फन का मुजाहिरा करेंगे
6: फैशन फूड स्टॉल्स किड्स एंटरटेनमेंट और बहुत कुछ
5: एक खूबसूरत डे आउट आप सबके लिए सैटरडे एंड संडे 15 एंड 16 अगस्त 2026
6: लीड रोड फेस्टिवल
5: बेफोर्ड एजेंट रेडियो द ऑफिशियल मीडिया पार्टनर
6: आप भी
5: जरूर आइएगा उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे क्या ही चॉइस है आपका
6: ये चॉइस हमारा नहीं ये तो कमाल है फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का
5: जो कि पायदार मजबूत खूबसूरत डबल एंटरप्राइज ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
6: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं
5: फर्स्ट चॉइस
6: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL
5: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
6: 01274317644
7: फॉर क्वालिटी वैल्यू स्टाइल एंड सिक्योरिटी योर नंबर वन चॉइस फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर
6: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले
8: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं
6: अरे पगली अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई जी हाँ दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है
8: जी मिल करते कांटे बालियां कंगन गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार
6: टॉप क्वालिटी बेहतरीन सर्विस ओपन 7 डेज
8: 30 वेटली हिल ब्रेडफोर्ड BD8 8NG फोन 01274477257
6: दुबई ज्वेलर्स व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेश खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक आटा चावल दालें मसाला जात रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट हलाल गोश्त और चूजे फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले बचिए इधर उधर की खुआरी से शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD8 8JL बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी
9: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है
8: अरे दूल्हा जब शेरवानी मिलान दूल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा मिलान की शेरवानी शलवार कमीज वेस्ट कोट प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज जिनके लिबास आम से दूल्हे को शहजादा बना दे
6: मिलान दूल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रेडफोर्ड BD8 8DR टेलीफोन 07885428349 अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड्स रोड ब्रेडफोर्ड
8: सुनिए जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे
6: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स
8: खूबसूरत कारपेट्स लैमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ बॉबीज कारपेट्स लिस्टेड डाइट ट्रैफिक लाइट्स ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स BD3 ADN बॉबी आइए भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए नंबर मिलाइए 07414260078
10: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
6: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है
10: जी हाँ पल्स जहाँ फिश एंड चिप्स बर्गर्स फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स
6: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए आज ही तशरीफ लाइए ओपन 7 डेज पल्स सी रूम 46 रूली एवेन्यू ब्रेडफोर्ड BD6 1DA फोन 01274306567 बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन
0: Sheffield Mellor CIC presents DeciFest Sheffield Mellor 2026. Join us at Firth Park, Sheffield on Sunday, 2nd of August from 12 to 8 p.m. A family fun day for the whole family with funfair, food stalls and Mellor shopping. Featuring live performances from Lamba Husseinpuri, H. Dami, Ramit Sandhu, Summer Blake and much, much more. Sunday, 2nd of August at Firth Park, Sheffield. We'll see you there.
3: क्या आपकी आवाज खूबसूरत है? क्या आपने बोलने की जरूरत है? अगर ऐसी ही सूरत है तो ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो को आपकी जरूरत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए और अपनी आवाज सुनने वालों के दिलों तक पहुंचाइए और खुद को रेडियो स्टार बनाइए। याद रखिए, अगर आपको बड़ी बड़ी छोड़ने की आदत है तो ये आपके कल के बड़ा ब्रॉडकास्टर बनने की जमानत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए। ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो,
11: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, कॉल द स्टूडियो नाउ 01274306677। To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio, on 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: ਅੱਜ ਮੇਲਾ ਵੇਖਣ ਆਈਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਲੋਰਦੀਆਂ
7: Leeds Road Festival 2026 Mela 15 and 16 August को
8: एक बार फिर Moore Park Killingham Road Bradford में
7: जहां पहली बार King of Bhangra Ibrahim Ul Haq अपने गानों से आपके दिलों को धड़काएंगे
8: Passion, Food Stalls, Kids Entertainment और बहुत कुछ
7: एक खूबसूरत डे आउट आप सबके लिए Saturday and Sunday 15 and 16 August 2026
8: Leeds Road Festival
7: Bradford Region Radio the official media partner
8: आप भी
7: जरूर आइएगा उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे क्या ही चॉइस है आपका
8: ये चॉइस हमारा नहीं ये तो कमाल है फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का
7: जो कि पायदार मजबूत खूबसूरत डबल एंट्रेपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
8: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं
7: फर्स्ट चॉइस
8: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL
7: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
8: 01274317644
9: क्वालिटी वैल्यू स्टाइल एंड सिक्योरिटी योर नंबर वन चॉइस फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर
8: दुल्हन वो जो पिया मन भाई
10: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए
8: नित नए डिजाइन के साथ चूड़ियां कंगन कांटे
10: बालियां अंगूठियां और हार
8: जो दुल्हन करे सिंगार
10: आज ही मामू काके की दुकान
8: खालिस सोने की पहचान
10: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
8: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए
10: आपकी शान
8: हमारी आन
10: क्वालिटी की पहचान
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स 12 फुटलैंड ब्रैडफोर्ड BD95ER 01274491442
10: पाकिस्तान ज्वेलर्स
0: टू बिकम अ रेडियो प्रेजेंटर Please call the studio 01274 306677. Bradford Asian Radio.
11: ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल ना हमारा कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा
8: अरे सेफ पे राइडर जाएंगे ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे
11: बस ट्रक फोकलिफ्ट टैक्सी लाइसेंस हम है आपको सब कुछ सिखाने को तैयार
8: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ पे राइडर
11: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत आज ही विजिट कीजिए
8: 33 वेटले लेन ब्रेडफोर्ड
11: 01274201679 UK. सुनिए जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे
8: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स
11: खूबसूरत कारपेट्स लैमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ बॉबीज कारपेट्स लिस्टेड एट ट्रैफिक लाइट्स ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग BD3ADN बॉबी आइए भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए नंबर मिलाइए 07414260

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grange Road, Bradford 7, 414-760.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
3: ब्रेडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर।
1: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं, मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर, जहाँ पे ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 pounds से, जर्मन वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कॉफी टेबल, रग्स, कारपेट, मैट्रेसेस की वसी वैरायटी।
4: ओपन 7 डेज, 10 to 6, फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर। लव फर्नीचर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, अपोजिट बार्कलेज बैंक, ऑन ब्रेडफोर्ड, 9627229622।
1: लव फर्नीचर, फर्नीचर यू लव।
5: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.

0: अजान का वक्त हुआ चाहता है इस अजान के लिए हमें तावन हासिल है कूबर हॉल सोलिसिटर्स लिस्टर हिल्स साइंस पार्क कैंपस रोड ब्रेडफोर्ड BD71HR
1: अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती नमाज पढ़ गए दुनिया में करबला वाले सामीन ब्रेडफोर्ड और इसके मुजाफात में अजान का वक्त हुआ चाहता है
2: अल्लाह

أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274
5: फेस्टिवल 2026 मेला 15 एंड 16 अगस्त को
6: एक बार फिर मोर पार्क किलिंग हार्ड रोड ब्रेडफोर्ड में
5: जहां पहली बार माया नाज लोक फनकार नईम हजारवी अपने फन का मुजाहिरा करेंगे
6: फैशन फूड स्टॉल्स किड्स एंटरटेनमेंट और बहुत कुछ
5: एक खूबसूरत डे आउट आप सबके लिए सैटरडे एंड संडे 15 एंड 16 अगस्त 2026
6: लीड रोड फेस्टिवल
5: बेफोर एजेंट रेडियो द ऑफिशियल मीडिया पार्टनर
6: आप भी
5: जरूर आइएगा उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे क्या ही चॉइस है आपका
6: ये चॉइस हमारा नहीं ये तो कमाल है फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का
5: जो कि पायदार मजबूत खूबसूरत डबल एंटरप्रेस ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
6: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं
5: फर्स्ट चॉइस 106
6: लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL
5: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
6: 01274317644
7: क्वालिटी वैल्यू स्टाइल एंड सिक्योरिटी योर नंबर वन चॉइस फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर
6: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले
8: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं
6: अरे पगली अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई जी हाँ दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है
8: जी नहीं करते कांटे बालियां कंगन गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार
6: टॉप क्वालिटी बेहतरीन सर्विस ओपन 7 डेज
8: 30 वेटली हिल ब्रेडफोर्ड BD8 8NG फोन 01274477257 दुबई ज्वेलर्स
6: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक आटा चावल दालें मसाला जात रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट हलाल गोश्त और चूजे फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले बचिए इधर उधर की ख्वारी से शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD8 8JL बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी
9: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है
8: अरे दूल्हा जब शेरवानी मिलान दूल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा मिलान की शेरवानी शलवार कमीज वेस्ट कोट प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज जिनके लिबास आम से दूल्हे को शहजादा बना दे
6: मिलान दूल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रेडफोर्ड BD8 8DR टेलीफोन 07885428349 अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड्स रोड ब्रेडफोर्ड
8: सुनिए जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे
6: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी इस कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स
8: खूबसूरत कारपेट्स लैमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ बॉबीज कारपेट्स लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स BD3 ADN बॉबी आइए भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए नंबर मिलाइए 07414260078
10: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
6: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है
10: जी हाँ पल्स जहाँ फिश एंड चिप्स बर्गर्स फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स
6: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए आज ही तशरीफ लाइए ओपन 7 डेज पल्स सी रूम 46 रूली एवेन्यू ब्रेडफोर्ड BD6 1DA फोन 01274306567 बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन
0: Sheffield Mela CIC presents DeciFest Sheffield Mela 2026. Join us at Firth Park, Sheffield on Sunday, 2nd of August from 12 to 8 p.m. A family fun day for the whole family with fun fair, food stalls and Mela shopping. Featuring live performances from Lamba Husseinpuri, H. Dami, Ramit Sandhu, Summer Blake and much, much more. Sunday, 2nd of August at Firth Park, Sheffield. We'll see you there.
3: Do you know there are 170,000 new cases of cancer each year in Pakistan? Do you know that Imran Khan Cancer Appeal provides free cancer treatment to 75% of its patients? Do you know that the third specialist Shaukat Hanum Cancer Hospital is being built in Karachi? We need your support more than ever now. Please donate today by calling 01274 424444 or donate online at ikca.org.uk.
11: Bradford Asian Radio. Call the studio now, 01274 306677. To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.

0: York's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: लीज रोड फेस्टिवल 2026 मेला 15 एंड 16 अगस्त को
7: एक बार फिर मोर पार्क किलिंगहार्ट रोड ब्रेडफोर्ड में
6: जहां पहली बार किंग ऑफ भंगड़ा इब्रार उल हक अपने गानों से आपके दिलों को धड़काएंगे
7: पैशन फूड स्टॉल्स किड्स एंटरटेनमेंट और बहुत कुछ
6: एक खूबसूरत डे आउट आप सबके लिए सैटरडे एंड संडे 15 एंड 16 अगस्त 2026
7: लीज रोड फेस्टिवल
6: ब्रेडफोर्ड रीजन रेडियो द ऑफिशियल मीडिया पार्टनर
7: आप भी
6: जरूर आइएगा इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे क्या ही चॉइस है आपका
7: ये चॉइस हमारा नहीं ये तो कमाल है फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का
6: जो कि पायदार मजबूत खूबसूरत डबल एंटीपर ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं
6: फर्स्ट चॉइस 106
7: लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644
8: क्वालिटी वैल्यू स्टाइल एंड सिक्योरिटी योर नंबर वन चॉइस फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर
7: दुल्हन वो जो पिया मन भाए
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए
7: नित नए डिजाइन के साथ चूड़ियां कंगन कांटे
9: बालियां अंगूठियां और हार
7: जो दुल्हन करे सिंगार
9: आज ही मामू काके की दुकान
7: खालिस सोने की पहचान
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए
9: आपकी शान
7: हमारी आन
9: क्वालिटी की पहचान
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स 1 Dufferin Lane ब्रेडफोर्ड BD95ER 01274491442
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स
0: टू बिकम अ रेडियो प्रेजेंटर Please call the studio 01274 306677. Bradford Asian Radio.
10: Looking to start driving or building a strong career with Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
11: सुनिए जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे
7: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स
11: खूबसूरत कारपेट्स लैमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ बॉबीज कारपेट्स लिस्टेड लाइट ट्रैफिक लाइट्स ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स BD3ADN बॉबी आइए भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए नंबर मिलाइए 07414260078

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: फेस्टिवल 2026 मेला 15 एंड 16 अगस्त को
6: एक बार फिर मोर पार्क किलिंग हार रोड ब्रेडफोर्ड में
5: जहां पहली बार माया नाज लोक फनकार नईम हजारवी अपने फन का मुजाहिरा करेंगे
6: फैशन फूड स्टॉल्स किड्स एंटरटेनमेंट और बहुत कुछ
5: एक खूबसूरत डे आउट आप सबके लिए सैटरडे एंड संडे 15 एंड 16 अगस्त 2026
6: लीड्स रोड फेस्टिवल
5: बेफोर रीजन रेडियो द ऑफिशियल मीडिया पार्टनर
6: आप भी
5: जरूर आइएगा उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे क्या ही चॉइस है आपका
6: ये चॉइस हमारा नहीं ये तो कमाल है फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का
5: जो कि पायदार मजबूत खूबसूरत डबल एंटरप्राइज ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
6: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं
5: फर्स्ट चॉइस
6: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL
5: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
6: 01274317644
7: फॉर क्वालिटी वैल्यू स्टाइल एंड सिक्योरिटी योर नंबर वन चॉइस फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर
6: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले
8: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं
6: अरे पगली अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई जी हाँ दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है
8: जी मिल करते कांटे बालियां कंगन गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार
6: टॉप क्वालिटी बेहतरीन सर्विस ओपन 7 डेज
8: 30 वेटली हिल ब्रेडफोर्ड BD8 8NG फोन 01274477257 दुबई ज्वेलर्स
6: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक आटा चावल दालें मसाला जात रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट हलाल गोश्त और चूजे फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले बचिए इधर उधर की ख्वारी से शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD8 8JL बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी
9: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है
8: अरे दूल्हा जब शेरवानी मिलान दूल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा मिलान की शेरवानी शलवार कमीज वेस्ट कोट प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज जिनके लिबास आम से दूल्हे को शहजादा बना दे
6: मिलान दूल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रेडफोर्ड BD8 8DR टेलीफोन 07885428349 अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड्स रोड ब्रेडफोर्ड
8: सुनिए जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे
6: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स
8: खूबसूरत कारपेट्स लैमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ बॉबीज कारपेट्स लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स BD3 ADN बॉबी आइए भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए नंबर मिलाइए 07414260078
10: रवायती खानों से हटकर आज
0: यू लिसनिंग टू द एशियन रेडियो 1413 AM एंड ऑनलाइन

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाई दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: अज मेला देखन आईया कुड़िया लौटियां
7: Lees Road Festival 2026 Mela 15 and 16 August को
8: एक बार फिर Moore Park Killingham Road Bradford में
7: जहां पहली बार King of Bhangra Ibrahimul Haq अपने गानों से आपके दिलों को धड़काएंगे
8: Fashion, food stalls, kids entertainment और बहुत कुछ
7: एक खूबसूरत day out आप सबके लिए Saturday and Sunday 15 and 16 August 2026
8: Lees Road Festival
7: Bradford Region Radio the official media partner
8: आप भी
7: जरूर आइएगा उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे क्या ही चॉइस है आपका
8: ये चॉइस हमारा नहीं ये तो कमाल है फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का
7: जो कि पायदार मजबूत खूबसूरत डबल एंट्री ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
8: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं
7: फर्स्ट चॉइस 106
8: लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL
7: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
8: 01274317644
9: क्वालिटी वैल्यू स्टाइल एंड सिक्योरिटी योर नंबर वन चॉइस फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर
8: दुल्हन वो जो पिया मन भाई
10: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए
8: नित नए डिजाइन के साथ चूड़ियां कंगन कांटे
10: बालियां अंगूठियां और हार
8: जो दुल्हन करे सिंगार
10: आज ही मामू काके की दुकान
8: खालिस सोने की पहचान
10: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
8: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए
10: आपकी शान
8: हमारी आन
10: क्वालिटी की पहचान
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स 12 Foot Lane ब्रैडफोर्ड BD95ER 01274491442
10: पाकिस्तान ज्वेलर्स
0: टू बिकम अ रेडियो प्रेजेंटर Please call the studio 01274 306677 Bradford Asian Radio
11: ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल ना हमारा कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा
8: अरे सेफ पे राइडर जाएंगे ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे
11: बस ट्रक फोकलिफ्ट टैक्सी लाइसेंस हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार
8: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ पे राइडर
11: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत आज ही विजिट कीजिए
8: 33 वेटले लेन ब्रेडफोर्ड 01274201679
11: saferaider.co.uk UK. सुनिए जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे
8: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स
11: खूबसूरत कारपेट्स लैमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ बॉबीज कारपेट्स लिस्टेड एट ट्रैफिक लाइट्स ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग BD3ADN बॉबी आइए भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए नंबर मिलाइए 07414260078

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grange Road, Bradford 7, 414-760.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 अरूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन। अरे, ये पूरे ब्रेडफोर्ड में क्या है शोर?
3: आपको नहीं पता, ऑफर्स इन मेनी न्यू स्टोर, रोजाना ताजा सब्जियां, फल, फ्रूट, सलाद, मीट, चिकन, आटा, दाल, चावल और मसाला, क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला।
2: हर सम्त मचा है जिसका शोर, वो है मैनिंगम सुपर स्टोर। मैनिंगम सुपर स्टोर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8AX, फोन ब्रेडफोर्ड 4955555। हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश, मैनिंगम सुपर स्टोर।
3: मैनिंगम सुपर स्टोर,
4: Bradford Asian Radio. Our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274-306677.
1: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिलनवाज,
2: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
1: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
2: हर वक्त आपके संग, आपका दम साज।
5: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: जरा अपनी सूरत दिखा दे, समा खूबसूरत बना दे, नहीं तो तेरा नाम लेके तुझे कोई इल्जाम देके तुझको इस महफिल में रुसवा ना कर दो, रुसवा
1: तुझको

वफा हो के चेहरा छुपा ले, मगर याद रख हुस्न वाले जो है आग तेरी जवानी, मेरा प्यार है सर्द पानी, मैं तेरे गुस्से को ठंडा ना कर दूँ। हाँ।

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: You're listening to Bradford Asian Radio,
1: the Hindi Urdu music show on Bradford Asian Radio.
2: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio, on 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
3: And the winner is...
4: And the winner is...
5: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
7: फेस्टिवल 2026 मेला 15 एंड 16 अगस्त को
8: एक बार फिर मोर पार्क किलिंग हार्ड रोड ब्रेडफोर्ड में
7: जहां पहली बार माया नाज लोक फनकार नईम हजारवी अपने फन का मुजाहिरा करेंगे
8: फैशन फूड स्टॉल्स किड्स एंटरटेनमेंट और बहुत कुछ
7: एक खूबसूरत डे आउट आप सबके लिए सैटरडे एंड संडे 15 एंड 16 अगस्त 2026
8: लीड्स रोड फेस्टिवल
7: बेफोर रीजन रेडियो द ऑफिशियल मीडिया पार्टनर
8: आप भी
7: जरूर आइएगा उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे क्या ही चॉइस है आपका
8: ये चॉइस हमारा नहीं ये तो कमाल है फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का
7: जो कि पायदार मजबूत खूबसूरत डबल एंटरप्राइज ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
8: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं
7: फर्स्ट चॉइस
8: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL
7: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
8: 01274317644
9: फॉर क्वालिटी वैल्यू स्टाइल एंड सिक्योरिटी योर नंबर वन चॉइस फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर
8: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले
10: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं
8: अरे पगली अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई जी हाँ दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है
10: जी मिल करते कांटे बालियां कंगन गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार
8: टॉप क्वालिटी बेहतरीन सर्विस ओपन 7 डेज
10: 30 वेटली हिल ब्रैडफोर्ड BD8 8NG
9: 401274477257
10: दुबई ज्वेलर्स
8: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक आटा चावल दालें मसाला जात रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट हलाल गोश्त और चूजे फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले बचिए इधर उधर की ख्वारी से शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD8 8JL बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी
11: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है
10: अरे दूल्हा जब शेरवानी मिलान दूल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा मिलान की शेरवानी शलवार कमीज वेस्ट कोट प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज जिनके लिबास आम से दूल्हे को शहजादा बना दे
8: मिलान दूल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रेडफोर्ड BD8 8DR टेलीफोन 07885428349 अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड्स रोड ब्रेडफोर्ड
10: सुनिए जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे
8: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स
10: खूबसूरत कारपेट्स लैमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ बॉबीज कारपेट्स लिस्टेड लाइट ट्रैफिक लाइट्स ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स BD3 ADN बॉबी आइए भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए नंबर मिलाइए 07414260078
12: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
8: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है
12: जी हाँ पल्स जहाँ फिश एंड चिप्स बर्गर्स फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स
8: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए आज ही तशरीफ लाइए ओपन 7 डेज पल्स सी रूम 46 रूली एवेन्यू ब्रेडफोर्ड BD6 1DA फोन 01274306567 बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन
5: Sheffield Mellor CIC presents DeciFest Sheffield Mellor 2026. Join us at Firth Park, Sheffield on Sunday, 2nd of August from 12 to 8 p.m. A family fun day for the whole family with fun fair, food stalls and Mellor shopping. Featuring live performances from Lamba Husseinpuri, H. Dami, Ramit Sandhu, Summer Blake and much, much more. Sunday, 2nd of August at Firth Park, Sheffield. We'll see you there.
13: शादी आ गई है सर पर और कोई फोटोग्राफर नहीं है घर पर।
8: लगता है आपने एशियन वेडिंग्स UK.com का नाम नहीं सुना, जो आपकी शादी के चलते फिरते हसीन लम्हात हमेशा के लिए फोटोज और वीडियोस के जरिए महफूज करते हैं और फिल्म ऐसी बनाते हैं दूल्हा दुल्हन जैसी चाहते हैं।
13: डिजिटल क्वालिटी, तेज और दोस्ताना सर्विस, मेल और फीमेल फोटोग्राफर्स,
8: जिंदगी के यादगार दिन को यादगार तरीन बनवाइए।
13: आज ही मुबीन का नंबर मिलाइए
8: 07548419678।
13: एशियन वेडिंग्स UK.com, जिनकी आम सी फिल्म भी बॉलीवुड से नहीं है कम।
2: Bradford Asian Radio. Call the studio now 01274 306677. To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.
14: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
15: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
14: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
15: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
16: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाई दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: Your business being heard on the radio.
3: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
4: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorized by the UK Financial Conduct Authority.
5: लीज रोड फेस्टिवल 2026 मेला 15 एंड 16 अगस्त को
6: एक बार फिर मोर पार्क किलिंग हार्ट रोड ब्रेडफोर्ड में
5: जहां पहली बार किंग ऑफ भंगड़ा इब्रार उल हक अपने गानों से आपके दिलों को धड़काएंगे
6: फैशन फूड स्टॉल्स किड्स एंटरटेनमेंट और बहुत कुछ
5: एक खूबसूरत डे आउट आप सबके लिए सैटरडे एंड संडे 15 एंड 16 अगस्त 2026
6: लीज रोड फेस्टिवल
5: ब्रेडफोर्ड रीजन रेडियो द ऑफिशियल मीडिया पार्टनर
6: आप भी
5: जरूर आइएगा उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे क्या ही चॉइस है आपका
6: ये चॉइस हमारा नहीं ये तो कमाल है फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का
5: जो कि पायदार मजबूत खूबसूरत डबल एंटीपर ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
6: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं
5: फर्स्ट चॉइस
6: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL
5: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
6: 01274317644
7: फॉर क्वालिटी वैल्यू स्टाइल एंड सिक्योरिटी योर नंबर वन चॉइस फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर
6: दुल्हन वो जो पिया मन भाई
8: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए
6: नित नए डिजाइन के साथ चूड़ियां कंगन कांटे
8: बालियां अंगूठियां और हार
6: जो दुल्हन करे सिंगार
8: आज ही मामू काके की दुकान
6: खालिस सौदे की पहचान
8: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
6: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए
8: आपकी शान
6: हमारी आन
8: क्वालिटी की पहचान
6: पाकिस्तान ज्वेलर्स 12 Foot Lane ब्रेडफोर्ड BD95ER 01274491442
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स
0: टू बिकम अ रेडियो प्रेजेंटर Please call the studio 01274 306677. Bradford Asian Radio.
9: Looking to start driving or building a strong career with Safeway Rider? You can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
10: सुनिए जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे
6: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स
10: खूबसूरत कारपेट्स लैमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ बॉबीज कारपेट्स लिस्टेड एट ट्रैफिक लाइट्स ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग BD3ADN बॉबी आइए भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए नंबर मिलाइए 07414

0: अजान का वक्त हुआ चाहता है। इस अजान के लिए हमें तावन हासिल है कूबर हॉल सोलिसिटर्स, लिस्टर हिल्स साइंस पार्क, कैंपस रोड, ब्रेडफोर्ड, BD71HR।
1: अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती, अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती, नमाज पढ़ गए दुनिया में करबला वाले। सामीन, ब्रेडफोर्ड और इसके मुजाफात में अजान का वक्त हुआ चाहता है।

أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد.

0: छूटे ये भी तुम्हें याद होगा, उल्फत में ताज बने ये भी तुम्हें याद होगा, मैं भी कुछ बनाऊंगा तेरे घर के सामने।
1: देखी।

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: You're listening to Bradford Asian Radio.
1: The Hindi
2: Bradford's number one Asian community radio. Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
3: And the winner is...
4: And the winner is...
5: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
7: फेस्टिवल 2026 मेला 15 एंड 16 अगस्त को
8: एक बार फिर मोर पार्क किलिंग हार रोड ब्रेडफोर्ड में
7: जहां पहली बार माया नाज लोक फनकार नईम हजारवी अपने फन का मुजाहिरा करेंगे
8: फैशन फूड स्टॉल्स किड्स एंटरटेनमेंट और बहुत कुछ
7: एक खूबसूरत डे आउट आप सबके लिए सैटरडे एंड संडे 15 एंड 16 अगस्त 2026
8: लीड रोड फेस्टिवल
7: बेफोर एजन रेडियो द ऑफिशियल मीडिया पार्टनर
8: आप भी
7: जरूर आइएगा उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे क्या ही चॉइस है आपका
8: ये चॉइस हमारा नहीं ये तो कमाल है फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का
7: जो कि पायदार मजबूत खूबसूरत डबल एंटर ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
8: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं
7: फर्स्ट चॉइस 106
8: लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL
7: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
8: 01274317644
9: फॉर क्वालिटी वैल्यू स्टाइल एंड सिक्योरिटी योर नंबर वन चॉइस फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर
8: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले
10: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं
8: अरे पगली अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई जी हाँ दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है
10: जी मिल करते कांटे बालियां कंगन गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार
8: टॉप क्वालिटी बेहतरीन सर्विस ओपन 7 डेज
10: 30 वेटली हिल ब्रैडफोर्ड BD8 8NG
9: 401274477257
10: दुबई ज्वेलर्स
8: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक आटा चावल दालें मसाला जात रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट हलाल गोश्त और चूजे फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले बचिए इधर उधर की ख्वारी से शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD8 8JL बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी
11: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है
10: अरे दूल्हा जब शेरवानी मिलान दूल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा मिलान की शेरवानी शलवार कमीज वेस्ट कोट प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज जिनके लिबास आम से दूल्हे को शहजादा बना दे
8: मिलान दूल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रेडफोर्ड BD8 8DR टेलीफोन 07885428349 अदर ब्रांच मुगल एम्पोरियम 1304 लीड्स रोड ब्रेडफोर्ड
10: सुनिए जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे
8: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स
10: खूबसूरत कारपेट्स लैमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ बॉबीज कारपेट्स लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स BD3 ADN बॉबी आइए भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए नंबर मिलाइए 07414260078
12: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
8: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है
12: जी हाँ पल्स जहाँ फिश एंड चिप्स बर्गर्स फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स
8: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए आज ही तशरीफ लाइए ओपन 7 डेज पल्स सी रूम 46 रूली एवेन्यू ब्रेडफोर्ड BD6 1DA फोन 01274306567 बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन
2: Sheffield Mela CIC presents DeciFest Sheffield Mela 2026. Join us at Firth Park, Sheffield on Sunday, 2nd of August from 12 to 8 p.m. A family fun day for the whole family with funfair, food stalls and Mela shopping. Featuring live performances from Lamba Husseinpuri, H. Dami, Ramit Sandhu, Summer Blake and much, much more. Sunday, 2nd of August at Firth Park, Sheffield. We'll see you there.
13: इस
1: حساب عمر کا اتنا سا گوشوارہ ہے تمہیں نکال کے دیکھا تو سب خسارہ ہے میں موتریز دی اکاؤنٹنٹ جی ہاں چھوٹے سے چھوٹے ٹیکسی اکاؤنٹ سے لے کر بڑی سے بڑی کمپنی کے اکاؤنٹس بنوانے کے لیے قابل اعتماد نام میں موتریز دی اکاؤنٹنٹ آڈیٹ اینڈ اکاؤنٹنسی ٹیکسیشن وی اے ٹی بک کیپنگ پے رول فنڈریزنگ کمپنی فارمیشن مارگیجز اکاؤنٹس کے کسی بھی مسئلے کے لیے نہ ہو پریشان کیونکہ آپ کی مشکل کریں گے آسان میں موتریز دی چارٹرڈ سرٹیفائڈ اکاؤنٹنٹ میں موتریز دی گریٹ ہاٹن روڈ آن بریڈفورڈ 424453
5: میں موتریز دی Asian Radio. Call the studio now 01274 306 77. To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306 77 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 14:13 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: कभी जीत कभी काहे हारो न रे हार कभी जीत कभी काहे
1: कभी
0: कभी

0: दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सरवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: अज मेला में खड़ाया गुड़ियां लौटियां
7: लीज रोड फेस्टिवल 2026 मेला 15 एंड 16 अगस्त को
8: एक बार फिर मोर पार्क किलिंगहार रोड ब्रेडफोर्ड में
7: जहां पहली बार किंग ऑफ भंगड़ा इब्राहिम रोल हक अपने गानों से आपके दिलों को धड़काएंगे
8: पैशन फूड स्टॉल्स किड्स एंटरटेनमेंट और बहुत कुछ
7: एक खूबसूरत डे आउट आप सबके लिए सैटरडे एंड संडे 15 एंड 16 अगस्त 2026
8: लीज रोड फेस्टिवल
7: ब्रेडफोर्ड रीजन रेडियो द ऑफिशियल मीडिया पार्टनर
8: आप भी
7: जरूर आइएगा उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे क्या ही चॉइस है आपका
8: ये चॉइस हमारा नहीं ये तो कमाल है फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का
7: जो कि पायदार मजबूत खूबसूरत डबल एंटर ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
8: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं
7: फर्स्ट चॉइस 106
8: लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL
7: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
8: 01274317644
9: फॉर क्वालिटी वैल्यू स्टाइल एंड सिक्योरिटी योर नंबर वन चॉइस फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर
8: दुल्हन वो जो पिया मन भाई
10: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए
8: नित नए डिजाइन के सेट चूड़ियां कंगन कांटे
10: बालियां अंगूठियां और हार
8: जो दुल्हन करे सिंगार
10: आज ही मामू काकी की दुकान
8: खालिस सोने की पहचान
10: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
8: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए
10: आपकी शान
8: हमारी आन
10: क्वालिटी की पहचान
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स 1 डुफट लेन ब्रेडफोर्ड BD95ER 01274491442
10: पाकिस्तान ज्वेलर्स
0: To become a radio presenter, please call the studio 01274 306677. Bradford Asian Radio.
11: ना ही बच्चों को कोई सेफ मुस्तकबिल ना हमारा कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा
8: अरे सेफ पे राइडर जाएंगे ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे
11: बस ट्रक फोर्कलिफ्ट टैक्सी लाइसेंस हम है आपको सब कुछ सिखाने को तैयार
8: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ राइडर
11: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत आज ही विजिट कीजिए
8: 33 वेटल लेन ब्रेडफोर्ड
11: 01274201679 UK. सुनिए जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे
8: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स
11: खूबसूरत कारपेट्स लैमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ बॉबीज कारपेट्स लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स BD3ADN बॉबी आइए भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए नंबर मिलाइए 07414260
12: You're listening to

0: अजान का वक्त हुआ चाहता है इस अजान के लिए हमें तावन हासिल है कुबर हॉल सोलिसिटर्स लिस्टर हिल साइंस पार्क कैंपस रोड ब्रेडफर्ड BD71HR
1: अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती नमाज पढ़ गए दुनिया में करबला वाले सामीन ब्रेडफर्ड और इसके मुजाफात में अजान का वक्त हुआ चाहता है
2: अल्लाह

أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد.

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाई दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 14:13 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
3: चाहे कोई मुझे जंगली कहे,

रहता रहे। हम प्यार के तूफानों में घिरे हैं, हम प्यार चाहे कोई मुझे जंगली कहे, रहने को जी कहता रहे। हम प्यार के तूफानों

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: फेस्टिवल 2026 मेला 15 एंड 16 अगस्त को
6: एक बार फिर मोर पार्क किलिंग हार्ड रोड ब्रेडफोर्ड में
5: जहां पहली बार माया नाज लोक फनकार नईम हजारवी अपने फन का मुजाहिरा करेंगे
6: फैशन फूड स्टॉल्स किड्स एंटरटेनमेंट और बहुत कुछ
5: एक खूबसूरत डे आउट आप सबके लिए सैटरडे एंड संडे 15 एंड 16 अगस्त 2026
6: लीड रोड फेस्टिवल
5: बेफोर्ड एजेंट रेडियो द ऑफिशियल मीडिया पार्टनर
6: आप भी
5: जरूर आइएगा उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे क्या ही चॉइस है आपका
6: ये चॉइस हमारा नहीं ये तो कमाल है फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का
5: जो कि पायदार मजबूत खूबसूरत डबल एंटरप्राइज ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
6: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं
5: फर्स्ट चॉइस
6: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL
5: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
6: 01274317644
7: फॉर क्वालिटी वैल्यू स्टाइल एंड सिक्योरिटी योर नंबर वन चॉइस फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर
6: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले
8: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं
6: अरे पगली अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई जी हाँ दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है
8: जी मिल करते कांटे बालियां कंगन गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार
6: टॉप क्वालिटी बेहतरीन सर्विस ओपन 7 डेज
8: 30 वेटली हिल ब्रैडफोर्ड BD8 8NG 401274477257 दुबई ज्वेलर्स
6: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेश खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक आटा चावल दालें मसाला जात रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट हलाल गोश्त और चूजे फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले बचिए इधर उधर की ख्वारी से शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD8 8JL बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी
9: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है
8: अरे दूल्हा जब शेरवानी मिलान दूल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा मिलान की शेरवानी शलवार कमीज वेस्ट कोट प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज जिनके लिबास आम से दूल्हे को शहजादा बना दे
6: मिलान दूल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रेडफोर्ड BD8 8DR टेलीफोन 07885428349 अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड्स रोड ब्रेडफोर्ड
8: सुनिए जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे
6: तुम्हें पता है भाभी ने बोबीज कारपेट्स की स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स
8: खूबसूरत कारपेट्स लैमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ बोबीज कारपेट्स लिस्टेड एट ट्रैफिक लाइट्स ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग BD3 ADM बॉबी आइए भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए नंबर मिलाइए 07414260078
10: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
6: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है
10: जी हाँ पल्स जहाँ फिश एंड चिप्स बर्गर्स फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स
6: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए आज ही तशरीफ लाइए ओपन 7 डेज पल्स सी रूम 46 रूली एवेन्यू ब्रेडफोर्ड BD6 1DA फोन 01274306567 बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन
0: Sheffield Mela CIC presents DeciFest Sheffield Mela 2026. Join us at Firth Park, Sheffield on Sunday, 2nd of August from 12 to 8 p.m. A family fun day for the whole family with funfair, food stalls and Mela shopping. Featuring live performances from Lamba Husseinpuri, H. Dami, Ramit Sandhu, Summer Blake and much, much more. Sunday, 2nd of August at Firth Park, Sheffield. We'll see you there.
3: क्या आपकी आवाज़ खूबसूरत है? क्या आप में बोलने की जरूरत है? अगर ऐसी ही सूरत है तो ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो को आपकी जरूरत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306777 पर कॉल कीजिए और अपनी आवाज सुनने वालों के दिलों तक पहुंचाइए और खुद को रेडियो स्टार बनाइए। याद रखिए, अगर आपको बड़ी बड़ी छोड़ने की आदत है तो ये आपके कल के बड़ा ब्रॉडकास्टर बनने की जमानत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306777 पर कॉल कीजिए। Bradford Asian Radio.
11: Call the studio now. 01274 306 77. To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306 77 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.
12: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
13: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाई दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिलनवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सरवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: लेज रोड फेस्टिवल 2026 मेला 15 एंड 16 अगस्त को
7: एक बार फिर मोर पार्क किलिंग हार रोड ब्रेडफोर्ड में
6: जहां पहली बार किंग ऑफ भंगड़ा इब्रार उल हक अपने गानों से आपके दिलों को धड़काएंगे
7: फैशन फूड स्टॉल्स किड्स एंटरटेनमेंट और बहुत कुछ
6: एक खूबसूरत डे आउट आप सबके लिए सैटरडे एंड संडे 15 एंड 16 अगस्त 2026
7: लेज रोड फेस्टिवल
6: ब्रेडफोर्ड एजेंट रेडियो द ऑफिशियल मीडिया पार्टनर
7: आप भी
6: जरूर आइएगा इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे क्या ही चॉइस है आपका
7: ये चॉइस हमारा नहीं ये तो कमाल है फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का
6: जो कि पायदार मजबूत खूबसूरत डबल एंट्री ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644
8: फॉर क्वालिटी वैल्यू स्टाइल एंड सिक्योरिटी योर नंबर वन चॉइस फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर
7: दुल्हन वो जो पिया मन भाई
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए
7: नित नए डिजाइन के साथ चूड़ियां कंगन कांटे
9: बालियां अंगूठियां और हार
7: जो दुल्हन करे सिंगार
9: आज ही मामू काके की दुकान
7: खालिस सोने की पहचान
9: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए
9: आपकी शान
7: हमारी आन
9: क्वालिटी की पहचान
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स 124 लेन ब्रेडफोर्ड BD95ER 01274491442
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स
0: टू बिकम अ रेडियो प्रेजेंटर Please call the studio 01274 306677. Bradford Asian Radio.
10: Looking to start driving or building a strong career with Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274 201 679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
11: सुनिए जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे
7: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स
11: खूबसूरत कारपेट्स लैमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ बॉबीज कारपेट्स लिस्टेड लाइट ट्रैफिक लाइट्स ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स BD3ADN बॉबी आइए भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए नंबर मिलाइए 07414260078

0: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
1: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
0: जी हाँ, पल्स जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
1: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
2: ब्रेडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर।
3: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं, मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर, जहाँ पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 pounds से, जर्मन वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कॉफी टेबल, रग्स, कारपेट, मैट्रेसेस की वसी वैरायटी।
4: ओपन 7 डेज, 10 to 6, फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर। लव फर्नीचर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, अपोजिट बार्कलेज बैंक, ऑन ब्रेडफोर्ड, 9627229622।
3: लव फर्नीचर, फर्नीचर यू लव।
5: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.
6: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाए दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio, on 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: फेस्टिवल 2026 मेला 15 एंड 16 अगस्त को
6: एक बार फिर मोर पार्क किलिंग हार रोड ब्रेडफोर्ड में
5: जहां पहली बार माया नाज लोक फनकार नईम हजारवी अपने फन का मुजाहिरा करेंगे
6: फैशन फूड स्टॉल्स किड्स एंटरटेनमेंट और बहुत कुछ
5: एक खूबसूरत डे आउट आप सबके लिए सैटरडे एंड संडे 15 एंड 16 अगस्त 2026
6: लीड रोड फेस्टिवल
5: ब्रेडफोर्ड एजेंट रेडियो द ऑफिशियल मीडिया पार्टनर
6: आप भी
5: जरूर आइएगा उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे क्या ही चॉइस है आपका
6: ये चॉइस हमारा नहीं ये तो कमाल है फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का
5: जो कि पायदार मजबूत खूबसूरत डबल एंटरप्राइज ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
6: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं
5: फर्स्ट चॉइस 106
6: लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL
5: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
6: 01274317644
7: क्वालिटी वैल्यू स्टाइल एंड सिक्योरिटी योर नंबर वन चॉइस फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर
6: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले
8: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं
6: अरे पगली अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई जी हाँ दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है
8: जी मिल करते कांटे बालियां कंगन गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार
6: टॉप क्वालिटी बेहतरीन सर्विस ओपन 7 डेज
8: 30 वेटली हिल ब्रेडफोर्ड BD8 8NG फोन 01274477257
6: दुबई ज्वेलर्स व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक आटा चावल दालें मसाला जात रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट हलाल गोश्त और चूजे फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले बचिए इधर उधर की ख्वारी से शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD8 8JL बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी
9: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है
8: अरे दूल्हा जब शेरवानी मिलान दूल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा मिलान की शेरवानी शलवार कमीज वेस्ट कोट प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज जिनके लिबास आम से दूल्हे को शहजादा बना दे
6: मिलान दूल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रेडफोर्ड BD8 8DR टेलीफोन 07885428349 अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड्स रोड ब्रेडफोर्ड
8: सुनिए जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे
6: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स
8: खूबसूरत कारपेट्स लैमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ बॉबीज कारपेट्स लिस्टेड लाइट ट्रैफिक लाइट्स ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स BD3 ADN बॉबी आइए भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए नंबर मिलाइए 07414260078
10: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
0: रेड फूड एशियन रेडियो ऑन 1413 एम

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorized by the UK Financial Conduct Authority.
6: अज मेला देखण आईया कुड़ियां दोस्तियां
7: लीज रोड फेस्टिवल 2026 मेला 15 एंड 16 अगस्त को
8: एक बार फिर मोर पार्क किलिंगहार रोड ब्रेडफोर्ड में
7: जहां पहली बार किंग ऑफ भंगड़ा इब्राहिम रोल हक अपने गानों से आपके दिलों को धड़काएंगे
8: फैशन फूड स्टॉल्स किड्स एंटरटेनमेंट और बहुत कुछ
7: एक खूबसूरत डे आउट आप सबके लिए सैटरडे एंड संडे 15 एंड 16 अगस्त 2026
8: लीज रोड फेस्टिवल
7: ब्रेडफोर्ड रीजन रेडियो द ऑफिशियल मीडिया पार्टनर
8: आप भी
7: जरूर आइएगा उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे क्या ही चॉइस है आपका
8: ये चॉइस हमारा नहीं ये तो कमाल है फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का
7: जो कि पायदार मजबूत खूबसूरत डबल एंटीपर ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
8: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं
7: फर्स्ट चॉइस
8: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL
7: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
8: 01274317644
9: क्वालिटी वैल्यू स्टाइल एंड सिक्योरिटी योर नंबर वन चॉइस फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर
8: दुल्हन वो जो पिया मन भाए
10: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए
8: नित नए डिजाइन के साथ चूड़ियां कंगन कांटे
10: बालियां अंगूठियां और हार
8: जो दुल्हन करे सिंगार
10: आज ही मामू काकी की दुकान
8: खालिस सोने की पहचान
10: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
8: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए
10: आपकी शान
8: हमारी आन
10: क्वालिटी की पहचान
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स 1 Duckworth Lane ब्रेडफोर्ड BD95ER 01274491442
10: पाकिस्तान ज्वेलर्स
0: टू बिकम अ रेडियो प्रेजेंटर Please call the studio 01274 306677. Bradford Asian Radio.
11: ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल ना हमारा कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा
8: अरे सेफ पे राइडर जाएंगे ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे
11: बस ट्रक फोकलिफ्ट टैक्सी लाइसेंस हम है आपको सब कुछ सिखाने को तैयार
8: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ पे राइडर
11: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत आज ही विजिट कीजिए
8: 33 Wetley Lane ब्रेडफोर्ड
11: 01274201679 UK. सुनिए जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे
8: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स
11: खूबसूरत कारपेट्स लैमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ बॉबीज कारपेट्स लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स BD3ADN बॉबी आइए भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए नंबर मिलाइए 07414260078

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grange Road, Bradford 7, 414-760.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी जा रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
3: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, Our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677. You're listening to
4: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
5: इस वक्त मेरे साथ मौजूद है फेडरल मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग जनाब मोहम्मद अली दुरानी, और आज जो तकरीब थी जिसमें डायरेक्टर जनरल रेडियो पाकिस्तान जनाब तारिक इमाम के हवाले जो सीडी गई थी, जो लॉन्च की गई सीडी जिसमें इकबाल का कलाम है, इसका टाइटल अपना मुकाम पैदा कर, इसके हवाले से हम मिनिस्टर साहब से पूछेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर।
6: वालेकुम सलाम।
5: जी सर, इस सीडी के हवाले से और आज जो तकरीब थी, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे?
6: इकबाल डे के रेफरेंस से आज सीडी जारी किया गया है, जिसका बुनियादी मकसद ये है कि जो कलाम है उसको नौजवानों तक, इकबाल की सोच को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए जो है वो बहुत अरसे बाद कलाम इकबाल को दोबारा जो है एक नए के साथ जो है पेश किया गया है, और एक नए अपोजिशन के साथ पेश किया गया है। मैं समझता हूँ ये एक डेवलपमेंट है, इंशाल्लाह ये काफी जारी रहे।
5: हम सर से उनका पैगाम लेंगे हजरत अल्लामा इकबाल का जो हमें पैदाइश है उस हवाले से। जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे?
6: मैं समझता हूँ कि जी अहमियत जो है वो इस जाहिर होती है कि शख्सियत का यह हमें पैदाइश है जिनके तस्वुर की बुनियाद पर यह मुल्क हमारे वजूद में आया, और ऐसी शख्सियत जो पूरी मुस्लिम उम्मा के नौजवानों के लिए एक आइडियल की हैसियत रखती है, और ऐसी शख्सियत जिनके कलाम ने जो है पूरी मुस्लिम उम्मा के अंदर जो है एक एतमाद और एक अपनी पहचान, एक खुदी और एक एतमाद पैदा किया। इसलिए मैं समझता हूँ कि दिन अहम है, और हमारी की सोच और फिक्र जो है वो इस खास से उसको आगे बढ़ाना चाहिए। हम सब जो है न सिर्फ इकबाल के पैगाम को समझे बल्कि उससे अमली रहनुमाई भी हासिल करें।
3: You're listening to Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: Bradford's number one Asian community radio. Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: फेस्टिवल 2026 मेला 15 एंड 16 अगस्त को
6: एक बार फिर मोर पार्क किलिंग हार्ड रोड ब्रेडफोर्ड में
5: जहां पहली बार माया नाज लोक फनकार नईम हजारवी अपने फन का मुजाहिरा करेंगे
6: फैशन फूड स्टॉल्स किड्स एंटरटेनमेंट और बहुत कुछ
5: एक खूबसूरत डे आउट आप सबके लिए सैटरडे एंड संडे 15 एंड 16 अगस्त 2026
6: लीड रोड फेस्टिवल
5: बेफोर एजन रेडियो द ऑफिशियल मीडिया पार्टनर
6: आप भी
5: जरूर आइएगा उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे क्या ही चॉइस है आपका
6: ये चॉइस हमारा नहीं ये तो कमाल है फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का
5: जो कि पायदार मजबूत खूबसूरत डबल एंटरप्रेस ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
6: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं
5: फर्स्ट चॉइस
6: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL
5: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
6: 01274317644
7: फॉर क्वालिटी वैल्यू स्टाइल एंड सिक्योरिटी योर नंबर वन चॉइस फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर
6: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले
8: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं
6: अरे पगली अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई जी हाँ दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है
8: जी मिल करते कांटे बालियां कंगन गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार
6: टॉप क्वालिटी बेहतरीन सर्विस ओपन 7 डेज
8: 30 वेटली हिल ब्रैडफोर्ड BD8 8NG फोन 01274477257 दुबई ज्वेलर्स
6: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक आटा चावल दालें मसाला जात रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट हलाल गोश्त और चूजे फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले बचिए इधर उधर की ख्वारी से शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD8 8JL बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी
9: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है
8: अरे दूल्हा जब शेरवानी मिलान दूल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा मिलान की शेरवानी शलवार कमीज वेस्ट कोट प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज जिनके लिबास आम से दूल्हे को शहजादा बना दे
6: मिलान दूल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रेडफोर्ड BD8 8DR टेलीफोन 07885428349 अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड्स रोड ब्रेडफोर्ड
8: सुनिए जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे
6: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स
8: खूबसूरत कारपेट्स लैमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ बॉबीज कारपेट्स लिस्टेड टाइप ट्रैफिक लाइट्स ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स BD3 ADN बॉबी आइए भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए नंबर मिलाइए 07414260078
10: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
6: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है
10: जी हाँ पल्स जहाँ फिश एंड चिप्स बर्गर्स फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स
6: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए आज ही तशरीफ लाइए ओपन 7 डेज पल्स सी रूम 46 रूली एवेन्यू ब्रेडफोर्ड BD6 1DA फोन 01274306567 बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन
0: Sheffield Mela CIC presents DeciFest Sheffield Mela 2026. Join us at Firth Park, Sheffield on Sunday, 2nd of August from 12 to 8 p.m. A family fun day for the whole family with fun fair, food stalls and Mela shopping. Featuring live performances from Lamba Husseinpuri, H. Dami, Ramit Sandhu, Summer Blake and much, much more. Sunday, 2nd of August at Firth Park, Sheffield. We'll see you there.
3: Do you know there are 170,000 new cases of cancer each year in Pakistan? Do you know that Imran Khan Cancer Appeal provides free cancer